मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की वैशाख माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 57 सेकंड हुए हैं।

हर सुबह भगवान का एक संदेश है, उठो, मुस्कुराओ और अपने सपनों को फिर से आवाज दो। आज का ये दिन किसी और जैसा नहीं, क्योंकि आज कल से बेहतर बनने का निर्णय जो लेंगे हम। नमस्कार, लखनऊ में मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की दो दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड

हैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्कार लखनऊ। किसान अपनी मेहनत से न केवल अपने परिवार का पालन करते हैं बल्कि देश को भी आत्मनिर्भर बनाते हैं। अपने किसान भाइयों के लिए कृषि चर्चा कार्यक्रम में आज हम लेकर आए हैं धान की नर्सरी प्रबंधन विषय पर डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी द्वारा दी गई ये जानकारी, आइए सुनते हैं।
1: शुभ प्रभात। धान की नर्सरी का समय चल रहा है, ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि जो परंपरागत धान की नर्सरी उगाने का तरीका रहा है वह आज भी है, उसे अपनाएं। हम यह नहीं कहते कि उसे दूर

0: बटे हाँ, उसमें जो वैज्ञानिक तथ्य हैं समाहित करना एक आवश्यक तथ्य हो गया है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि वैज्ञानिक तरीका अपनाकर धान की अच्छी नर्सरी तैयार करें। ऐसा करने से धान में कोई बीमारी नहीं आएगी और पैदावार भी अच्छी होगी। पौध तैयार करने में सावधानी बरतने की जरूरत है। हम लोग दो तरह से नर्सरी तैयार करते रहे हैं, शुष्क व गीली नर्सरी। इसको इस तरह से करना है कि धान के बीज का उपचार, 1 एकड़ धान की रोपाई के लिए 100 वर्ग मीटर नर्सरी एरिया की आवश्यकता होती है। इससे हम सभी अवगत हैं और आज भी यही अपनाया जाता है, वैज्ञानिकों की सलाह भी यही है। 100 वर्ग मीटर एरिया के लिए 5 किलो धान बीज की जरूरत है। बीज उपचार के लिए 8 लीटर पानी में उसमें 8 ग्राम बेवेस्टीन व 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवाई डालकर उसमें 5 किलो बीज को 18 घंटे के लिए भिगो दें। कुछ समय बाद खाली व आधे भरे दाने पानी की सतह पर आ जाएंगे, उन्हें बाहर निकाल दें। 18 घंटे बाद बीज को पानी से बाहर निकालकर गीली बोरी में 24 घंटे के लिए अंकुरित होने के लिए रख दें। आधा किलो जिंक जुताई से पहले जरूर डालें। धान की नर्सरी तैयार करने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है, इसलिए इस प्रक्रिया को समझना जरूरी है। सबसे पहले खेत का चुनाव करना है। दोमट और चिकनी दोमट धान की नर्सरी के लिए उपयुक्त होती है। नर्सरी लगाने के पहले खेत की 2 से 3 जुताई करके मिट्टी को समतल और भुरभुरा बना लेना चाहिए। वहीं खेत में पानी की निकासी के लिए उचित इंतजाम भी करना आवश्यक है। धान की जो किस्में मध्यम से देर पकती हैं, उनकी रोपाई जून के दूसरे सप्ताह में करना उचित होता है। वहीं देर से पकने वाली किस्मों की रोपाई जून के दूसरे से तीसरे सप्ताह तक करना चाहिए। यह एक अब पर्यावरणीय दृष्टिकोण से जो कुछ परिवर्तन आ रहे हैं के दृष्टिगत करते हुए कहा गया है। अब आती है बात क्यारियों को तैयार करने की। धान की नर्सरी की क्यारियां जो आप बनाएंगे, इसके लिए 1 से 1.5 मीटर चौड़ी तथा 4 से 5 मीटर लंबी होनी चाहिए। क्यारियां तैयार करने के बाद उपचारित धान के बीज का प्रति वर्ग मीटर 50 से 80 ग्राम बीज का छिड़काव करना चाहिए। विभिन्न किस्मों के अनुसार प्रति हेक्टेयर 25 से 35 किलोग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। नर्सरी में तय दर के हिसाब से बीज डालना चाहिए। इससे पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है और पौध खराब होने की संभावना कम हो जाती है। हाँ, धान की फसल को विभिन्न रोगों से बचाने के लिए नर्सरी लगाने से पहले बीज को अनुशंसित दवाइयों से उपचारित कर लेना चाहिए। वहीं थोथे बीज को हटाने के लिए 2% नमक के घोल में बीजों को डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। धान की बिजाई करने से पहले बीजों को अंकुरित कर लेना चाहिए, जैसी कि विधि हमने आपको बताई ही। पौधे के अच्छे विकास के लिए धान नर्सरी में प्रति 100 वर्ग मीटर में 2 से 3 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सुपर फास्फेट और 1 किलोग्राम पोटाश प्रयोग करना चाहिए। कुछ दिनों बाद यदि पौधों में पीलापन दिखाई दे तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा आधा किलोग्राम चूना लेकर 50 लीटर पानी में घोल बनाकर पर्णीय छिड़काव कर देना चाहिए। यह एक विधि है इसकी और सुरक्षात्मक विधि बेहतर है यह। हाँ, सिंचाई पर भी ध्यान रखने की जरूरत होगी। नर्सरी में सारा कुछ आपने कर लिया तो यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, इसी के आधार पर उसकी बढ़वार सुनिश्चित होगी। तो पौधों के अच्छे अंकुरण के लिए पानी की बेहद जरूरत होती है, या तो है ही, लेकिन बिजाई के समय क्यारियों में पानी नहीं होना चाहिए। 3 से 4 दिनों बाद क्यारियों को तर करना चाहिए। यह एक तथ्य अब नया है और बेहतर है। हम लोग करते क्या है, पलेवा लगाते हैं और उसमें पानी रहता है थोड़ा, तभी बीज का छिड़काव कर देते हैं। वह एक पारंपरिक विधि है, लेकिन अब यह है कि सूखे में करते हैं और फिर पानी देते हैं। वहीं जब पौधा 5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाए तब खेत में 1 से 2 सेंटीमीटर पानी भरकर रखना चाहिए।
1: अभी आप धान की नर्सरी प्रबंधन विषय पर डॉक्टर नगेन सिंह रघुवंशी द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ कृषि चर्चा संपन्न हुई। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 4.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज और कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। सुविचार हमें स्मरण कराता है कि परिवर्तन बाहर नहीं बल्कि भीतर से शुरू होता है। अगर हम अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से करें तो धीरे धीरे वही विचार हमारी आदत बन जाते हैं। आज के

0: विचार में सुनिए समय के बारे में, स्वर डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे का है।
1: समय शाश्वत है, इसकी गति बड़ी विचित्र है। यह जिसे जहां पहुंचाना चाहता है उसी प्रकार की आधारभूम बनाता है। नीर छीर में अंतर करने का हंस विवेक समय के पास रहता है। त्याग संस्कार और परोपकार समय की उर्वर भूमि में पनपता है। प्रतिकूलता को अनुकूलता की ओर मोड़ने की सामर्थ्य समय के पास है। बड़ी उड़ान भरने वाले रुकने का नाम नहीं लेते, पर उन्हें देखने वाले निराशा में डूबने लगते हैं। प्रयास सामान्य रहने पर समय नहीं रिझता, वह तो असंभव को संभव कर दिखाने वाले हीरों को तराशने में लगा रहता है। अभूतपूर्व कीर्तिमान रचने की अकूत शक्ति समय के पास है। नई राह बनाने में समय अद्भुत है। बार बार प्रयत्न करने पर भी जो उपलब्धि हाथ नहीं लगती, समय उससे उत्कृष्ट देने के लिए विलंब करता है। सार्वभौमिक समय अग्नि परीक्षा लेता है। संघर्ष की आग में समय स्वर्ण की तरह तपाकर खड़ा बनाता है। एक के बाद एक परीक्षा लेने में समय की कोई तुलना नहीं है। बाधाओं से डरने वालों की चिंता समय नहीं करता, समय इतिहास बनाता है। वही विचार सार्थक बनता है जो अपने समय की वेदना को नया अर्थ देता है। जीवन से जूझते हुए आत्मीय के मंगल में भविष्य की विनती करते हुए कहा जाता है, पता नहीं वह शुभ समय कब आएगा। समय सभी की मंगल कामना सुनता है, वह मूल्यांकन करना जानता है। समय कभी नहीं दिखता, वो संसार की लीला से अलग है। परिश्रम करना मनुष्य के वश में है, उसका फल देना समय के हाथ में है। वो प्रज्ञा की पहचान करता है, समय धैर्य को प्रतिभा बनाता है। हर अमूल्य पल अनूठे अवसर लाता है। समय का दूसरा नाम काल है, जो जीवन का नियंत्रक है। समय संयोग वियोग है। दीपक का तेल चुक जाने पर रूई की बाती जलकर मंद मंद प्रकाश बिखेर रही थी। एक गृहस्थ ने पूछा, तुम जीवन भर आलोक बिखेर कर दूसरों का पथ प्रदर्शन करते रहे, संसार के साथ इतनी भलाई करने पर भी तुम्हारा दुखद अंत देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। बुझते दीपक ने अंतिम आभा बिखेरते हुए कहा, भौतिक जगत में जिसका जन्म होता है उसका अंत भी होता है। हर क्षण का उत्कृष्ट नियोजन करके जीवन की मूल्यवान घड़ियों को व्यर्थ होने से बचाना है। रचनाकार अपने समय की उपज होता है। परिवर्तन सृष्टि का शाश्वत नियम है। समय क्षमा नहीं करता, बीता समय फिर नहीं लौटता। बदलते समय को पकड़ने में प्रयोग का संसार मिलता है। समय की प्रतीक्षा सहनशीलता बढ़ाती है। रात बीतने के बाद सूर्योदय निश्चित है। दुख के बाद सुख आता है। समय अभाव पाने वाले को महापुरुष बनाता है। हर चीज के होने का समय होता है। परिश्रम समय के इतिहास में नया अध्याय जोड़ता है। विपरीत समय रहने पर अच्छाई से दूरी हानि कराती है। कभी कभी अभिशाप वरदान सिद्ध हो जाता है। भरतीहर का हार खूंटी निकल गई तो हरिश्चंद्र की सत्य परीक्षा गंगा तट पर हुई। समय के आगे किसी की नहीं चलती। दुख हर अंग में आंखें बनाता है। सफलता का उपाय समय जानता है। असाधारण उपलब्धि एक दिन में नहीं मिलती, इसके लिए सर्वोच्च साधना अनिवार्य है। संकल्प विकल्प तोड़ता है। समय दान सबसे बड़ा दान है। यह धैर्य का सूत्र है। आशा देकर किसी का समय गंवाना पाप है। किसी के पास समय नहीं रहता, समय निकालना पड़ता है। समय चुनौतियों को कसौटी पर परखता है। असमर्थता कुछ भी सुनने को विवश करती है। उचित समय पर किया गया थोड़ा कार्य बड़ा उपकारक सिद्ध होता है। असमय में बड़ा उपकार निष्फल चला जाता है। असाधारण लोग विपत्ति को लौटाकर नई राह बनाते हैं। अपने जीवित रहते वे अभूतपूर्व कार्यों से अमर हो जाते हैं। समय का अपना विधान है। मर्यादा न तोड़ने वाले को समय बचाता है, खेलने का अवसर और क्षेत्र देता है। समय के हंसने पर निर्बल हरा देते हैं। समय अखंड है, पल पल का सदुपयोग परम सत्य है। समय विधान में बड़े बड़े गिरते उठते हैं। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। जीवन का सर्वोच्च कवच समय की सच्चाई है। समय सकारात्मक संस्कार का शाश्वत मूल्य है। यह सत्य का साक्षात्कार करता है। लक्ष्य संधान की सार्थक भूमिका ही समय का मूल मंत्र है। समय आने पर जीवन अपना मार्ग पा जाता है।
0: आज के सुविचार में आप सुन रहे थे समय के बारे में, स्वर डॉक्टर हरिप्रसाद दुबे का था। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और

0: दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आरा।

शिव का नाम जीवन की सबसे पावन माता है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है और ये भजन उसी दिव्य भाव को स्वर देता है कि जहाँ शिव का वास है वहीं आत्मा को शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है।

माता है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है और ये भजन उसी दिव्य भाव को स्वर देता है कि जहाँ शिव का वास है वहीं आत्मा को शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है।

मनुष्य चाहे कितना भी सक्षम क्यों न हो, जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब उसे किसी अदृश्य शक्ति के सहारे की आवश्यकता महसूस होती है, और तब वह ईश्वर की शरण में जाकर कहता है, तुम ही हमारे दुख हरने वाले हो, हमें सही रास्ता दिखाओ।

माँ अम्बे केवल शक्ति की ही देवी नहीं बल्कि करुणा, ममता और संरक्षण का स्वरूप भी हैं। जब भक्त जीवन की कठिनाइयों, भय और दुखों से घिर जाता है, तब वह माँ अम्बे के चरणों में जाकर सहारा खोजता है।

जीवन में शांति, सत्य और सदाचार पाने के लिए राम नाम और राम के आदर्शों का अनुसरण आवश्यक है। जब हम राम नाम का गुणगान करते हैं तो वास्तव में हम अपने जीवन में उन्हीं गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं।

आप सुन रहे हैं नमस्कार लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति के रस का और आनंद लेने के लिए हम चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 175।

ऋषि वाल्मीकि ने श्री राम लक्ष्मण तथा सीता को अपने आश्रम में पाकर स्वयं को धन्य माना। श्री राम ने ऋषिवर से किसी ऐसे ठौर का पता बताने का निवेदन किया जहां वे लोग कुछ समय के लिए निवास कर सकें। ऋषि के उद्गार इन शब्दों में फूट पड़े, जिनके हृदय में काम क्रोध मद मोह लोभ शोभ न हो, जो राग विराग छल कपट दंभ और माया से परे हों, हे रघुनाथ आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को अपनी माता के समान आदर देते हों, जिन्हें पराया धन रिश्ते भी घातक लगता है, जो दूसरों की संपत्ति देख हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति जिन्हें विशेष रूप से दुखी करती है, उनके हृदय आपके निवास के लिए उपयुक्त भवन स्वरूप हैं। इस विनय के बाद ऋषि वाल्मीकि ने चित्रकूट पर्वत को निवास के सर्वथा योग्य बताया, जहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध थीं। ये ऐसा मनोरम स्थान है जहां तरह तरह के पशु पक्षी विचरण करते हैं, जहां अत्रि ऋषि की धारा ले आई थी, जहां अत्रि समेत अन्य ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। हे राम, चित्रकूट को अपना निवास स्थान बनाकर उसे गौरव प्रदान कीजिए।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायिका थी कविता कृष्णमूर्ति और संगीत संयोजन सतीश पाटिया का। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: मीडियम वेव पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने को ही आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से।

0: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथिनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथिनबर्ग इत्यत्र संप्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः संबंधेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारो भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारो व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेन वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादम विरुद्ध संघर्षे स्वीडिश प्रधानमंत्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथिनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी

0: अद्य नोर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नोर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरे इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्। कांग्रेस दलेन सतीशन इत्यसौ केरल प्रदेशस्य अग्रिम मुख्यमंत्री रूपेण समुद्घोषितः। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वयुतेन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रन्थियुतेन तत्र शासन विरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृह सहकारिता मन्त्री अमितशाहः गुजरात प्रदेशस्य गांधीनगरे 700 कोटिमितानां विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीय द्विदिवसीय यात्रावधौ गतदिने गांधीनगर नगर निगमस्य 100 कोटिमितानां विकासकार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचनाकेन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः एआई तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्य स्तंभौ इति वर्णितवान्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडा वार्तासु आईपीएल इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
2: मीडियम वे पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। नमस्कार, लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। स्वस्थ शरीर में ही सपनों को पंख मिलते हैं और स्वस्थ मन में ही जीवन की राहें आसान बनती हैं। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज हमारे श्रोता सुनेंगे गुड़ों से भरपूर पार्सली विषय पर नीना सोनकर की ये जानकारी।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम जिस हरे पौधे की बात करेंगे वो दिखने में तो सादा सा लगता है, एक सजावट की तरह सलाद या सूप के ऊपर पड़ा हुआ, लेकिन जब इसके गुणों में उतरते हैं तो समझ में आता है कि प्रकृति ने इसे एक औषधीय रत्न की तरह हमें सौंपा है। हम बात कर रहे हैं पार्सली की, जिसे हिंदी में कई लोग अजमोद भी कहते हैं। पार्सले आमतौर पर यूरोपीय और भूमध्य सागरीय देशों में बहुत उपयोग होता आया है, लेकिन अब भारत में भी ये रसोई और स्वास्थ्य जगत दोनों में ही अपनी जगह बना रहा है। देखने में तो ये धनिया जैसा लगता है और कई बार लोग इसे सिर्फ गार्निशिंग के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन श्रोताओं, पार्सले सिर्फ एक सजावटी पत्ता नहीं है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो इसे सेहत के लिहाज से एक सुपर हर्ब बनाती है। सबसे पहले बात करें इसके विटामिन के की। ये एक ऐसा पोषक तत्व है जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है और खून के थक्के बनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। पार्सले में ये विटामिन भरपूर मात्रा में होता है, जो हड्डियों को समय के साथ कमजोर होने से बचाता है। महिलाओं में हड्डियों से संबंधित समस्याएं जैसे ऑस्टियोपोरोसिस मेनोपॉज के बाद ज्यादा देखी जाती है। ऐसे में पार्सले जैसे छोटे लेकिन शक्तिशाली पौधे का नियमित सेवन लाभकारी हो सकता है। विटामिन सी की बात करें तो ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है और त्वचा को भी अंदर से पोषण देता है। पार्सले के पत्तों में मौजूद ये विटामिन न केवल आपको सर्दी खांसी से बचाता है, बल्कि शरीर की कोशिकाओं को भी फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाता है। यही नहीं, इसका उपयोग त्वचा की सफाई और चेहरे की चमक को बनाए रखने के लिए भी किया जाता है। पार्सले में एक विशेष यौगिक होता है जिसे हम एपिजेनिन के नाम से जानते हैं। ये सूजन को कम करने में सहायक होता है और

0: अध्ययन बताते हैं कि ये शरीर की कोशिकाओं को कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद कर सकता है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में भी पार्सले का उपयोग लीवर को डिटॉक्स करने, मूत्र मार्ग की सफाई और पाचन सुधारने के लिए किया जाता रहा है। अगर पेट फूला हुआ महसूस हो, गैस की समस्या हो या अपच की शिकायत, तो पार्सले का रस या इसका चूर्ण राहत दे सकता है। पार्सले एक बहुत अच्छा डाययूरेटिक यानी मूत्रवर्धक भी माना जाता है, जिससे शरीर में जमा अतिरिक्त पानी और विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। ये उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है जिन्हें पानी जमा होने की समस्या होती है या जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। जब शरीर से अतिरिक्त सोडियम और टॉक्सिन्स बाहर जाते हैं तो किडनी भी बेहतर तरीके से काम करने लगती है। श्रोताओं, पार्सले का रस भी बहुत फायदेमंद होता है। आप इसे खीरे, नींबू, अदरक और धनिये के साथ मिलाकर एक डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये न केवल शरीर को अंदर से साफ करता है बल्कि ऊर्जा भी प्रदान करता है। गर्मियों में जब शरीर जल्दी थकने लगता है या भोजन भारी लगने लगता है, तब पार्सले जैसी हल्की और पाचन को बेहतर बनाने वाली चीजें बहुत कारगर साबित होती हैं। ये छोटा सा पौधा मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। इसकी हल्की सुगंध मन को शांत करने का काम करती है। इसके ताजे पत्ते जब सलाद या गर्म सूप में शामिल होते हैं तो न सिर्फ स्वाद में वृद्धि होती है बल्कि ये खाने के अनुभव को भी ताजगी से भर देता है। ये एक प्रकार की हर्बल थेरेपी भी है जिसमें पार्सले के तेल का उपयोग किया जाता है। ये सिर दर्द, थकान और स्ट्रेस में राहत देने वाला माना गया है। भारत में अब पार्सले की खेती भी होने लगी है और आप चाहें तो इसे घर में एक छोटे गमले में भी उगा सकते हैं। ये जल्दी बढ़ता है, कम जगह लेता है और नियमित तौर पर पत्ते देता है। खास बात ये है कि ये न केवल हरे रंग से आंखों को सुकून देता है बल्कि जब इसका स्वाद भोजन में शामिल होता है तो वो साधारण भोजन भी खास बन जाता है। श्रोताओं, पार्सले केवल एक विदेशी पत्ता ही नहीं बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य की चाबी भी बन सकता है, बशर्ते हम इसे समझें, अपनाएं और अपने खान पान में धीरे धीरे शामिल करें। इसके छोटे छोटे पत्तों में जो गुण छुपे हैं वे आधुनिक विज्ञान के भी पसंदीदा हैं। और याद रखिए, हर छोटा सा प्रयास बड़ी सेहत की ओर एक बड़ा कदम होता है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अभी आप गुणों से भरपूर पार्सले विषय पर नीना सोनकर द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा संपन्न

आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8 बजे नवीन जोशी की कहानी सुनिएगा ठहरा हुआ मोबाइल युग। रात 10 बजे नाटक प्रसारित होगा, शीर्षक है मोक्ष, आलेख जितेंद्र स्वामी का, निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता अतीश कुमार श्रीवास्तव और प्रस्तुति सहयोग कीर्ति श्रीवास्तव। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाध फरमाइएगा। आकाशवाणी लखनऊ मरकज की पेशकश सुनिएगा क्विज प्रोग्राम की पहली किस्त आकाशवाणी@90। प्रेजेंटर हैं जमशेद सिद्दीकी और शमशुल आरफीन। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज बरेली और सीतापुर जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है विश्व म्यूजियम दिवस। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर पार्थ प्रतिम राय का सितार वादन प्रसारित होगा और इसी कार्यक्रम में रात 10:30 पर उस्ताद अली अकबर खान का सरोद वादन श्रोता सुनेंगे। घर आंगन कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर डॉक्टर निशा गहलोत की कहानी रिश्ते की रजामंदी बहने सुनेंगी। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर समन्वित मत्स्य पालन की योजना और तैयारी विषय पर डॉक्टर शरद कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:00

45 मिनट पर सरोकार में स्मार्ट शहरों को स्मार्ट बनाए रखने में हमारी भूमिका ओबी पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में अर्ध कपारी कारण और निवारण विषय पर डॉक्टर अतुल अग्रवाल से की गई भेंटवार्ता सुनिएगा। भेंट करता है नीना सोनकर। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से की गई भेंटवार्ता का विषय है पशुओं में संक्रामक रोगों से बचाव और टीकाकरण। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम का प्रसारण होगा। इसमें ब्रेन स्ट्रोक कारण लक्षण और उपचार विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार से की गई भेंटवार्ता आप सुनेंगे। भेंट करता है आशीष चतुर्वेदी। साथ ही कार्निया की समस्या और निदान विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर अरुण शर्मा बताएंगे। इनसे भेंट की है सुरेंद्र राजेश्वरी ने। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर शिवलाल के गाए अर्धी लोकगीत आप सुनेंगे। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर रुबीना बनर्जी के गाए भजन आपको सुनवाए जाएंगे। पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे रात 9:30 पर। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना न भूलिएगा 11:00 से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है विश्व म्यूजियम दिवस। विश्व म्यूजियम दिवस अर्थात वह अवसर जब हम अपने अतीत की धरोहरों को केवल देखते ही नहीं बल्कि उन्हें समझने, उनसे सीखने और आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुँचाने का संकल्प भी लेते हैं। हर वर्ष 18 मई को मनाया जाने वाला यह दिवस हमें याद दिलाता है कि संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं बल्कि सभ्यता की जीवित स्मृतियां हैं। यहाँ इतिहास बोलता है, संस्कृति मुस्कुराती है, कला सांस लेती है और मानव विकास की यात्रा हमारे सामने सजीव हो उठती है। आज जब हम दुनिया अत्याधुनिक तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल युग की ओर तीव्र गति से बढ़ रही है, तब संग्रहालयों का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है, क्योंकि यही वे स्थान हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं। संग्रहालय हमें बताते हैं कि हम कौन थे, कहां से आए और किन संघर्षों तथा उपलब्धियों से गुजरकर आज यहां तक पहुंचे हैं। संग्रहालय किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक आत्मा होते हैं। इनमें सुरक्षित रखी गई प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, युद्ध से जुड़ी हुई वस्तुएं, लोक कलाएं, हस्तशिल्प, वैज्ञानिक उपकरण और दुर्लभ पांडुलिपियां मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। जब कोई बच्चा संग्रहालय में जाकर हजारों वर्ष पुरानी प्रतिमा को देखता है तो उसके मन में इतिहास के प्रति जिज्ञासा जागती है। जब कोई युवा स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े चित्र और वस्तुएं देखता है तो उसके भीतर राष्ट्र प्रेम की भावना प्रबल होती है, और जब कोई कलाकार चित्रकला या शिल्प कला को देखता है तो उसे अपनी रचनात्मकता के लिए नई प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार संग्रहालय केवल ज्ञान का केंद्र नहीं बल्कि संवेदनाओं और प्रेरणाओं का स्रोत भी है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में म्यूजियम की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा देश अनेक संस्कृतियों, भाषाओं, परंपराओं

और ऐतिहासिक घटनाओं का संगम है। यहाँ के संग्रहालय इस विविधता को बहुत सुंदर ढंग से संजोए हुए हैं। कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की झलक मिलती है तो कहीं मुगल कालीन कलाकृतियाँ दिखाई देती हैं, कहीं स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष की गाथा है तो कहीं जनजातीय जीवन की अनोखी परंपराएं सुरक्षित हैं। ये संग्रहालय हमें ये समझाते हैं कि भारत केवल एक भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि हजारों वर्षों से विकसित होती हुई सांस्कृतिक चेतना का नाम है। आज के समय में जब पीढ़ी मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में अधिक व्यस्त होती जा रही है, तब संग्रहालयों की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है। संग्रहालय बच्चों और युवाओं को वास्तविक ज्ञान से भी जोड़ते हैं। पुस्तकों में पढ़ा गया इतिहास जब आंखों के सामने सजीव रूप में दिखाई देता है, तब सीखने की प्रक्रिया कहीं अधिक प्रभावशाली हो जाती है। यही कारण है कि आज अनेक विद्यालय और शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को संग्रहालय भ्रमण के लिए प्रेरित करते हैं। इससे विद्यार्थियों में जिज्ञासा, शोध की प्रवृत्ति और सांस्कृतिक समझ विकसित होती है।

विश्व म्यूजियम दिवस का उद्देश्य केवल संग्रहालयों का महत्व बताना ही नहीं बल्कि समाज को यह समझाना भी है कि सांस्कृतिक विरासत की रक्षा प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। यदि हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियां अपने गौरवशाली अतीत से परिचित नहीं हो पाएंगी। आधुनिकता आवश्यक है परंतु अपनी परंपराओं और इतिहास को भूल जाना किसी भी समाज के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। संग्रहालय हमें आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाना सिखाते हैं। आज दुनिया भर के संग्रहालय भी समय के साथ बदल रहे हैं। अब केवल कांच के पीछे रखी वस्तुओं को देखने तक की संग्रहालय सीमित नहीं रह गए हैं। डिजिटल तकनीक, वर्चुअल टूर, ऑडियो गाइड, 3D प्रदर्शन और इंटरैक्टिव प्रदर्शनी के माध्यम से संग्रहालयों को और भी अधिक रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाया जा रहा है। इससे युवा पीढ़ी की रुचि भी संग्रहालयों की ओर बढ़ रही है। यह परिवर्तन इस बात का प्रमाण है कि संग्रहालय केवल अतीत में नहीं जीते बल्कि वर्तमान और भविष्य के साथ भी कदम मिलाकर चलते हैं। संग्रहालय हमें सहिष्णुता और वैश्विक समझ का संदेश भी देते हैं। जब हम विभिन्न देशों और संस्कृतियों से जुड़ी वस्तुओं को देखते हैं तब यह अनुभव होता है कि पूरी मानवता एक साझा विरासत है। अलग अलग संस्कृतियों के बीच सम्मान और समझ बढ़ाने में संग्रहालय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि विश्व संग्रहालय दिवस अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और सांस्कृतिक संवाद का भी प्रतीक माना जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि अनेक छोटे संग्रहालय आज भी लोग की उपेक्षा का शिकार हैं। कहीं संसाधनों की कमी तो कहीं जागरूकता का अभाव। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार, समाज और युवा मिलकर संग्रहालयों के लिए संरक्षण के लिए आगे आएं। हमें अपने बच्चों को संग्रहालयों की सैर करानी चाहिए, स्थानीय इतिहास के बारे में बताना चाहिए और अपनी धरोहर पर गर्व करना सिखाना चाहिए, क्योंकि जो समाज अपने इतिहास को याद रखता है वही भविष्य को सही दिशा दे पाता है। विश्व संग्रहालय दिवस हमें यह प्रेरणा देता है कि हम केवल तकनीकी रूप से विकसित राष्ट्र ही न बने बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी समृद्ध और जागरूक बने। संग्रहालय हमारी पहचान है, हमारी स्मृतियां हैं और हमारी सभ्यता के मौन प्रहरी हैं। वे हमें सिखाते हैं कि समय बदलता रहता है परंतु संस्कृति और इतिहास की नींव सदैव स्थायी रहती है। आइए इस विश्व म्यूजियम दिवस पर हम यह संकल्प लें कि अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का सम्मान करेंगे, उन्हें सुरक्षित रखने में अपना योगदान देंगे और नई पीढ़ी को भी इनके महत्व से परिचित कराएंगे, क्योंकि जब धरोहरें सुरक्षित रहेंगी तभी हमारी पहचान सुरक्षित रहेगी और जब पहचान सुरक्षित रहेगी तभी किसी राष्ट्र की आत्मा जीवित रह सकेगी। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की मैं अंजलि श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नव नियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। अब समाचार विस्तार से। स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। ये किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को स्वीडन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वीडन का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना सिर्फ उनका सम्मान नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है।
1: यह स्वीडन के हमारे उन सभी साथियों का भी सम्मान है जिन्होंने भारत स्वीडन संबंधों को समृद्ध किया, एक मजबूत आधार दिया।
0: स्वीडन में मिला सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक मिला ये 31वां वैश्विक सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अपने मंत्रिमंडल में नव नियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। नव नियुक्त मंत्रिमंडल मंत्रियों में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग सौंपा गया है। मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान राज्य मंत्री के तौर पर पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग के साथ साथ राजनीतिक पेंशन विभाग की भी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि सोमेंद्र तोमर को सैनिक कल्याण और प्रांतीय रक्षा दल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। नवनियुक्त 4 राज्य मंत्रियों को भी विभाग आवंटित कर दिए गए। कृष्णा पासवान को पशुपालन एवं दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन वहां के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण 2026 के तहत भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश का ऐसा राजनीतिक दल है जो देश को सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम कर रही है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारों ने

0: राष्ट्र प्रथम की भावना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की संकल्पना के अनुरूप अपने कार्यक्रमों को तैयार किया है। इससे देश के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है।
1: भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन सपनों को भी साकार किया है जिन्होंने अंत्योदय की बात, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलना चाहिए। देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को एक एक आवास मिल जाना, 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा मिल जाना, 10 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हो, ये समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को समृद्धि के शिखर तक पहुँचाने के अभियान का क्रम है।
0: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान और सांसद रवि किशन शुक्ल सहित कई पार्टी पदाधिकारी और प्रमुख जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के तहत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मानदेय बढ़ाने के साथ ही राज्य सरकार अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर का लाभ देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है हर बच्चा शिक्षा हासिल करे ताकि विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सके।
2: जब साफ नियत से कोई सरकार कार्य करती है, स्पष्ट नीति हो तो पैना माने में देर नहीं लगती। प्रदेश के अंदर जो ड्रॉप आउट रेट था लगभग 17-18% के आसपास था और आज हम इसको घटाते 3 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं और हमारा मानना है इसको 0 तक पहुंचाना चाहिए। हर बच्चा पढ़ेगा तब विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार हम कर पाए।
0: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने कल से CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 80.09 रुपए जबकि गाजियाबाद और नोएडा में ये 88.70 रुपए हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1-800-11-7800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। मथुरा सहित समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला पुरुषोत्तम मास मेला कल से शुरू हो गया। एक रिपोर्ट।
3: मथुरा समेत समूचे ब्रजमंडल में 1 माह तक चलने वाला अधिक मास मेला शुरू हो गया है। चहु और 84 कोस परिक्रमा का उत्साह और राधे राधे की गूंज सुनाई दे रही है। आस्था और भक्ति में डूबे लाखों श्रद्धालु मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना नंदगांव और गोवर्धन में 84 कोसी परिक्रमा कर रहे हैं। SP ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए परिक्रमा मार्ग गोवर्धन द्वारकाधीश और श्री कृष्ण जन्मस्थली समेत प्रमुख मंदिरों को सुपर जोन और सेक्टरों में कर भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पूरे क्षेत्र की CCTV कैमरों और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मोहम्मद उमर कुरैशी, आकाशवाणी समाचार, मथुरा।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल हुए 3 अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 5 अन्य घायल हैं। हमीरपुर के मौदहा क्षेत्र के छिरका गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक और कार की टक्कर में हुई दुर्घटना में 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सभी बागेश्वर से दर्शन कर घर वापस जा रहे थे। हमारे फतेहपुर प्रतिनिधि ने बताया कि वहां के रिंद नदी में नहाने गए 4 युवकों की डूबने से मौत हो गई जबकि अन्य 2 को गोताखोरों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं शाहजहांपुर जिले के कांट इलाके में कल सुबह डंपर और ऑटो की टक्कर में दंपत्ति सहित 3 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश

0: देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में 20 मई से कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही विभाग द्वारा कल और 20 मई को प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में दिन के समय कुछ स्थानों पर तेज लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच प्रदेश में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा ऑरेंज अलर्ट जारी किए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए जाए। मुख्यमंत्री द्वारा अस्पतालों में दवाओं, बेड और डॉक्टरों की उपलब्धता बनाए रखने के साथ एम्बुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय करने का निर्देश दिया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, ये सिर्फ उनका नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल के नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को किया विभागों का आवंटन। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बने एमएसएमई विभाग के मंत्री। प्रदेश में अनुदेशकों को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा कवर देगी सरकार। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अनुदेशक सम्मान समारोह और चेक वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए अलग अलग हादसों में 11 लोगों की मौत, 5 घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ, यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 401.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्कार, लखनऊ में अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनिए पार्थ प्रतिम राय का सितार पर बजाया राग तोड़ी और राग भैरवी। पहले हम आपको सुनवा रहे हैं पार्थ प्रतिम राय का राग तोड़ी में सितार वादन।

अभी आप पार्थ प्रतिम राय का सितार पर बजाया है राग भैरवी सुन रहे थे। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। नमस्कार, लखनऊ कार्यक्रम भी यही समाप्त होता है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मॉनसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
1: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए

0: प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
2: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
3: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
6: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
2: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
7: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून

0: मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं।
1: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश हो सकती है। वहीं विभाग ने आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में भीषण लू चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ इलाकों में भी लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलूट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। एनडीए सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृह मंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृह मंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और एनडीए की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही हैं। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10

0: करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर।

0: में अभिनय होता है जो फिल्मों में या सीरियल में होता है, क्या फर्क महसूस करते हैं आप?
1: बहुत फर्क है संजय जी. देखिए, हम जो नाटक करते हैं उसके लिए हम लाइव लाइव परफॉर्मेंस देते हैं,
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी
1: स्टेज परफॉर्मेंस है ना. और जो फिल्मों में है, आपको कितना रीटेक ये वो आपको तो सब पता ही है. और हमें एक नाटक करने के लिए, 1 घंटे का नाटक करने के लिए हमें लगभग 1 महीने का समय चाहिए होता है. और प्रतिदिन 2.5-3 घंटे हमको उसकी रिहर्सल देनी पड़ती.
0: बिल्कुल सही कहा आपने.
1: तब जाकर हम उसे खेलते हैं, तब खेल पाते हैं नाटक. तो नाटक में और फिल्मों में तो काफी अंतर है.
0: अच्छा कमला जी, आपने 22 साल लगभग आपको हो चुके हैं थिएटर करते हुए, आप गृहिणी भी हैं, आप बच्चों की माँ भी हैं.

0: घंटे का नाटक करने के लिए हमें लगभग एक महीने का समय चाहिए होता, और प्रतिदिन 2.5-3 घंटे हमको उसको रिहर्सल देनी पड़ती।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: तब जाकर हम उसे खेलते हैं, तब खेल पाते हैं नाटक। तो नाटक में और फिल्मों में तो काफी अंतर है।
1: अच्छा कमला जी, आपने 22 साल लगभग आपको हो चुके हैं थिएटर करते हुए, आप गृहिणी भी हैं, आप बच्चों की माँ भी हैं, आप सामाजिक भी हैं, व्यवहारिक भी हैं, और ऐसे में कैसे एडजस्ट कर पाती हैं आप?
0: बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये है कि हमारा पैशन है, हमें बहुत शौक है नाटक करने का, तो हम नाटक के लिए समय निकाल लेते हैं, कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। बच्चों को भी देखना है, घर भी देखना है, परिवार भी देखना है, समाज भी देखना है। एक महिला के लिए बहुत नाटक जो है बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, एक महिला के लिए।
1: जी अच्छा,
0: मेरे ख्याल से इतना पुरुष के लिए नहीं होता
1: जी। अच्छा कमला जी, मैंने देखा भी है, सुना भी है कि आप शायद दादी भी हैं, नानी भी हैं।
0: जी मैं दादी भी हूँ, नानी भी हूँ, और माँ भी हूँ। और अभी तक मैंने अपना जो भी किरदार निभाया है अपनी लाइफ में, बहुत ही अच्छे से अपने घर की घर गृहस्थी देखी है, अपना परिवार देखा है, आज बच्चे भी सब कामयाब हैं।
1: जी
0: बस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इसमें।
1: अच्छा कमला जी,
0: आप लोगों का बहुत सहयोग
1: है। कमला जी, एक नाटक आपका, हमने आपका अभिनय देखा था, उस नाटक का नाम था खूबसूरत बहू।
0: जी,
1: उसमें एक किरदार आपने किया था कि वो आज भी हमारे मानस पटल पर अंकित है, उस किरदार के कुछ अगर डायलॉग आपको याद हो तो हमारे लिसनर्स को भी आप शेयर करें, बताएं, सुनाएं।
0: अभी तो नाटक के डायलॉग तो मैं याद तो नहीं है मुझे इतना, काफी मैंने काफी साल पहले किया था ये नाटक।
1: जी अच्छा,
0: एक डायलॉग में
1: जी बोलिए बोलिए बोलिए बोलिए
0: एक डायलॉग है जो मैं उसमें चाची का किरदार किया है मैंने, और मैं अपनी बहू को, मेरी बहू नई नई शादी होके आती है
1: जी,
0: तो मैं तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो शादी होके आई और अपने हस्बैंड के साथ वहां रहे, तो मैं उसे बहुत डिस्टर्ब करती हूँ। तो बोलती ए धौलपुर वाली, यहाँ नहीं हो, जरा गोड़ दाब दियो हमारे, मतलब वो आना नहीं चाहती लेकिन मैं उसे जबरदस्ती बुलाती हूँ।
1: बहुत बढ़िया,
0: ज्यादा याद तो नहीं है। जी
1: गोड़ मतलब पैर दाब दे, यही
0: पैर,
1: तो
0: जी हाँ जी, मैं रात भर अपने पैर दबवाती रहती हूँ बस।
1: अच्छा कभी कमला जी ऐसा लगा कि थिएटर छोड़ देना चाहिए?
0: जी काफी बार तो लगा मुझे।
1: क्या क्या उस समय क्या मन में आ रहा था आपके?
0: क्योंकि नाटक में जैसे हम थिएटर करते हैं उसमें हमें डेली जाना है आना है, कन्वेंस का कितना दिक्कत होता है, और उसके बाद में फिर उतना समय देना होता है, फिर घर में भी दिक्कतें आ जाती हैं कि 3-3 घंटे आप 4-4 घंटे इतना टाइम देते हो, घर में भी देखो, फिर घर भी देखना है, फिर नाटक में देखिए पैसा नहीं है बिल्कुल भी, पैसों का बहुत अभाव है नाटक में। हम अपने पैसों से नाटक करते हैं, आप ये समझ लीजिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हम अपने पैसों से नाटक करते हैं, हम जाना भी अपना, क्योंकि हमें कभी पैसा नहीं मिला नाटक से। हम अपने आप जाते हैं, अपने कन्विंस से जाते हैं, अपना पूरा समय देते हैं, और बस यही है, कभी कभी लगता है लेकिन नहीं, फिर हम सब भूल जाते हैं। नहीं नहीं जैसे कोई रोल ऑफर आता है फट से सारा सब भूल गए, उसके बाद अपना रिहर्सल शुरू।
1: अच्छा कमला जी, अंत में हम आपसे कुछ शब्द बोलेंगे, उसका एक शब्द में आपको आंसर देना है, ठीक है?
0: जी।
1: थिएटर क्या है?
0: थिएटर देखिए एक बहुत ही अच्छी चीज है।
1: ना, जी केवल एक शब्द में कमला जी, थिएटर क्या है?
0: थिएटर देखिए हमारी लाइफ है।
1: क्या बात, स्टेज या कैमरा आप पसंद करेंगे?
0: स्टेज।
1: अभिनेता क्या है?
0: अभिनेता
1: जो
0: तो
1: जी जो अपने अभिनय से
0: जी
1: आप बोल सकती हैं, आपके जो मन में आ रहा हो, खैर कोई बात नहीं, अभिनेत्री बनने के लिए कितनी लगन चाहिए?
0: लगन तो पूरी चाहिए तभी आप अभिनेत्री बन सकते हैं, अगर आप में लगन नहीं है तब नहीं बन सकते आप, ये तो।
1: अच्छा थिएटरिस्ट नहीं होती तो क्या होती?
0: मैं टीचर होती, शिक्षिका।
1: क्या बात है कमला जी, आज प्रोग्राम नमस्ते बरेली में आपने समय दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। साथियों आज कमला जी

0: ज़्यादा समय ना लेके हम किसी दिन आमंत्रित करना चाहेंगे आपको आकाशवाणी बरेली में। बहरहाल आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भी कहना चाहेंगे, थिएटर सिर्फ अभिनय नहीं बल्कि समाज का आईना है, और आज की इस खूबसूरत बातचीत ने उस आईने को और भी करीब से देखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद कमला जी।
1: धन्यवाद संजय।

साथियों, अब गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में गर्मी से राहत और बदहजमी की काट क्या हो सकती है? तापमान बढ़ने से शीतल पेय पदार्थों की मांग बढ़ती जाती है। गर्मी में फास्ट फूड का सेवन करने वालों के लिए गैस और पेट दर्द की समस्या भी बढ़ने लगती है। ऐसे में याद आता है मॉकटेल। ये न केवल गर्मी में राहत दिलाता है बल्कि बदहजमी को भी दूर करता है। भीषण गर्मी में तरावट के साथ हाजमा दुरुस्त करने में मॉकटेल की अपनी अलग पहचान है। फ्लेवर अलग अलग लेकिन काम एक ही जैसा।

साथियों, आजकल युवाओं को भी तेजी से गिरफ्त में कई परेशानियां ले रही हैं, जैसे नियमित सिरदर्द, सांस की तकलीफ, चक्कर आने, बहुत सी और ऐसी ही मिलती जुलती परेशानियां। हाइपरटेंशन की बीमारी, साथियों मरीज लगातार इसके बढ़ रहे हैं। ये एक साइलेंट किलर के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। युवा भी इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। बीमारी की शुरुआत में अंधेपन खतरनाक हो सकती है और दिल का दौरा पड़ने के अलावा गुर्दे भी खराब हो सकते हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया की 30% से अधिक आबादी हाइपरटेंशन से प्रभावित है। इसमें होता क्या है कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140 के पार हो जाता है। तो हम तो प्रोग्राम नमस्ते बरेली के माध्यम से कहना चाहेंगे अपने सुनने वालों से कि जो ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ने ना दें और जो भी सतर्कता रख सकते हैं वो जरूर रखें।

साथियों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद आत्मनिर्भर बनने में विश्वास रखते हैं। ऐसे ही कुछ सहायता समूह बनाकर आत्मनिर्भर बनी कुछ महिलाएं, आइए बात करते हैं उनके विषय में। खुद को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए महिलाएं अब किसी भी तरह को काम करने से पीछे नहीं हट रही हैं। वो खुद आत्मनिर्भर बनने के साथ दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किसी महिला ने स्वयं सहायता समूह बनाकर ईंधन की बचत करते हुए सौर ऊर्जा से चक्की शुरू की, तो किसी ने झाड़ू बनाना शुरू कर दिया, अचार, टेडी बियर, मसाले सहित अलग अलग रोजगार शुरू कर सफलता हासिल की। जिले में कई महिलाएं हैं जिनकी सफलता की कहानियां दूसरी महिलाओं को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। नवाबगंज ब्लॉक की कई महिलाएं इस कार्य को कर रही हैं और आत्मनिर्भर खुद भी बनी हैं और दूसरी महिलाओं को भी बना रही हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम नमस्ते बरेली। 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। लीजिए आप सुनिए लोकगीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे डोरीलाल गोला की आवाज में कुछ लोकगीत।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद

प्रसारण आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हां, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें, हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए, airbareli@cbs.gmail.com।

0: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। 9 बजे हैं, आइए आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला।
1: दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला।
2: बरेली शहर में गंभीर और अति गंभीर मरीजों की सांस बंद होने पर
3: अब विश्व स्तरीय चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
2: बरेली शहर का सबसे किफायती आईसीयू, अति गंभीर मरीजों के लिए विशेष आइसोलेशन आईसीयू,
4: दीपमाला हॉस्पिटल, निकट टेलीफोन एक्सचेंज चौपला बरेली।
2: हार्ट अटैक, ब्रेन हैमरेज, फॉलिज और जहर खाए मरीजों के आधुनिकतम इलाज की विशेष किफायती सुविधा क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के द्वारा।
3: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा मोबाइल नंबर
2: 9837000048।
5: सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला, ये है कार्यक्रम और मेरे साथ मौजूद हैं दीपमाला अस्पताल के न्यूरो सर्जन डॉक्टर विकास गुप्ता। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: थैंक यू।
5: डॉक्टर साहब एक समस्या है हमारे समाज में, लोगों को स्लिप डिस्क की समस्या हो जाती है, कमर में दर्द रहता है और कई तरह के मिथक इससे जुड़े हुए हैं, तो वाकई में डॉक्टरी भाषा में एक डॉक्टर होने के नाते आप क्या बताएंगे, स्लिप डिस्क और कमर के दर्द का आपस में क्या रिश्ता होता है?
6: देखिए जनरली क्या होता है कि स्लिप डिस्क होती है, डिस्क है वो हमारी एक रीढ़ की जो हड्डी है, रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां हैं उनके बीच में एक कुशन दिया होता है
5: जी,
6: जिसको बोलते हैं डिस्क।
5: अच्छा।
6: उसका काम होता है कि जब मरीज चले या उस पर कोई वजन उठाए तो उनके बीच में हड्डियों पे जोर ना पड़े, उसका काम है गद्दे वाला।
5: अच्छा।
6: कि दोनों के बीच में कंप्रेशन ना पड़े, जनरल भाषा में हम बात करें
5: जी जी।
6: होता क्या है कि एक एज के बाद 40-50 साल के बाद क्या होता है कि उसमें जो होता है पानी की मात्रा उस डिस्क में कम हो जाती है।
5: अच्छा।
6: डिस्क सूखने लगती है तो उसका जो कंप्रेशन का पावर है वो कम हो जाता है, जिससे वो शॉक एब्जॉर्ब करता है, वो चीजें कम हो जाती है। धीरे धीरे फिर क्या होता है वो डिस्क जो है वो हड्डी के बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं स्लिप डिस्क बेसिक भाषा में, कि उसमें पानी की मात्रा कम हुई, डिस्क सूख गई। अब उसका काम था जो लोड के टाइम, जो शरीर पे वजन के टाइम उठाने के समय, मुड़ने के समय, चलने के समय
5: जी,
6: जो भार पड़ता था उसको प्रेशर नहीं आने देती थी हड्डियों पे, अब वो प्रेशर बढ़ गया।
5: अच्छा।
6: अब वो डिस्क निकलेगी और फिर क्या होता है जहां से डिस्क निकलती है पीछे होती है हमारी सारी रगें होती है जो नीचे पैरों में आ रही है, कमर में आ रही है, तब वो जो डिस्क निकलती है फिर वो क्या करती है उस रगों पे प्रेशर डालती है।
5: अच्छा, ये जो रीढ़ की हड्डी है, हम अगर समझने के लिए अपने श्रोताओं को बताना चाहें तो जिस तरह से शॉकर होता है, चाहे वो दोपहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन हो, शॉकर का जो काम है किसी भी झटके को या किसी भी दबाव को बर्दाश्त करना और ऊपर का जो सिस्टम है जो बैठी हुई सवारी उनको रिलैक्स में रखना।
6: बिल्कुल बिल्कुल सही एकदम उदाहरण है,
5: उसी तरह हमारी रीढ़ की हड्डी
6: का काम है, ये डिस्क का काम यही है कि शॉक एब्जॉर्बर शॉकर वाला काम करती है।
5: जी जी, आपने बताया ना अक्सर कि पानी सूख जाता है और जो गद्दी है वो कमजोर हो जाती है, बाहर की तरफ निकलने लगती है, तो ये एक शब्द इस्तेमाल करते हैं आप डॉक्टर लोग L4 L5, ये क्या है और L से क्या मतलब होता है?
6: L4 L5 या L का मतलब होता है लंबर, ये बॉडी में हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी जो है
5: जी
6: वो कई रीजन में डिवाइड है, चार रीजन मेन हो गए हैं जिनका बोलते हैं सर्वाइकल, जिसको हम बोलते हैं जो सबसे गर्दन वाली है।
5: अच्छा।
6: फिर नीचे सर्वाइकल से शुरू होती है हमारी थोरेसिक या डोर्सल।
5: अच्छा।
6: जो होती है हमारे सीने से और जहाँ पे रिब्स होती है वहां तक होती है डोर्सल,
5: पसलियों तक। जी जी।
6: उसके नीचे शुरू होती है लंबर।
5: अच्छा।
6: जो मेन हमारी बॉडी का वजन सब ऊपर से आके लंबर में आ जाता है, लंबर वो तो इंग्लिश वर्ड है जो हमें
5: जी, जी, जी।
6: वो उसी को बोलते हैं L शॉर्ट फॉर्म में।
5: अच्छा।

0: वो होती है पांच, एल वन से लेके एल फाइव तक।
1: अच्छा।
0: और फिर उसके नीचे होती है सैक्रम, जो एक इकट्ठी जो कूल्हे की हड्डी होती है उससे जुड़ी हुई, और उसके लास्ट में होती है कॉर्सिक्स। अच्छा। तो ये पांच रीजन में हमारी पूरी वर्टिब्रा डिवाइड है। तो मेन रीजन है जो एल वाला है वो लंबर होता है।
1: रीढ़ की हड्डी को पांच तरह से समझने के लिए डिवाइड किया गया है, और जो आपने बताया L4 L5 वाली स्ट्रक्चर है वो तो नीचे के कूल्हे की हड्डी से ऊपर का एरिया होता है, उसमें मात्र पांच हड्डियां होती हैं।
0: पांच हड्डियां होती हैं।
1: अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो L4 L5 कहा जाता है
0: जी,
1: वो कहाँ किस किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? क्या L4 L5 में ही दिक्कत होने की वजह से कमर में दर्द होता है?
0: हाँ, उसमें बेसिकली ये होता है कि अब कमर दर्द की बात करें तो कमर दर्द के कई रीजन हो जाते हैं, मतलब कई कारण हो सकते हैं।
1: जी जी।
0: एक डिस्क होगा जो जल्दी हमारे कॉमन हो जाती है 50-60 साल के बाद। उसके अलावा क्या होता है, कभी कभी जो मांसपेशियां जिन कमर की हड्डी को जो रोक के रखती हैं, जिनको बोलते हैं लीगामेंट्स हैं, उनमें भी कभी लूजनेस आ जाती है, मतलब थोड़ा सा वो ढीले हो जाते हैं, जिसकी वजह से हड्डियां भी आगे पीछे हो जाती हैं।
1: जी।
0: स्पोंडिलोडिस्काइटिस या स्पोंडिलाइटिस बोलते हैं उनको हम।
1: जी।
0: तो उसमें क्या होता है कि हड्डियों को आगे पीछे मूवमेंट के होने की वजह से भी दर्द होता है। तो कमर दर्द का डिस्क भी एक रीजन हो गया, स्लिप डिस्क बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: या फिर हड्डी में मूवमेंट हो गया उसकी वजह से भी हो जाता है।
1: जी।
0: कभी कभी वजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, पोस्चर जो मतलब हमारे बैठने का तरीका एक साइड हो जाता है, उसकी वजह से प्रेशर आ जाता है, उसकी वजह से भी दर्द हो जाता है। मांसपेशियों में कभी कभी एक तरफ से सिकुड़न आ जाती है, स्पाज्म जिसे बोलते हैं, उसकी वजह से भी दर्द शुरू हो जाता है।
1: जी।
0: तो ये कई रीजन हो जाते हैं कमर दर्द के बेसिकली।
1: जी डॉक्टर साहब, कमर दर्द की वजह तो आपने बता दी, स्लिप डिस्क के भी विषय में बता दिया, ये तय कैसे करते हैं आप? कौन सी जांचें कराते हैं जिनसे ये तय हो पाता है कि ये स्लिप डिस्क है, L4 L5 में दिक्कत है या कोई और वजह है?
0: हाँ, अब मैं इस पे बता दूं, जिससे L4 L5 एक कॉमन हो गया, मोस्ट कॉमनली जनरली L4 L5 या L5 S1 में डिस्क हो जाती है सबसे ज्यादा, डिस्क का वही
1: सुनने में आता है।
0: हाँ, सबसे ज्यादा यही होता है कि जनरली L4 L5 या L5 S1 दो लेवल के, लेकिन डिस्क उसके ऊपर भी हो सकती है।
1: अच्छा।
0: और नीचे भी हो सकती है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ डिस्क वही होती है, बट ये कॉमन सबसे ज्यादा इन्हीं लेवल पे सिर्फ डिस्क होती है।
1: अच्छा।
0: इस वजह से होता है, बट कमर दर्द L3 L4 से भी हो सकता है, L2 L3 पे भी हो सकता है, L1 L2 पे भी हो सकता है।
1: अच्छा अच्छा, ये कहीं भी हो सकता है?
0: ये कहीं भी हो सकता है। ऊपर से जो हम सर्वाइकल बोलते हैं,
1: हाँ,
0: तो वहाँ भी स्लिप डिस्क ही होती है, बट वो सर्वाइकल गर्दन वाले रीजन वाले
1: होती है,
0: तो वहाँ भी कंप्रेशन होता है, तो वहाँ हाथ पैरों में हाथों में दर्द शुरू हो जाता है।
1: जी जी।
0: ये नीचे आ गया क्योंकि नीचे का सिस्टम है, तो यहाँ पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। सर्वाइकल में चक्कर इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वहाँ से ऊपर के हाथों के अलावा भी कई जो हमारे बैलेंस बनाने की भी चीजें होती है उसकी वजह से भी आता है। बहुत से नर्व वहाँ पे और ज्यादा नसें होती हैं।
1: जी।
0: तो उस लेवल के हिसाब से वो सिम्टम में वो लक्षण आ जाते हैं।
1: डॉक्टर विकास गुप्ता, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग कैसे ये तय कर पाते हैं आखिर समस्या कहाँ है? कौन सी जांचें हैं जो आपको मदद करती हैं ये तय कर पाने में कि बीमारी क्या है और कहाँ से संबंधित है?
0: उसका भी देखो कई चीज़, पहले तो हम करते हैं एक एग्जामिनेशन जिसे हम बोलते हैं, अपनी जांच करते हैं मरीज से बात करके, मरीज के सिम्टम से कि दर्द कहाँ पे है, उसको कहाँ तक जा रहा है, कमजोरी हाथ पैरों में कहाँ तक है, तो उससे हमें एक लेवल का आइडिया लग जाता है कि L2 पे L3 पे L4 पे हम उससे लगाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: एक जो हमारी जाँच होती है, फिर मरीज को चल के देखते हैं, मरीज के सारा एग्जामिन करते हैं, उससे हमें लगता है। फिर दूसरी जो हम एक इन्वेस्टिगेशन जो हर जगह हर कोई करा लेता है, MRI कराते हैं।
1: अच्छा।
0: MRI से हमें एक डिस्क किस लेवल पे निकली हुई है उसमें कंफर्म हो जाती है।
1: अच्छा।
0: जो हम टेस्ट करते हैं उसमें कंफर्म इतना नहीं होता, जो हम अपना जांच करते हैं मरीज की उसमें कभी कभी डाउट रहता है किस लेवल पे है, लेकिन MRI से हमें कंफर्म हो जाती है कि किस लेवल पे डिस्क निकली हुई है।
1: अच्छा, MRI एक ऐसी जाँच है जिससे आप ये निश्चित कर लेते हैं कि समस्या कहाँ है,
0: कहाँ है।
1: अब इलाज के विषय में भी हम जानना चाहेंगे आपसे।
0: अब इलाज उसमें ये हो जाता है, अब डिस्क में भी कई जगह होती है, एक हम जो बोलते हैं सीधा डिस्क है सेंट्रल होता है।
1: जी।
0: एक होती है कि थोड़ा सा सेंट्रल में ना होके थोड़ा सा बाहर की साइड में डिस्क निकली हुई है, या एक होती बहुत बाहर निकली हुई है डिस्क, एक वो एक पूरा रीजन होता है, उसमें हम जैसे सेंट्रल, पैरासेंट्रल, लेटरल, कई कंडीशन में डिस्क स्लिप डिस्क होती है।
1: जी।
0: उसी हिसाब से उसमें लक्षण चेंज हो जाते हैं।
1: अच्छा।
0: अब बहुत ज़्यादा स्लिप डिस्क है और उसके बाद से जो जो जिसमें रगें निकल रही हैं वो कैनाल बोलते हैं हम, लंबर कैनाल जिसको बोलते हैं, लेकिन वो ये ना कि जिससे रगें पास हो रही हैं एक रास्ता है वहाँ पे।
1: अच्छा।
0: अब कितना दबाव उस डिस्क ने डाला है उस बेसिस पे हम उसका ट्रीटमेंट असेसमेंट लगाते हैं कि मतलब करते हैं कि क्या करना होगा इसमें।
1: जी जी।
0: तो अब ज़्यादा अगर बहुत ही ज़्यादा कंप्रेशन है और जो रगों को बहुत ज़्यादा दबाव हो गया तो फिर उसमें इलाज बचता है सर्जरी।
1: अच्छा।
0: जिसको हम कहते हैं डिस्केक्टमी या डिस्क को हम निकालते हैं।
1: क्या दवाइयों से भी ये ठीक होती है समस्या?
0: दवाइयों से ठीक हो सकती है अगर उसमें हमें करना होता है कि बहुत ज़्यादा कंप्रेशन नहीं है, जो रगें हमारी उस रास्ते से पास हो रही हैं उनके लिए पूरा स्पेस है, रगों में बहुत ज़्यादा कंप्रेशन नहीं है।

0: थोड़ा है, तो उसमें हम कुछ एक्सरसाइज होती है मरीजों को, कुछ दवाइयां लिखते हैं जी, थोड़ा रेस्ट बोलते हैं, जिससे कि धीरे धीरे वो उसमें फर्क आ जाता है।
1: कई बार डॉक्टर साहब कमर में बेल्ट बनवा देते हैं आप लोग मरीज की?
0: हाँ, वो बेल्ट इसीलिए बनवाते हैं कि बहुत ज्यादा लोड ना पड़े, मरीज झुके ना
1: जी,
0: क्योंकि जितना झुकेगा, ज्यादा वजन उठाएगा तो वो डिस्क और स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जितना लोड आएगा, इसलिए हम कहते हैं कि थोड़ा रेस्ट करें
1: जी,
0: तो उससे फर्क आता है। तो कभी कहीं कई मरीजों में 60-70% में ऑलमोस्ट की फर्क आ जाता है, अगर पूरा डिस्क में मतलब जो रगों की जो जगह है पूरी अगर दबी नहीं है
1: जी। सर्जरी की बात आपने की डॉक्टर साहब, ऑपरेशन चूंकि ऑपरेशन या सर्जरी ऐसा नाम है जिसको सुन के ही घबराहट होने लगती है लोगों को, और वो भी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी, कमर की सर्जरी, पता नहीं क्या भविष्य रहेगा, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। आज तो सर्जरी में बहुत कुछ नया आ चुका है, किस तरह सर्जरी करते हैं आप?
0: देखिए सर्जरी तो अब जैसे, हाँ जैसे बोल लो एडवांसमेंट आ गया, तो रोबोटिक्स आ गया और बहुत से ज़्यादा नेविगेशन गाइडेड आ गए, तो चीज़ें में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया। लेकिन एक बेसिक बात करी जाए तो डिस्क है, डिस्क को हमें निकालना है। अब उनके तरीके बदल गए, पहले हम खोल के चीरा लगा के करते थे, थोड़ा सा चीरा बड़ा लगता था, वो बेसिक था। ट्यूबलर डालते थे, एक ट्यूब एक आती थी छोटी सी ट्यूब डाल के निकालते थे
1: जी।
0: उसके बाद आ गया इंडोस्कोप आया,
1: अच्छा
0: फिर हम इंडोस्कोप से डालते थे और छोटा चीरा हो गया निकाल लेते थे
1: जी।
0: अब आ गया रोबोट्स, आप मरीज के पास डॉक्टर सर्जन जाता ही नहीं, बाहर रोबोट्स पे काम करता है। रोबोट्स में आर्म्स होती हैं जैसे हमारे हाथ हैं, उसमें 4-5 हाथ हैं, उनमें इंस्ट्रूमेंट पकड़ा दिए जाते हैं, दूर बैठ के पैनल पे सर्जन ऑपरेट करता है
1: जी।
0: तो ये सब चीज़ें एडवांसमेंट हुई हैं
1: जी,
0: लेकिन बेसिक चीज़ जो है कि वो डिपेंड करता है डिस्क किस लेवल पे है और कहाँ पे है
1: जी। जी
0: अगर बहुत ज़्यादा डिस्क बाहर निकली हुई है तो इंडोस्कोप से हो जाती है, जिसको बोलते हैं एक्सट्रूडेड डिस्क हमारी भाषा में, जिसके डिस्क पूरा ही निकल के बाहर आ गई, साइड में आ गई, इंडोस्कोप डाल के आप निकाल लोगे।
1: यानी दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन जो कहा जाता है उसके बारे में आप बता रहे हैं
0: जी। दूरबीन जो इंडोस्कोप जो बोला, हाँ बेसिकली वो दूरबीन, दूरबीन के, बट उसमें दोनों चीज़ों में फ़र्क आता है। ओपन सर्जरी में होता है कि अगर जो कैनाल जिसमें रगों की जगह है उसमें कई चीज़ें होती, कभी डिस्क की वजह से होती है, और क्या होता है कि जब डिस्क बहुत लंबे समय से होती है वहाँ पे दर्द हो रहा होता है, जो हड्डियाँ आगे पीछे चल रही हैं उसकी वजह से आसपास की मांसपेशियाँ या जिनको लिगामेंट हम बोलते हैं वो भी मोटी हो जाती हैं, थिकनेस हो जाती है उसको मतलब रोकने के लिए कि मूवमेंट ना हो
1: जी।
0: उन कंडीशन में क्या होता है कि इंडोस्कोप से हम उनको नहीं निकाल पाते हैं,
1: अच्छा
0: उसमें हम सिर्फ डिस्क निकाल सकते हैं, जिसमें हम कभी लिगामेंट होते हैं वहाँ पे फ्लैब हम बोलते हैं जिसको, वो भी हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है,
1: अच्छा
0: उन कंडीशन में हम ओपन सर्जरी ज़्यादा है वो प्रेफर करते हैं, वो एंडोस्कोपिक ज़्यादा, लेकिन एंडोस्कोपिक से लिमिटेड होता है, उसमें हमें विजन भी कम होता है
1: जी।
0: एंडोस्कोपिक के कई ड्रॉबैक भी हैं, कई एडवांटेज भी हैं। तो एडवांटेजेस में हो जाते हैं कि छोटे चीरे से सिंपल सा डिस्क निकाल दिया, ड्रॉबैक ये हो जाता है छोटा सा, ड्रॉबैक मतलब कि उसके
1: नकारात्मक
0: पहलू हो जाते हैं कि उसमें छोटा सा एंडोस्कोप है तो उतनी जगह हमें दिखेगी
1: जी जी,
0: तो हमें बहुत सी चीज़ें आसपास की नहीं दिखती हैं, तो हम उसमें फोकस डिस्क ही निकाल पाते हैं
1: जी।
0: तो ये फ़र्क होता है, बाकी इलाज के वही तरीके हैं, ओपन जो पुराना हमारा सिस्टम पुराना है उसमें ओपन में करते हैं
1: जी। आपने बताया 70% लोग बिना ऑपरेशन के भी ठीक हो सकते हैं जिनको स्लिप डिस्क की समस्या या फिर कमर में दर्द जैसी समस्या है, मात्र 30% लोगों में ही ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, और उसमें भी आपने कहा दो तरह के ऑपरेशन होते हैं, एक तो दूरबीन के द्वारा और एक खुला ऑपरेशन। सर दोनों परिस्थितियों में कितने समय तक के लिए मरीज को अस्पताल में रहने की ज़रूरत पड़ती है?
0: दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दूरबीन वाले में आप अगले दिन भी जा सकते हो, और सर्जरी वाले जो हम ओपन भी करते हैं उसमें भी कोई नहीं, हम एक दिन या दूसरे दिन उसमें भी मरीज घर जा सकता है,
1: अच्छा
0: उसमें कुछ नहीं। दूसरे दिन से डिस्क एक बहुत छोटी सी सर्जरी होती है, इसमें बहुत कुछ घबराने वाला नहीं होता, सिंपल सा होता है, जो रग है रग को हम साइड में करते हैं, अंदर से जो डिस्क निकली होती है उसमें छोटा सा चीरा देके और जो भी बाहर निकला होता है उतना डिस्क निकाल के निकाल दिया जाता है, जिससे कंप्रेशन खत्म हो जाता है,
1: अच्छा।
0: तो इसमें बहुत बड़ा कुछ घबराने का नहीं, लोगों में रहता है कि डिस्क की होगी हम चल नहीं पाएंगे
1: जी,
0: तो वो चीज़ें नहीं है, दूसरे दिन से मरीज चलना शुरू कर देता है,
1: अच्छा
0: हाँ, तो वो सब कुछ भी घबराने वाला नहीं होता है
1: जी, यानी बहुत रिस्की नहीं है ये कह सकते।
0: और सर्जरी के छोटे मोटे रिस्क होते हैं, वो कभी 0.1% किसी 2% में वो होते हैं जनरली, वरना कोई ऐसा कोई मेजर रिस्क नहीं है
1: जी। जी अच्छा, ऑपरेशन हो गया उसके बाद भी क्या किसी इलाज की किसी तरह की दवाइयों की जरूरत रह जाती है
0: जी? कुछ दिन तक, एक हफ्ते तक कुछ हम एंटीबायोटिक्स वगैरह चलाते हैं, कुछ दवाइयां देते हैं जिससे कि जब तक घाव सूख जाता है,
1: अच्छा
0: घाव सूखने के बाद फिर टांके कट जाते हैं 10-12 दिन में, उसके बाद फिर कुछ दवाइयों की जरूरत नहीं रहती है।
1: बड़ी महत्वपूर्ण बात है डॉक्टर साहब, चूँकि स्लिप डिस्क या कमर का दर्द एक ऐसी समस्या है जो आदमी को बेचैन करी रहती है, ना रात को नींद आती है ना सुकून मिलता है, आपने बड़ी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। चलते चलते क्या खास संदेश है आपका उन लोगों के लिए जो डिस्क स्लिप की समस्या से या फिर कमर के दर्द से परेशान है, तड़प रहे हैं?
0: देखिए उस मैं सबसे पहली चीज़ यही बोल

0: कहूंगा कि थोड़ा सा हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए लोगों को। ज्यादातर डिस्क में क्या होता है कि जो लोग वर्कआउट करने जिम में जा रहे होते हैं, आज की ये यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा लोड उठाते हैं बिना किसी ट्रेनर के उठाते हैं। उससे क्या होता है, बहुत ज्यादा कंप्रेशन मतलब प्रेशर आता है हमारी उसके ऊपर, बहुत दबाव आता है रीढ़ की हड्डी पे, उसकी वजह से भी वो सेल्फ डिस्क होगी। दूसरा चीज है वजन बढ़ जाना, उसकी वजह से भी सेल्फ डिस्क होगी, जिनको हम अब कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कि थोड़ा वजन कम किया जाए, थोड़ा एक्टिव रहा जाए, तो इन चीजों में हम बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं
1: जी। आपकी लापरवाही समस्याओं की वजह होती है और आपकी जागरूकता आपको समस्याओं से बचाती है। डॉक्टर विकास गुप्ता जो कि न्यूरोसर्जन है, उन्होंने आपको बता दिया है श्रोताओं किस तरह स्लिप डिस्क और कमर दर्द से आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो जागरूक रहिए और सुनते रहिए हमारा कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला।
2: आप सुन रहे थे दीपमाला हॉस्पिटल के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला लाया दीपमाला। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। 9:15 तो होने को है, थोड़ी ही देर में हम रिले कर रहे हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है चित्रलोक कार्यक्रम में। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के महत्व के प्रति जागरूक करना है। संग्रहालय हमारी संस्कृति, इतिहास, कला और विरासत को संजोकर रखने का महत्वपूर्ण माध्यम है। यहाँ हमें प्राचीन वस्तुएं, ऐतिहासिक दस्तावेज, दुर्लभ कलाकृतियां और सभ्यता, इन सब की अनमोल झलक देखने को मिलती है। संग्रहालय केवल ज्ञान का केंद्र ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का एक सशक्त माध्यम भी है। आइए इस अवसर पर अपने इतिहास और संस्कृति को समझने, सहेजने और उससे जुड़ने का संकल्प लें। और लीजिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं तमाशा फिल्म का ये गीत मीका सिंह और नक्श अजीज की आवाजों में। इरशाद कामिल के बोल हैं, AR रहमान की धुन।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने कितने

मीत ब्रो संजान और अरिजीत सिंह की आवाजों में गाए इस गीत के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है।
1: लीजिए प्रस्तुत है फोकस नेत्रालय बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। फोकस नेत्रालय जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय राजेंद्र नगर निकट डेलापीर तालाब बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90 68 80 50 50। जान है तो जहान है कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र मिश्रा का सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, MBBS MS वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ, और हमारे मेहमान हैं बरेली के फोकस पैथलैब फोकस MRI एंड डायग्नोस्टिक के निदेशक डॉक्टर मोहित अग्रवाल, MBBS MD। तो पहले आंखों में एलर्जी के बारे में जानकारी लेते हैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल से, उसके बाद हम आपको मिलवाएंगे डॉक्टर मोहित अग्रवाल जी से जो बेहद रोचक बातें आपको बताएंगे। तो आइए पहले मिलते हैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी से।
2: जान है तो जहान है कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल, MBBS MS वरिष्ठ फेको सर्जन एवं रेटिना स्पेशलिस्ट। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम जान है तो जहान में।
3: नमस्कार श्रोताओं।
2: डॉक्टर साहब आज का विषय है आंखों में एलर्जी, एक समस्या और समाधान। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
3: जिस तरीके से शरीर में एलर्जी होती है उसी तरीके से आंखों में एलर्जी होती है। आंख शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो जिस पे एलर्जी का प्रभाव काफी होता है। दूसरा है खाल। जैसे हमें पता है कि जो एलर्जी की प्रॉब्लम्स हैं वो ज्यादातर हमारी खाल में होती हैं, उसी तरीके से आंख, क्योंकि वो बाहरी यानी एक्सटर्नल ऑर्गन है, बाहर की तरफ को एक अंग है, इसलिए आंख में भी एलर्जी होना बहुत कॉमन है।
2: डॉक्टर साहब आंखों की एलर्जी के कौन कौन से कारण होते हैं वो भी बताइए।
3: आंख में एलर्जी के कई कारण हैं, सिर्फ ये कारण एक नहीं अनेक कारण हैं। जैसे कि सबसे जो कॉमन कारण है वो ये है, एनवायरनमेंट में या जो हमारे मंडल में जो फूल हैं उनके जो तिनके होते हैं उनकी वजह से हमारी पॉलन्स जिनको हम कहते हैं या पराग जिनको हम कहते हैं उनसे हमारी आंखों में एलर्जी होती है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ पॉलन्स की वजह से ही हो, लेकिन कई सारे अन्य कारण जैसे कि घर में धूल है जो कि क्या कहते हैं फंगस की वजह से होती है, थोड़े दिनों के लिए घर में डस्टिंग ना करें तो कई जगह पे कई कोनों पे जहाँ पे सीलन होती है वहाँ पे फंगस इकट्ठा होने लगता है, और यही इसी की जब हम सफाई करते हैं तो उस समय ये फंगस पूरे आपके घर में हवा में चला जाता है और उसकी वजह से हमारी आंखों में ये एलर्जी होने लगती है। इसी के साथ साथ एक बहुत और इम्पोर्टेंट कारण जो है हमारी आंखों में एलर्जी का है वो है पोल्यूशन।
2: डॉक्टर साहब धुआं तो किसी रूप में हो सकता है, अंगीठी का हो, कोयले का हो, स्मॉग का धुआं तो और भी नुकसान करता होगा।
3: सिर्फ धुआं या फिर कुछ जलाने से, कूड़ा जलाने से ही नहीं, बल्कि एलर्जी का एक बहुत जो कारण है वो ये है कि घर में जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट के धुएं से भी हमारे क्या कहते हैं आंख में, और बच्चों की खास तौर से आंख में एलर्जी काफी ज्यादा पाई गई है। धुएं के या धूल के क्या क्या कारण हैं? तो आंख की मेनली जो एलर्जी होती है वो इसी वजह से होती है।
2: डॉक्टर साहब ये घर में हम लोग जो पक्षी पालते हैं, कुछ लोग कबूतर पालते हैं या अन्य जानवर पालते हैं, कुत्ते बिल्ली वगैरह, तो क्या इनका भी असर होता है आंखों की एलर्जी में?

0: घर में कुछ तरीके के जानवर होते हैं, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, इनके जो फर होते हैं या इनके जो बाल होते हैं, इसकी वजह से भी हमारे खाल में और आंखों में एलर्जी पाई गई है। तो जिन लोगों के घर में पालतू जानवर हैं, उनके भी क्या कहते हैं, उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी डॉग को या बिल्ली को छू रहे हैं तो उसके बाद अपने हाथों को धो लें, ताकि ये एलर्जी जो है उसका डायरेक्ट हमारी आंखों से ना हो।
1: तो सुना आपने, हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं कि भले ही आप पशु पक्षी पालें लेकिन सावधानी बरतें, उनको भी साफ रखें और अपने आप भी साफ रहें ताकि आंखों में एलर्जी ना हो।
0: इसी तरीके से जैसे कि धुआं एक बहुत बड़ा कारण है हमारी आंख का, क्या कहते हैं, आंख में एलर्जी का, उसी तरीके से खुशबू जो कि अगरबत्ती से होती है, अगरबत्ती में धुआं भी होता है और खुशबू भी होती है। कुछ कुछ लोगों को जैसे गुड नाइट है या फिर परफ्यूम्स हैं जो इत्र होते हैं, उनसे भी, उन स्मेल से भी कई बारी क्या कहते हैं आंख में एलर्जी होने के चांसेस रहते हैं। कुछ कारण ऐसे भी हैं जो लेडीज में या फीमेल्स में ज्यादा हैं, जैसे कि आंखों का मेकअप या फिर जो हमारे आर्टिस्ट लोग होते हैं जो कि कहीं पे जाके किसी मंडली में जाके नृत्य करते हैं या मेकअप जो काफी लगाते हैं, तो आई का मेकअप भी एक बहुत बड़ा कारण है एलर्जीज का। इस बात का ध्यान रखें कि जब हमारी आंख आ गई हो या हमारी आंख में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, उस दौरान आंख में खास तौर से, और वैसे भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि जब हम लगाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि सूट नहीं कर रहे। कई सारे लोग होते हैं जो कि ये कहते हुए आते हैं कि आंख हमारी लाल हो जाती है नहाने के बाद, तो कई साबुन ऐसे होते हैं जो कि जब हम उसका साबुन का झाग हमारी आंख में चला जाता है नहाते नहाते ही, तो हमारी आंख लाल होने लगती है और अगर हम उस पर ध्यान ना दें तो हमारी आंख में एलर्जी बन जाती है। तो इसलिए ये कुछ कारण हैं जो कि हमारी आंख में एलर्जी करते हैं। फिर जब हम शहर के लोग जो हैं आजकल कॉन्टैक्ट लेंस काफी इस्तेमाल करने लगे हैं। कॉन्टैक्ट लेंस एक ऐसी तरीके ये है, क्या कहते हैं, जो कि चश्मा ना लगाना चाहते हैं जो लोग, वो कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं कुछ समय के लिए। तो जब हम वो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से भी आंखों में एलर्जी होती है। तो ये कारण है जो कि हमारी आंखों को एलर्जी या आंखों में लाली करते हैं, तो इसकी वजह से क्या कहते हैं हमारी आंखों में एलर्जी होती है।
1: सब एक बार बता दीजिए कि जब पढ़ते समय अपनी रोशनी को, लैंप को किस तरफ रखें, किधर से रोशनी आए।
0: बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा, और बच्चों के लिए बहुत जरूरी है और माता पिता के लिए बच्चों से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माता पिता ही बच्चों को इस बात के लिए समझा सकते हैं और बचपन में ही ये आदत डल पाती है कि बिस्तर पे ना पढ़ के कायदे से कुर्सी चेयर पे पढ़ें। और कुर्सी चेयर की जगह घर में, जैसे मंदिर की एक जगह होती है या पूजा करने का एक स्थल होता है जहां पे जाके एक दिशा में आप पूजा करते हैं, एक दिशा में आप पढ़ाई करते हैं, उसी तरीके से एक दिशा में पढ़ाई करने की भी एक वजह होती है। तो आप अपने बच्चे का जो कुर्सी और मेज है इस तरीके से रखें कि वो जो रोशनी है वो उसके किनारे की तरफ से आए, सामने मुंह पे उसके रोशनी ना पड़े। मुंह पे रोशनी ना पड़ के जो लैंप है या फिर जो ट्यूबलाइट है, ना तो वो पीछे से आनी चाहिए ना फिर वो डायरेक्ट सामने से आनी चाहिए, वो आपके साइड में से आनी चाहिए ताकि जो रोशनी है वो किताब पे पड़े ना कि आपकी आंखों और चेहरे पे।
1: बात आपने कहा, सुरक्षा की बात की, जांच की बात की, कुछ टाइम जैसे ही मिला मोबाइल पे लगे हुए हैं। अगर आप कहीं भीड़ में देखेंगे तो सभी लोग, लगभग 90% लोग मोबाइल पे ही लगे, उससे क्या एलर्जी नहीं हो सकती है?
0: आंख पे एलर्जी जो है मोबाइल देखना अपने आप में ही एक बहुत क्या कहते हैं गंदी आदत बन गई है। मोबाइल या फिर किसी भी चीज की अति खराब है, तो इसी तरीके से मोबाइल का भी हमको इस्तेमाल उतना ही करना चाहिए जितना जरूरी है। वक्त के साथ साथ हमारे आधुनिक दुनिया और आधुनिक तकनीकों में बहुत बदलाव आए हैं और उसी वही एक बदलाव है मोबाइल। वक्त के साथ हमें जरूर बदलना चाहिए मोबाइल हमें, लेकिन बदलते इस दौर में, बदलती इन तकनीकों में, हमें भी अपने आप को बदलना है। बदलना मतलब ये है कि हमें उन मोबाइल देख रहे हैं वो मोबाइल उतना देखें जितना जरूरी है। जब हम काम कर रहे हैं या हमें कोई रिसर्च करनी है या जब हमें कुछ पढ़ना है तो हम मोबाइल का इस्तेमाल करें, लेकिन फालतू में जो वीडियोस और सब चीजें हम लोग देखने की आदत बन गई है, खास तौर से लोग जो है बिस्तर पे जब लाइट ऑफ हो जाती है तो बिस्तर में जाकर फिर वीडियोस देखते हैं और मूवी देखते हैं, ये सब चीजें हमारी आंखों को बहुत नुकसान देती हैं।
2: फोकस, जहां विश्व

0: इस सबसे आधुनिक अमेरिकन फेको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय राजेंद्र नगर निकट डेलापीर तालाब बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90 68 80 50 50।
1: नमस्कार दोस्तों, चलिए एक क्विक आई टेस्ट करते हैं। कुछ सवाल ताकि आपको अपनी आंखों की सेहत के बारे में पता चले। क्या आपकी आंखें जलती हैं? क्या मोबाइल देखते वक्त सर में दर्द होता है? रात को आंखें बहुत सूखी और खड़कन जैसी महसूस करती हैं? या बच्चे दिन भर आंख स्क्रीन पर लगे रहते हैं? अगर ऐसा कुछ आपके साथ में है तो आज का शो स्पेशली आपके लिए है।
2: जी डॉक्टर साहब, हमारे श्रोता ये बातें आपकी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं।
1: फोन की बैटरी अगर 20% रह गई है तो हम लोग चार्जर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन आंखें 2% भी बची होती है तो भी कंटिन्यूसली काम करती रहती है। आंखें हमारी हमेशा काम करती हैं जैसे ही हम सोकर उठते हैं, लेकिन क्या हम अपनी आंखों का उतना ध्यान रख पाते हैं जितना आंखें हमें हमारी दुनिया दिखा रही हैं? एक सही सच्चा सवाल आप सबके लिए।
2: जी डॉक्टर साहब, वो सवाल कौन सा है हमारे श्रोताओं के लिए जो बहुत ही फायदेमंद होगा?
1: फोन ओवरहीट हो जाएगा तो वार्निंग देगा, लेकिन जब आंखें ओवरलोड हो जाएंगी तो क्या जवाब देती हैं? तब वो जवाब देती हैं हाँ दोस्तों, आंखों में जलन होती है, आंखों में लाली आती है, आंखों से पानी आता है, सर में दर्द होता है और आंखों की रोशनी भी धुंधली होती है। और इस समर वेकेशन में हमारी आंखें सब कुछ ये काम कर रही हैं, धूप में भी जल रही हैं और स्क्रीन्स भी है।
2: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं अपने श्रोताओं की तरफ से। गर्मियों में अपनी आंखों की कैसे देखभाल करें ताकि हमारे आंखें सुरक्षित रहें, चमकती रहें, अच्छी दिखाई देती रहें, रोशनी भी सही रहे, अपनों को पहचान भी सकें।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनुप्रिया और आज हम बात करेंगे कि इन गर्मियों में अपनी आंखों को कैसे बचा कर रखें। समर वेकेशंस ऑफिशियली स्टार्ट हो गई हैं और बच्चों का डेली रूटीन कुछ ऐसा है कि रात में टीवी, दिन में कार्टून, दोपहर में गेम खेलना कंप्यूटर पे और बीच बीच में स्विमिंग पूल। इस पूरी वेकेशन में सबसे ज़्यादा वर्कलोड कहाँ पर है? और हमारी आंखें भी अब पूछ रही हैं कि क्या ये छुट्टियाँ हमारे लिए भी हैं या ये छुट्टियाँ हमारे शरीर के लिए ही हैं सिर्फ? तो दोस्तों, इन गर्मियों की छुट्टियों में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें आँखों की सुरक्षा कैसे रखनी है। छुट्टियों में जब भी बाहर निकलें तो ध्यान रहे कि टोपी तो हो, साथ में उसके एक डार्क गॉगल्स भी हो। ये डार्क गॉगल्स सिर्फ काला चश्मा ही नहीं, रंग कोई सा भी हो, ज़रूरी नहीं है कि वो काला ही हो, लेकिन उसमें यूवी फिल्टर लगा हुआ होना चाहिए। ये यूवी फिल्टर ग्लासेस हमारी आंखों को सही मायने में प्रोटेक्ट करती हैं। यूवी फिल्टर से हमारी आंखों में अनचाहे सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं और हमारी आंखें सुरक्षित रहती हैं। यूवी फिल्टर पहुंचने से हमारी आंखों में नाखूने होने की परेशानी, जल्दी मोतियाबिंद बनने की परेशानी, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होने की परेशानी और सबसे ज़्यादा आंख में सूखापन होने की परेशानी पनपने लगती है। ऐसा ना हो इसलिए ज़रूरी है कि हम यूवी फिल्टर ग्लासेस का हमेशा इस्तेमाल करें जब भी हम बाहर निकलें।
2: डॉक्टर साहब, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे स्विमिंग पूल भी जाएंगे, नहाएंगे भी, गर्मियों का आनंद भी लेंगे, तो आंखों कैसे सुरक्षित रखें?
1: स्विमिंग पूल में भी बच्चे बिना गॉगल्स के स्विमिंग ना करें इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि क्लोरीन का पानी हमारी आंखों को नुकसान देता है, आंखों में जलन और लाली करने के साथ साथ आंखों में सूखापन करता है। तो इसलिए स्विमिंग पूल के वक्त भी गॉगल्स पहनना बहुत ज़रूरी है। कुछ बातें जो हमें अपनी आंख की सुरक्षा के लिए ध्यान रखनी चाहिए जब भी हम स्क्रीन पे हों।
2: डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल जी, आप जो कुछ बातें बताती हैं ना, हमारे श्रोता बड़े ध्यान से सुनते हैं, शायद कुछ ऐसी जानकारी वाली बात होगी जो वही बात की।
1: सबसे पहले 20-20-20 रूल का हमेशा इस्तेमाल करें, यानी कि हर 20 मिनट के स्क्रीन टाइम के बाद 20 फुट दूर देखना है, सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड के लिए। बीच बीच में पलकों को झपकाते रहें, इससे हमारी आंखों में सूखापन भी कम होगा और हमारी आंखों में अच्छा भी रहेगा। हमें कभी भी स्क्रीन को अंधेरे में नहीं देखना चाहिए,

0: इसलिए रात को लाइट बंद करने के बाद स्क्रीन्स को ना देखें, हमेशा लाइट में ही स्क्रीन्स का इस्तेमाल करें। ब्राइटनेस को एडजस्ट करके रखें ताकि आंख पे जोर ना पड़े।
1: डॉक्टर साहब, और कुछ सावधानियां बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: जो मोबाइल का डिस्टेंस है उसको आंखों से कम 25 से 26 इंच की दूरी पर रखें और इससे हमारी आंखों में थकान नहीं होगी।
1: जल ही जीवन है, जीवन ही जल है, तो पानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारे श्रोता पानी पिए, आंखों में नमी बनी रहे?
0: ज्यादा से ज्यादा पानी पिए ताकि हमारी आंखों के ऊपर जो परत होती है आंसू की वो हेल्दी रहे। 7 से 8 घंटे की स्लीप लें ताकि हमारी आंख पूरे दिन भर की थकान के बाद रेस्ट कर सके। आंखों को कभी भी मसलना नहीं है, इससे एलर्जी इरिटेशन बढ़ सकती है, आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, एस्टिगमेटिज्म बच्चों में बनता है, और सन गॉगल्स का प्रयोग हमेशा करना है।
1: डॉक्टर करुणप्रिया अग्रवाल जी, आंखों के चेकअप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी जो हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, आंखों का चेकअप कब कराएं? जी,
0: अपनी आंखों का साल में एक बार रेगुलर चेकअप कराने से कोई भी बीमारी जो होने वाली है उसको पता पहले से ही लगकर इलाज पहले से ही संभव है। लू चलने लगी है और बहुत तेज हवा भी चल रही है, और लू और हवा के चलते ही मेरे पास आज एक छोटी सी बच्ची आई जिसकी आंख में एक भुनके का पंख चला गया था। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी आंख में एक हड़कन होने लगती है, हम कह नहीं पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं, लेकिन छोटी सी भी आंख की परेशानी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। गर्मियों में ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी अगर आंख में समस्या होती है तो हम फौरन ही फौरन आके अस्पताल में दिखाएं और अपने तरफ से उस तिनके को निकालने की कभी कोशिश ना करें, क्योंकि यार मसले नहीं आंख को मसलने से या फिर उस तिनके को खुद से निकालने से आंखों में अब्रेशंस हो सकते हैं और आंख में जख्म बन सकता है। दूसरा, इस गर्मियों में आंख में बहुत पसीना आता है और पसीना कई बार आंख में भी चला जाता है। ऐसी स्थिति में आंख में खड़कन होती है, कभी भी ऐसा हो तो फौरन आंखों को स्वच्छ पानी से धो लें और अपने चेहरे को पोंछ लें।
1: डॉक्टर साहब, आपने 20-20 रूल के बारे में बताया, पानी में बच्चे नहाएं तो सावधानी क्या बरतें, गर्मियों में पानी ज्यादा पिए, मोबाइल कितनी दूरी से देखें। डॉक्टर करुणप्रिया अग्रवाल जी, अब आप ये बताइए, आंखें लाल हो जाती हैं इन दिनों गर्मियों में और आंखें आ भी जाती हैं जो बहुत दुखती हैं, करकती भी रहती हैं, तो ऐसे में
0: गर्मियों में आंख भी आ जाती है और ऐसी स्थिति में कभी भी ओवर द काउंटर यानी कि किसी भी दुकान पे जाके कोई सी भी ड्रॉप नहीं लेनी है, क्योंकि इन दवाइयों से हमारी आंख जो आई है कई बारी ठीक होने की बजाय बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। छोटी सी ही लापरवाहियां ही बहुत बड़े नुकसान को अंजाम देती हैं, तो अपनी आंखों की सुरक्षा रखें। अच्छा, अब एक सवाल रविंद्र जी, आपने बहुत बढ़िया किया कि आंखों को किस तरीके के पानी से और कैसे धोना चाहिए। तो आंखों को कभी भी ना तो गर्म ना ही बहुत ठंडे पानी से, जैसे कि हम इतनी गर्मियाँ हो गई हैं, हम टंकी खोलते हैं फौरन ही टंकी में बहुत गर्म आता है, थोड़ी देर के बाद नॉर्मल पानी आने लगता है और फिर आता है ठंडा पानी। तो ना तो हमें गर्म पानी आंखों में डालना है और ना ही बहुत ठंडे पानी को आंखों में डालना है। एक नॉर्मल टेम्परेचर पे स्वच्छ पानी, जो कि बिल्कुल साफ पानी हो, फिल्टर्ड वाटर हो, वैसे उस पानी का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी आंखों को साफ करना चाहिए। आंखों को दिन भर में मात्र एक बार ही साफ करना चाहिए, बार बार आंखों को साफ करने से भी हमारे आंसू की परत खराब होती है। तो दिन में एक बार स्वच्छ नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से हमको अपनी आंखों को धोना चाहिए।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आंख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध, पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 90-68-80-50-50।
3: कोई अपना रोशनी की किरण बनकर उजाला देता है तो मिलता है एक ऐसा उजाला, फोकस नेत्रालय बरेली का उजाला। आइए बात करते हैं उनसे जिन्होंने फोकस नेत्रालय से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया। वो खुश हैं, क्या कहते हैं, आइए बात करें। आपका नाम क्या है?

0: सहाना भी।
1: सहाना भी कहाँ से आई आप?
0: भिंडौली आज।
1: ये आपको आँख में जब दिखाई नहीं देता तो कैसा लग रहा था उस समय?
0: धंधा दिख रहा
1: है। अच्छा, अब ऑपरेशन हो गया है?
0: हाँ, ऑपरेशन हो गया।
1: कैसा हुआ है?
0: सही हुआ।
1: अच्छा अच्छा, खूब दिखाई देता है।
2: फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आँख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
1: कहाँ से आएंगे?
0: धौरा।
1: कैसा लगा ऑपरेशन कराने से पहले?
0: ऑपरेशन से पहले ये खड़कती थी, पानी निकलता था आँख में।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, तो इसमें दिक्कतें थी बहुत, जैसे चावल का एक पानी होता गाढ़ा गाढ़ा, इस तरीके से निकलता था, तो इसलिए आज दिखाने आए थे तो ऑपरेशन बोला था।
1: अच्छा, ऑपरेशन हो गया।
0: हाँ,
1: ऑपरेशन के बाद कैसा लग रहा आपको?
0: कभी कभी जैसे खड़क मानती है आँख, तो ये उस दिन दिखाने आए थे तो ये बोला कि ये भी बनेगी, तब दोनों आँखों में सुकून मिलेगा।
1: अच्छा, ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ भी दी होंगी डॉक्टर?
0: दवा दी, हाँ, दवा भी दी, ड्रॉप भी दिया, दवा भी दी खाने की।
1: डॉक्टर करुपिया ने आपको क्या क्या बताया कि जब आँख बनने के बाद कितना नहाना है? जी,
0: नहाने को तो ये बोला कि जैसे 15-20 दिन मत नहाना, आँख में पानी नहीं जाए, दिक्कत बढ़ जाती है ना।
1: अच्छा, तो हम दवाई भी दी होगी?
0: हमने एक महीने नहीं जान दिया पानी, दवा भी दी थी।
1: अच्छा, दवा दी, दवा के पैसे तो नहीं लगे?
0: नहीं। तो
1: आपके यहाँ कैसे बनी?
0: आयुष्मान कार्ड लगाया था, आधार कार्ड लगाया था, दोनों चीजें लगाई थी।
1: क्या कहेंगे फोकस नेत्रालय के बारे में?
0: अच्छा बताएंगे सबको, लोगों को, जैसे अगर कोई आँख बनवाना चाह रहा है तो ये कहा जाएगा कि फोकस हॉस्पिटल सही है, अगर आप बनवाना हो तो वहाँ जाकर बनवा लो।
1: परिवार में आपके कौन कौन है?
0: परिवार में हमारे 4-5 लड़के हैं, छोटे छोटे हैं, कुछ ये है, बड़े हैं।
2: श्रोताओं, आँखें क्या हैं? सिर्फ दो कंचे नहीं, ये दो रब का लिखा हुआ वो खत है, जिसे हर कोई पढ़ तो लेता है पर समझ कुछ ही पाते हैं। आंखों ने देखे हैं मेले, आंखों ने देखे हैं झमेले, आंखों ने देखा बचपन का आंगन, माँ की लोरी, बाबा का दामन। ये आंखें जब हंसती हैं तो सावन बरस जाता है, ये आंखें जब रोती हैं तो पत्थर भी पिघल जाता है। कभी आंखें बन जाती हैं दर्पण, दिल का हर एक कोना दिखा देती हैं। झूठ छुपाओ लाख जुबां से, ये नमी सब बयां कर देती है। बच्चों की आंख में सपना पलता है, चांद तारों से भी आगे निकलता है। बूढ़ी आंखों में यादें बसती हैं, गुजरे लम्हों की बारात सजती है। आंखें शिकारी भी हैं, आंखें पुजारी भी हैं, देवी की मूर्ति में नूर बनकर ये आंखें ही उतारी जाती हैं। पर आज की आंखें थकी थकी हैं, स्क्रीन की रोशनी में झुकी झुकी हैं, बचपन की आंखों में चश्मा चढ़ा है, मोबाइल ने अपना बचपन पढ़ा है। ए लोगों, संभालो इन आंखों को, ये अनमोल हैं, बेशकीमती तोहफा हैं ये। 20-20-20 का नियम अपनाओ, इसलिए कहता हूँ, आंखें सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं, आंखें तो पूरी कायनात की गवाह हैं। फोकस नेत्रालय, जहां विश्व की सबसे आधुनिक अमेरिकन फोको मशीन से मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, जो आयुष्मान के अंतर्गत फ्री में होता है। आँख में पड़ने वाले सभी प्रकार के देशी या विदेशी लेंस की सुविधा उपलब्ध। पर्दे, काला पानी, नासूर, पलकबंदी के इलाज की सुविधा। हर माह के आखिरी बृहस्पतिवार को रेटिना का क्लिनिक होता है, जिसमें पर्दे की जटिल समस्याओं का उपचार किया जाता है। फोकस नेत्रालय, राजेंद्र नगर, निकट डेलापीर तालाब, बरेली। डायल करें 9068805050। मोबाइल नंबर पुनः सुने 9068805050।
1: आपका नाम?
3: मेरा नाम परवीन जहां है।
1: कहाँ रहती हैं आप?
3: बहेड़ी रहती हूँ।
1: बहेड़ी?
3: बहेड़ी मीना बाजार, मोहल्ला टांडा।
1: तो आपकी आंख में क्या समस्या हुई?
3: मेरी आंख में सर समस्या यह है कि जब मैं सुबह में उठती हूँ तो चीपड़ आते हैं, और दिन भर मेरी आंखें सूजी सूजी रहती हैं, सुरख सुरख हो जाती हैं धूप में निकलने से। सारे मैंने डॉक्टरों को दिखाया, मुझे इतना आराम नहीं हुआ, लेकिन यहाँ फोकस के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था। जब मैंने इनको मैम को दिखाया, मुझे बहुत ही फायदा लगा 8 दिन की दवाइयों से।

0: cbs@gmail.com।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 10 बजे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दीवाने इस सेगमेंट के अंतर्गत तिलक राज अरोड़ा को।
1: नमस्कार, मैं खुर्जा से तिलक राज अरोड़ा। आज हमारी आकाशवाणी 90 वर्ष की हो चुकी है। इस शुभ अवसर पर सभी श्रोताओं को, उद्घोषकों को, अधिकारियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस 90 वर्ष के सफर में 50 साल से हम भी आकाशवाणी के साथ हैं। आकाशवाणी प्रोग्राम पहले मैं मीडियम वेव पर विविध भारती दिल्ली, आकाशवाणी रोहतक एवं अन्य कार्यक्रम सुनता था। आज मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम सुन रहा हूँ। आकाशवाणी बरेली से प्रसारित सभी कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहे हैं। आकाशवाणी बरेली के उद्घोषक बहुत ही मेहनत, लगन, निष्ठा से कार्यक्रम तैयार करते हैं, जो हमें बेहद पसंद आते हैं। कार्यक्रमों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से आप सब।

श्रोतों, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में मंगलवार दिनांक 19 मई को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे 18 मई को शाम 4 बजे से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर

फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार पुनः सुने। विषय समय से पूर्व पैदा हुए अथवा प्री टर्म बच्चों की गंभीर बीमारियां और उनके इलाज में वेंटिलेटर व अन्य मशीनों की भूमिका। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, 18 मई को शाम 4 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200। सूचना समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। 10:05 हुए हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम में सबसे पहला गीत आप सबकी ही पसंद पर, और वो गीत है आप लोगों में से ही हमारे कुछ श्रोताओं की पसंद। फिल्म का नाम है मेरे जीवन साथी। किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं। सुनना चाहा है गांव नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्डा अलका मिड्डा, और इनके साथ ही सुनना चाहा है हमारे अन्य श्रोताओं ने भी, और वो हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, मैंडी, सौरभ और साइना शर्मा। गांव मुरादगढ़ करनाल हरियाणा से रमेश कुमार कंबोज, पिंकी वंश और भुवेश कुमार कंबोज। ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और गरिमा बगड़िया, ये हमारे श्रोता बांडीवाला फाजिलका पंजाब से। सुनना चाहे शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, और ये हमारे श्रोता है मानपुर साबित मुरादाबाद से। धनौरी तेलीबाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया आयान बाबू, मोहम्मद फरमान सलमान, इरफान इसरार, नरगिस खातून। मुरादाबाद दूल्हापुर उत्तर प्रदेश के हमारे श्रोता राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, धोता जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते और अनुष्का, फरांसी हिसार से राजकुमार डुडी, प्रमोद कुमार डुडी, पुष्पेंद्र कुमार और डुडी परिवार के सभी लोग, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गाव्या सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी, जयपाल यादव, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस निहावकर, निर्मला विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार आशीष और उनके परिवार के सभी लोग, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरवलकर, रतनमाला आरती गौरी, ओम कुमार सुरवलकर, और सुनना चाहा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। आइए सुनते हैं।

कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं जोधा अकबर मूवी का गाना जावेद अली और साथियों की आवाजों में। सुनना चाहे सहारनपुर से राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक और हर्षित शर्मा। साथ ही सुनना चाहा है ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश गोर्धन घनश्याम, बाबू गौरी हसन सिक्का और चरडोगरी पिपरिया, कबीरधाम छत्तीसगढ़ के दुर्गाराम साहू, अजय कुमार, जय किशन कुमारी साहू, इंद्राणी माया और साहू परिवार के सभी लोग। खुर्दा उत्तर प्रदेश के प्रकाश अरोड़ा, तिलक राज अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। बागपत उत्तर प्रदेश के संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। उगैती से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, देवेंद्र गुप्ता और डीके हिटलर। गांव हांडीखेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। मुकेश, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी और बलवीर सिंह। ये हमारे श्रोता हैं दूल्हापुर मुरादाबाद से। चक 5 MD पतरोड़ा श्रीगंगानगर राजस्थान से मंगल जनागल, राही, रोशनी, अंकुर, इंदु, सुनील जनागल और उनके परिवार के सभी लोग। पीपरपारा पालचुबा मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तराधिबाकर परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता, नितिन और वंशिका। उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, बिमलेश, दिव्यांश और उनका समस्त बघेल परिवार। इसी गीत को सुनने का इन्होंने हमारे पास आपकी पसंद में कमेंट किया है और ये रहने वाले हैं ग्राम रजौनी, महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के। तो साथियों आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद आपके रेडियो सेट पर।

श्रोतों एक आवश्यक सूचना सुनिए। पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के संबंध में पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक हैं, जिनकी स्थापना 1954 में हुई थी। ये पुरस्कार प्रत्येक

वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाते हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज कार्य, विज्ञान और तकनीक, लोक कल्याण और नागरिक सेवा, उद्योग और व्यापार इत्यादि के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं असाधारण योगदान पहचानना और उन्हें सम्मानित करना है। सभी व्यक्ति चाहे वो किसी भी

अंकित हो सकते हैं। इन पुरस्कारों के संबंध में जारी नियम एवं दिशा निर्देश padmaawards.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। नामांकन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा गणतंत्र दिवस 2027 के अवसर पर की जाएगी। सूचना समाप्त हुई। एक बार फिर से आपको जोड़ते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद से, और अगली पसंद है फिल्म साजन से। गायक कलाकार लता मंगेशकर और साथी सुनना चाहा है आर्यनगर कोका बिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन आरोशी, ओशिका आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। सुनना चाहे सब्जी मंडी उसाबा वार्ड नंबर 1 बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा ध्यानपाल, संजय अनमोल, अंश करिश्मा और मुस्कान। शेरकोट बिजनौर से नदीम कलीम, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल और उनके बहुत सारे साथी। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महाजबी निसार अंसारी, नुजहत फातिमा, अबरार अहमद, इसरार अहमद, इकबाल अहमद, इस्लामुद्दीन, बन्ने भाई और पप्पू भाई, साथ में उनके बहुत सारे मित्रगण। सुनना चाहे मुकेश कुमार ने भी शंकरपुर पोस्ट उसाबा बदायूं से सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरत श्री यादव। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, तनुजा, ईशांत और उनके परिवार के सभी लोग। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी लोग। धाड़ी नादोरा महाराष्ट्र के श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण, लव्या, आरब और एसके पप्पी। बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनेश और राहुल शर्मा, नंगलखेड़ा, फगबड़ा, पंजाब से ये हमारे श्रोता थे। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति, गुरुमंत कौर, मनु और उनके परिवारी लोग। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आइए सुनते हैं आपकी पसंद।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और ये कार्यक्रम हम आपको सुनवा रहे हैं 100.4 MHz आकाशवाणी बरेली से। अगला गीत आप सबकी ही पसंद पर तवायफ फिल्म का गीत आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं। सुनना चाहे फरीदपुर बरेली से हमारे लिसनर हैं अरहान, साहिल, अयान और वसीम। साथ ही सुनना चाहे हिंद राज रेडियो श्रोता संघ अहिल्यानगर नेवासा खुपटी महाराष्ट्र के बंडू लोहार, माया शिवांश, चंद्रकला देवीदास, हरिभाऊ, दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर हनुमानगढ़ राजस्थान से प्रेम सिंह बड़वाल, सुखबीर, काजल, लखबीर, रानो, कृष्णा छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, निशान, अनमोल और उनके परिवार के सभी लोग, गुन्नौर यूपी के फारूक

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30
1: पता है। न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
2: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
1: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
2: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
1: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
3: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
4: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
4: हाँ
3: 5,000 बच गए।
4: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना
4: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
4: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़िया जाओ भाई।
5: आरबीआई कहता है
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
7: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
8: आरबीआई कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
9: कार्यक्रम का अगला गीत फकीरा फिल्म से किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें हैं। सुनना चाहे कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना और उनके बहुत सारे साथियों ने, वारसी क्लब सिंदौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, कलमंडी खुर्द झालावाड़ राजस्थान से अनूप सिंह नाथावत, रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद बंडलकर, वीणा और विविधा बंडलकर, हररपुर मटकली बरेली से शाहरुन्नूर अंसारी, फरियाद हुसैन, शकील अहमद, मोइन अंसारी, तस्लीम और डीजे प्रधान,

रेडियो श्रोता संघ एक रिश्ता अंबई सिल्लोड छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र के अनिल कुमार घोट के वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश कुमार उसाबा वार्ड नंबर एक बदायूं से धर्मवीर उषा ध्यानपाल संजय अनमोल अंश करिश्मा और मुस्कान जमशेदपुर से चिन्मय महतो रेखा शिवांश और उनके परिवार के सभी लोग लोहडडा बागपत से जगमोहन प्रजापत अर्जुन भारती अंजलि नितिन जगमोहन सुधीर नूतन भुवनेश्वरी देवी पाहदा पलारी छत्तीसगढ़ के नीतीश कुमार तनुजा ईशांत लखन सावित्री और देवांगन परिवार के सभी लोग जमुना देवी साहू प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा आराध्या ये हमारे श्रोता नागर कोरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राजधानी रायपुर से नीलू मेघ डॉक्टर वंदना कुमार बिट्टू कुमार और उनके समस्त मित्रगण साथी उनके परिवारीजन एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना किरण लव्या आरब और एसके पप्पी अमरीक सिंह खनुजा ये हमारे श्रोता हैं धनबाद झारखंड से रज्जाक मोहम्मद शमीम बेगम इमरान खान इरफान खान ये हमारे श्रोता रहे हनुमानगढ़ टाउन से और सुनना चाहे सेक्टर नंबर दो आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश के पवन गौड़ सुयश गौड़ आशीष तन्मय अपूर्वा हृदय और उनके समस्त परिवार के लोग साथ ही सुनना चाहे हमारे और भी श्रोताओं ने और वो श्रोता हैं ग्राम मुरादगढ़ करनाल हरियाणा से रमेश कुमार पिंकी वंश और उनके परिवारी लोग आइए सुनते हैं

साथ ही सुनना चाह रहे हैं हमारे ये श्रोता हैं, और वो कौन से श्रोता हैं बता देते हैं आपको। मुकेश कुमार ये सुनना चाहे, इन्होंने इसी गीत को। गगनदीप थांदी, तृप्ता, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, वामिका और वाणी थांदी, ये हमारे श्रोता नवाशहर पंजाब से। हाजी गफ्फार खान साहब ने भी इस गीत को सुनने की हमारे पास अपना कमेंट भेजा है। और नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा।

सतयुग शिकारी फिल्म के इसी गीत को सुनना चाहा था। मालियान सरदाना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन और मास्टर जीवीएम जैन ने। अगला गीत आपकी ही पसंद है और वो गीत है अनोखी रात फिल्म का। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हैं। सुनना चाहा है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सुहन जोशी, हरमिंदर चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, वैदेही, हंसिका जोशी और अकीता जोशी। साथ ही चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप, विश्वदीप और मनीषा येले, नंदकिशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री महत्रे, अंजलि, बाला साहेब करवा, रामनिवास और धनंजय। तो साथियों सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आपकी पसंद पर आधारित।

0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: सर मरोड़ा सांप का कैसा कुंडली मारकर बैठा है जोड़ा सांप का ये कहीं भी दिख जाता है तो जाड़ों में भी आदमी को पसीना आ जाता है दमूरे
2: जी उस्ताद
1: जो पूछेगा बतलाएगा
2: बतलाऊंगा
1: इंसान का उल्लू बनाएगा
2: नहीं बनाऊंगा
1: किसी का बैंड बजाएगा
2: नहीं उस्ताद
1: अरे नहीं उस्ताद अच्छा मुर्गा बनाएगा
2: नहीं उस्ताद
1: दमूरे तू आजकल मेरी बात नहीं सुनता तो क्या सुनता है
2: मैं आजकल 100.4 FM सुनता जो इंसान को इंसान बनाता है
1: मतलब
2: न उल्लू न मुर्गा न किसी का बैंड बजाता 100.4 FM इंसान को सिर्फ इंसान बनाता
1: बच्चा लोग बजाओ ताली

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। 11 बजे हैं, आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम सबरंग। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं अनूप जलोटा और साथियों की आवाज में भजन, आइए सुनते हैं।

लता मंगेशकर के स्वर में ये भजन अभी आपने सुना। अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक गजल जगजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में, आइए सुनते हैं।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है। इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव, अजय मोगा और अहमद मोगा का। लिखते हैं,
2: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी। आपको साधुवाद।
1: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
2: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है
1: जी। और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
2: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों। गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं
1: जी।
2: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
1: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
2: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
1: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
2: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं। लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
1: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न, हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं लेकिन हम कहेंगे, विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
1: जी विमलेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
1: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
2: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें एक

0: Did you like the song?
1: Yes, sir, it was lovely.
0: So, children, here is something to do for you, okay?
1: Okay, sir.
0: Sit outside your home or go to any park and see the clouds go by. And tell your friends what you have observed.
1: Okay, sir, it will be so lovely.
2: It will be good.
0: Yes. And one thing more, notice the colors of the clouds and you will find that the clouds also have different colors from time to time.
1: Yes, sir!
2: I have seen rainbow.
3: It has 7 colors.
0: So children, whenever you see the clouds, they have different
1: shapes.
0: Yes, shapes. And they have different
1: colors.
0: Very nice.
4: Show of Clouds. You were just listening to this program. Program Coordinator, Professor Rajendra Pal. Technical Coordinator, Bati Langlingdo. Child Singer, Angel. Child Artists, Soham, Vedika, Vanya, Navya, Riddhi and Lavish. Sound Recordist, Mayank Kumar. Assistance in Production, Kusum Lata. Directed and produced by Ajit Horo. This program was brought to you by CIET-NCERT, New Delhi, India. अभी आपने सुना कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम. अगले कार्यक्रम का शीर्षक है तुलसी गौड़ा.
5: ये कार्यक्रम जंगल की एनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली महान आदिवासी पर्यावरण विशेषज्ञ तुलसी गौड़ा के जीवन, उनके पर्यावरण पर शोधों और वृक्षों को बचाने के उनके प्रेरणादायक अभियान की जानकारी देता है. विशेष रूप से मातृ वृक्षों पर उनकी खोज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है.
6: नंगे पांव, धोती नुमा पारंपरिक कपड़े, आदिवासी गहने पहनी
7: तुलसी गौड़ा, 72-year-old ट्राइबल वुमन फ्रॉम कर्नाटका.
8: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तंको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करिछंती.
9: इनसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट शी इज कॉल्ड इन कर्नाटका तुलसी गौड़ा.
6: जंगलों की इनसाइक्लोपीडिया कही जाने वाली तुलसी गौड़ा
10: को देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया है.
11: ये आकाशवाणी है. प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार. आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
12: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण.
11: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है. देश भर में प्रसन्नता की लहर.
13: नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है. राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा.

0: जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती है।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों मैं करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी 2 बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
3: अच्छा,
2: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो 2 दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए।
3: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
2: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
3: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
2: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
2: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
3: अच्छा,
2: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
3: अरे, ये तो बड़ी ही

0: अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
1: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
0: बिल्कुल होता है।
1: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
0: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
1: है ना
0: जी।
1: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
0: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
1: बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
1: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे।
4: तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
1: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
4: अच्छा।
1: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
4: अच्छा।
1: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
4: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
4: अच्छा।
1: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
4: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
1: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हो तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान

0: संभाल करके उन्हें पालते हैं, समझे?
1: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
0: हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है, ठीक है ना?
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज, एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत धन्यवाद।
2: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
3: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
6: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे NCERT उमंग प्रायोजित कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है। थोड़ी देर में हम अगला कार्यक्रम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टनसन से बातचीत की। श्री मोदी ने दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह प्रधानमंत्री

मोदी को 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांडुलिपियों को भारत की आत्मा का अध्याय मानते हैं। वेद, उपनिषद, रामायण जैसे ग्रंथ हमारी धरोहर हैं। पांडुलिपियों में गणित, विज्ञान, दवा और कला का ज्ञान है। यह हमारी संस्कृति और सोच को दिखाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आग्रह करता हूं कि पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आगे आएं। यदि आपके पास भी कोई भी प्राचीन पांडुलिपि, हस्तलिखित ग्रंथ, पत्र आदि उपलब्ध हैं तो इसकी जानकारी ज्ञान भारत मोबाइल ऐप अथवा पोर्टल पर अपलोड करें ताकि उसका संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। केरल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने आज तिरुवनंतपुरम में शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व नेता प्रतिपक्ष और केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष रमेश चिन्नाथला, केपीसीसी के वर्तमान अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, केपीसीसी के पूर्व अध्यक्ष के मुरलीधरन और आईयूएमएल नेता पी के कुनहाली कुट्टे शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद और प्रदेश के राज्य मंत्री संजय गंगवार ने कल पीलीभीत में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किए। इस समारोह पर अपने संबोधन में श्री प्रसाद ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के कामों में हमेशा पारदर्शिता रही है और सरकार ने जो कहा उसे करके दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी में मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे या इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: सुनते रहिए कुछ नई कुछ पुरानी।
3: चलते रे इश्क में पड़ जाते।
4: हमारी और आपकी साझा कहानी,
5: आपके अपने रेनबो की जबानी।
3: आओ सुनाओ प्यार की एक कहानी।
6: जी हाँ, पुराना फ्लेवर विद नया कलेवर।
7: हुसन तेरा तौबा तौबा तौबा तौबा।
8: 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

12:06 का वक्त हो चला है दोस्तों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपंच, जिसमें आज हम करने वाले हैं हेल्थ की बात। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि आज है मंडे, तो मंडे को हम रखते हैं आपका खास ध्यान। लेकिन FM रेनबो आपका हर दिन कुछ ना कुछ खास ध्यान रखता ही, कहीं ना कहीं से हम प्रोग्राम में आपकी हेल्थ की बात करते ही करते। जैसे बीता हुआ दिन संडे, कल हेल्थ फिटनेस में हमने आपकी भी हेल्थ की बात की थी इसी समय, और आज बात खास बहुत होने वाली है प्यार की, एहसास की। ये प्यार और एहसास हेल्थ से कैसे जुड़ता है ये हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक जो बीत चुका है, हमने क्या सेलिब्रेट किया था? इंटरनेशनल कंगारू केयर अवेयरनेस डे, जी हाँ, जिसे हम शॉर्टकट में अगर कहें तो KMC, कंगारू मदर केयर कहते हैं। और इसकी क्यों जरूरत होती है, क्या खास होता है, किस लिए इसको हम इम्पोर्टेंस देते हैं, इसकी हम बात करेंगे। और हमारे साथ होंगे हमेशा की तरह एक्सपर्ट। जी हाँ, जब एक्सपर्ट कोई बात बताते हैं ना आपको, तो ज्यादा ध्यान आती है और आप ध्यान भी देते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो कौन होगा हमारे साथ, हम बताएंगे आपको इस गाने के बाद। तो रेडी हो जाइए ध्यान से सुनने के लिए, जुड़ना है आपको। वैसे तो 12 से 4 रहेगी शालिनी आपके साथ, लेकिन अगर इस प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो बहुत ढेर सारी जानकारी आपको मिलने वाली है।

0: 12:12 का वक्त, प्रोग्राम शत्रुपा में शालिनी है आपके साथ। आज लेकर बात कंगारू मदर केयर। जी हाँ, KMC पर आज हम बात करने वाले हैं और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, जो कि पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। तो सबसे पहले सर का करते हैं वेलकम अपने स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, मुझे FM रेनबो में आमंत्रित करने के लिए। मैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।
0: सर, सबसे पहले श्रोताओं को बताइए कि कंगारू मदर केयर यानी कि KMC क्या होता है। बहुत सारी जानकारी तो है हमारे श्रोताओं पर, लेकिन आपसे जो जानकारी मिलेगी वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी।
1: देखिए शालिनी जी, कंगारू मदर केयर नवजात शिशु की देखभाल की एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी विधि है, जिसमें बच्चे को माँ के सीने से स्किन टू स्किन कांटेक्ट में रखा जाता है। बच्चे को केवल डायपर, कैप एवं मोजे पहनाकर माँ के सीने पे सीधा रखा जाता है और ऊपर से कपड़े या कंबल से ढका जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को गर्माहट, सुरक्षा, प्यार और बेहतर पोषण मिलता है। KMC विशेष रूप से समय से पहले जन्मे बच्चे और जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत लाभकारी होता है।
0: अच्छा सर, इस जो केयर को कंगारू ही नाम क्यों दिया गया, इसका कॉन्सेप्ट क्या है?
1: देखिए शालिनी जी, कंगारू एक विशिष्ट प्रकार का स्तनधारी जीव है जो कि मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है
0: जी।
1: मादा कंगारू के पेट में एक थैली होती है जिसमें वो अपने छोटे बच्चे को पेट की थैली में रखकर सुरक्षित और गर्म रखती है। उसी तरह KMC में माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर गर्माहट और सुरक्षा देती है, इसलिए इसे कंगारू मदर केयर कहा गया है। इसका मुख्य कॉन्सेप्ट है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, इमोशनल बॉन्डिंग एंड वार्मथ एंड प्रोटेक्शन।
0: बहुत अच्छी बात। सर, जैसा कि आपने बताया कि जो प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, जन्म समय से पहले जन्मे बच्चे और जो वजन जिनका कम होता है उन्हें ये केयर दी जाती है, तो क्या ये नॉर्मल न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं उसके लिए भी ये KMC यानी कि कंगारू मदर केयर फायदेमंद होती है?
1: KMC सबसे अधिक प्रीमेच्योर और लो बर्थ वेट बेबी के लिए उपयोगी माना जाता है, लेकिन यह सामान्य न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी बहुत लाभकारी है। सामान्य बच्चों में भी इससे ब्रेस्ट फीडिंग बेहतर होती है, बच्चा शांत रहता है, माँ एवं बच्चों की बॉन्डिंग मजबूत होती है एंड बच्चे का बॉडी टेम्परेचर स्टेबल रहता है।
0: बहुत अच्छी बात। सर, ये कंगारू केयर से बच्चों को सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है?
1: KMC के कई महत्वपूर्ण फायदे हैं, जिससे बच्चे का तापमान नियत रहता है, संक्रमण खतरा कम होता है, बच्चे का वजन जल्दी बढ़ता है।

0: है, ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी होती है, बच्चा कम रोता है एंड नींद बेहतर होती है, एवं माँ एवं बच्चों का भावनात्मक संबंध मजबूत होता है, एवं इसके करने से बच्चे की अस्पताल में रहने की अवधि भी कम हो सकती है।
1: अच्छा, ये जो वजन जल्दी बढ़ता है इसके बारे में जरा बताएं, अभी आपने कहा ना।
0: हाँ, केएमसी से बच्चे की एनर्जी बचती है क्योंकि उसे शरीर गर्म करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही ब्रेस्ट फीडिंग बेहतर होने से बच्चे को पर्याप्त पोषण मिलता है, इससे वेट गेन तेज और बेहतर होता है।
1: बहुत अच्छी जानकारी। और सर, 12:16 और 12 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि एक प्यारा सा गाना सब तक पहुंचा दिया जाए, और उसके बाद अभी आपसे ढेर सारे सवालों का जवाब लेना है, जैसे कि बच्चों में ये केएमसी से इम्यूनिटी और इन्फेक्शन से कैसे बचाव में ये मदद मिलता है, क्या कंगारू केयर से ब्रेस्ट फीडिंग बेहतर होती है, या इमोशनल जो बाउंडिंग होती है इसका क्या असर पड़ता है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे श्रोताओं को जानना है। तो सर, प्यारा सा गाना सबके लिए।

0: हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ भाग्यश्री और आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो।
1: दोस्तों 12:24 और 4 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम शत्रुपा में। शालिनी है आपके साथ लेकर कंगारू मदर केयर के बारे में बात, और हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं किंग जॉर्ज के सा विश्वविद्यालय से। ढेर सारी बातें सर से जान चुके हैं लेकिन और भी बातें हैं जो हमें जाननी है। सर, क्या बच्चों की जो इम्यूनिटी है या इन्फेक्शन बच्चों में कुछ हो जाता है तो क्या उससे भी बचाव में मदद करता है ये KMC यानी कि कंगारू मदर के, और इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाता है इसके बारे में बताएं।
2: देखिए, इसे माँ के संपर्क में रहने से बच्चे को सुरक्षित वातावरण मिलता है, ब्रेस्ट फीडिंग अधिक होने से बच्चे को माँ का दूध मिलता है जिसमें एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी के फैक्टर्स होते हैं, स्किन से स्किन कॉन्टेक्ट करने से हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का खतरा भी काफी कम हो जाता है।
1: अच्छा सर, ये जो आपने बताया ना KMC से ब्रेस्ट फीडिंग में कैसे मदद मिलती है, कैसे बेहतर होता है ये?
2: हाँ शालिनी जी, KMC से ब्रेस्ट फीडिंग बहुत बेहतर होती है क्योंकि बच्चा माँ के करीब रहता है, बच्चे के जो फीडिंग क्यूज होते हैं जल्दी पहचान में आते हैं
1: जी।
2: इससे माँ में जो दूध बनने वाले हार्मोन्स होते हैं वो बढ़ते हैं जिससे बच्चा बार बार फीड कर पाता है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की संभावना बढ़ जाती है।
1: जैसा कि सर आपने बताया कि माँ और बच्चे का जो इमोशनल टच है, बाउंडिंग है, उस पर भी असर पड़ता है, तो क्या असर पड़ता है, कैसे?
2: हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इससे KMC कराने से माँ और बच्चे के बीच प्यार, विश्वास और जुड़ाव बढ़ता है, माँ को बच्चे के प्रति कॉन्फिडेंस आता है एंड पोस्टपार्टम स्ट्रेस भी कम हो सकता है। बच्चा भी माँ की आवाज, हार्ट बीट और टच से सुरक्षित महसूस करता है।
1: अच्छा, जब KMC केयर हम बच्चों को देते हैं वो माँ के पास होता है, उसका एहसास होता है, तो क्या इससे बच्चे की नींद और रोने में जो कमी होती है इसमें भी कुछ मदद मिलती है?
2: हाँ, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से बच्चा शांत और सुरक्षित महसूस करता है, इससे रोना कम होता है, नींद अच्छी आती है, स्ट्रेस कम होता है, हार्ट रेट और ब्रीदिंग भी स्टेबल रहती है।
1: सर, जैसे कि आपने बताया कि

0: कंगारू मदर केयर बहुत अच्छा होता है, इसका एहसास माँ के लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए अच्छा है, लेकिन कई महिलाओं को ऐसा लगता है कि न्यूबॉर्न बेबी को ज्यादा गोद में रखने से उसकी आदत खराब हो जाती है, तो ये जो मिथ है इसके बारे में भी बताएं।
1: हाँ, ये एक पूरी तरीके से मिथ है। नवजात बच्चे को प्यार, गर्माहट और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। केएमसी से बच्चे को इमोशनल और फिजिकल ग्रोथ अच्छी होती है, इससे बच्चे की आदत खराब नहीं होती है।
0: अच्छा, जो ये कंगारू केयर है ना, ये कब से शुरू करना चाहिए, इसका सही समय क्या होता है?
1: देखिए, यदि बच्चा स्टेबल है तो जन्म के तुरंत बाद इसको शुरू कर सकते हैं, लेकिन यदि प्री मेच्योर बेबी है या
0: जी
1: बच्चा वेंटिलेटर सपोर्ट पे है या ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, तो उस कंडीशन में हमें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसको शुरू किया जाना चाहिए एंड डॉक्टर की निगरानी में ही करा जाना चाहिए। अगर बच्चा स्टेबल है, खुद से सांस ले रहा है,
0: जी
1: तो हम उसको कभी भी जितनी जल्दी हो सके उसको शुरुआत में कर सकते हैं।
0: अच्छा, इसे कितनी देर तक करना चाहिए इसके बारे में भी बता दीजिए।
1: इसको जितनी देर किया जाए उतना ही अच्छा होता है। यूजली रिकमेंडेशन होता है कि 8 to 24 hours पर डे। स्टार्टिंग में हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, मिनिमम टारगेट हमारा 8 hours पर डे रहता है और इसको ग्रेजुअली 24 hours पर डे करना चाहिए। इसको केवल बच्चे के डायपर को चेंज करते समय हटाना चाहिए, अदरवाइज 24 hours तक कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 घंटे से कम के सेशन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बार बार हटाने से बच्चा डिस्टर्ब होता है।
0: बिल्कुल सही बात है, उसकी भी उसके भी आराम का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो केएमसी केयर की बात हम कर रहे हैं, कंगारू मदर केयर की, तो माँ के अलावा क्या दादा दादी पापा या जो भी उसके बड़े भाई बहन भी हैं अगर समझदार हैं, तो क्या वो भी ये केयर दे सकते हैं बच्चों को?
1: हाँ, यदि माँ उपलब्ध ना हो या फिर माँ किसी अन्य काम में बिजी है, तो उस कंडीशन में पति, दादी या अन्य कोई भी ट्रेन केयर गिवर इसके केयर दे सकते हैं। इससे कंगारू फैमिली केयर भी कहा जाता है।
0: क्या बात है, मतलब कंगारू मदर केयर और कंगारू फैमिली केयर, ये दो नाम भी हमारे दूसरा नाम भी हमारे सामने आया। दोस्तों, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा होगा, ढेर सारी जानकारी भी मिल रही होगी। अब केवल बच्चे को आपको दूर से नहीं खिलाना है, उसे अपना एहसास देना है, उसे कंगारू केयर भी देनी है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन जैसा जैसा डॉक्टर हिमांशु गुप्ता हमें बता रहे हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट यानी कि बाल रोग विभाग किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से, उसी तरह की चीजों को अपनाना है। और अब वक्त हो चला है प्यारे से ट्रैक का, सुनते हैं, इंजॉय करते हैं और उसके बाद वापस फिर से ढेर सारी जानकारी के साथ होंगे हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु गुप्ता।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पाँच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: और दोस्तों, FM रेनबो पर इस वक्त प्रोग्राम चल रहा है शत्रु पर, जिसमें आज हम करते हैं हेल्थ की बात। और हेल्थ की बात आज प्यार और एहसास से हो रही है, यानी कि कंगारू मदर केयर, जिसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बाल रोग विभाग किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से। बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दे चुके हैं हिमांशु सर। और सर, आप बताएं कि ग्रामीण क्षेत्रों में या जो छोटे घर में रहने वाली महिलाएं हैं, वो कैसे कंगारू मदर केयर आसानी से कर सकती हैं, अपना सकती हैं?
4: हाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, KMC के लिए किसी महंगे उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ साफ कपड़ा, आरामदायक बैठने की जगह, स्वच्छता, परिवार का सहयोग। इसमें बस आपको क्या करना है, आप अपने साफ सफाई का ध्यान रखें और कोई जो सामने से खुलने वाले जो गाउन होते हैं उनको आपको पहनना है, बच्चे को टोपी पहनाना है, मोजा पहनाना है, डायपर पहनाना है और सामने से खुले आधी बांह के आस्तीन वाले कपड़े पहनाकर बच्चे को अपने दोनों आस्तीनों के बीचों बीच में रखें और गर्दन सीधी रहे। बच्चे का सर एक तरफ हल्का सा मुड़ा होना चाहिए और गर्दन सीधी होनी चाहिए, जिससे बच्चा और माँ का आई टू आई कॉन्टेक्ट रहे, जिससे बॉन्डिंग बढ़ेगी और माँ को भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा। और उसके बाद ऊपर से एक कोई कंबल या कोई तौलिया से उसको आप अच्छे से कवर कर दें।
3: अच्छा सर, जो वर्किंग वुमेन है, जो काम करने के लिए बाहर जाती हैं ऑफिस में, घर पे ज्यादा काम टाइम नहीं दे पाती हैं, उनके लिए क्या सुझाव रहेगा KMC के से रिलेटेड?
4: देखिए, जो कामकाजी महिलाएं हैं वो घर आने पे KMC कर सकती हैं, रात में स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट कर सकती हैं, ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस कर सकती हैं और परिवार के सदस्यों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए।
3: सर जरा एक बार फिर से

0: कंगारू केयर का जो सही तरीका है वो, उसके बारे में जरा बताइए।
1: हाँ, ये बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें अपनी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, हाथ अच्छी तरीके से धोना चाहिए। बच्चे को केवल डायपर, कैप, मोजे और सामने से खुलने वाली बिना बांह वाली शर्ट पहनाना चाहिए। बच्चे को माँ के सीने पे सीधे रखें, बच्चे का सिर एक तरफ हल्का ऊपर रखें, बच्चे की पीठ को कपड़े या कोई शॉल से सब ढक दें और बच्चे की ब्रीदिंग पे ध्यान रखें।
0: सर, हमें ये लगता है कि कंगारू मदर केयर के लिए ये जो तरीका है, कंगारू केयर का सही तरीका, इसको सही से आना बहुत जरूरी है। तो बच्चे को पकड़ने का और बच्चे को कपड़े पहनाने का सही तरीका एक बार फिर से बता दीजिए।
1: ये आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। इसमें ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को पोजीशन क्या करें केम्प से देने के लिए। इसलिए आपको ध्यान देना है कि बच्चा माँ के दोनों स्तनों के बीच सीधी पोजीशन में रखना चाहिए एवं बच्चे का सर एक तरफ टर्न होना चाहिए एवं गर्दन सीधी रहनी चाहिए, जिससे बच्चे एवं माँ का आई टू आई कॉन्टेक्ट हो सके और बच्चे का जो कूल्हा है वो एक फ्रॉग लाइक पोजिशन में होना चाहिए। हाथ मुड़े होने चाहिए अंदर की ओर और बच्चे का पेट और माँ का पेट का ऊपरी हिस्सा एक लेवल पे होना चाहिए एंड बेबी का जो बॉटम है उसको एक स्लिंग से सपोर्ट करना चाहिए।
0: जी असर, इसके अलावा कंगारू मदर केयर करते समय किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए?
1: हाँ शालिनी जी, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा आराम से सांस ले रहा हो, बच्चे का चेहरा ढका ना हो, माँ बहुत थकी नहीं हो एंड बच्चा बहुत ठंडा या बहुत गर्म ना लगना चाहिए। स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें। इन सब छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए।
0: सर, क्या कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जब कंगारू मदर केयर नहीं करना चाहिए या डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए?
1: देखिए, डॉक्टर की सलाह जरूरी है यदि बच्चा बहुत गंभीर रूप से बीमार है या बच्चा कोई वेंटिलेटर सपोर्ट पे है या उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, उसको कोई सीवर इन्फेक्शन हो, उसको सीजर्स आ रहे हो या माँ खुद गंभीर रूप से बीमार हो। ऐसी कंडीशन में केएमसी नहीं करना चाहिए या ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की सलाह बहुत जरूरी होती है।
0: सर, जैसा कि आपने बताया कि NICU में है बच्चा, तो क्या तब हम कंगारू केयर कैसे हेल्प करते हैं बच्चे की?
1: हाँ देखिए, NICU में अगर कोई माँ अपने बच्चे की KMC करती है तो इससे बच्चे की रिकवरी में बहुत फायदा करती है। इससे क्या होता है कि इन्फेक्शन का खतरा, मृत्यु दर में बहुत कमी आती है, बच्चे की ऑक्सीजन स्टेबिलिटी बेहतर होती है, स्ट्रेस कम होता है, बच्चे का शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है, बच्चे का वजन तेजी से बढ़ता है और साथ साथ इसके क्या होता है कि बच्चे की जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो भी इम्प्रूव होती है और KMC करने से पेरेंट्स की बॉन्डिंग मजबूत होती है।
0: तो दोस्तों, सुना ना कितनी इम्पोर्टेंट है ये कंगारू मदर केयर। जैसे कि कंगारू अपने बच्चे को अपने पॉकेट में रखता है ना, देखा होगा आगे से थैली होती है। इसके अलावा और किसी एनिमल में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट कंगारू मदर केयर लिया गया है। लेकिन कंगारू फैमिली केयर भी किया जा सकता है। मदर अगर अवेलेबल नहीं है तो पिता, दादी, दादा, नाना, नानी जो भी है उसको केयर दे सकते हैं। लेकिन हाँ, केयर कैसे देनी है, कैसे पोजिशन में रखना है, कैसे ध्यान रखना है बच्चे का, इन सारी बातों का खास ध्यान रखना होगा आपको। और अब आ रही है एक प्यारे से ट्रैक की और उसके बाद अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम दोबारा भी पूछ सकते हैं सर से, ताकि आपके कहते ना कि ये बात दिमाग में आ जाए, गांठ बांध लें इस बात को। ठीक है, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक।

0: जब हिमालय पुकारता है तो सिर्फ कदम नहीं बढ़ते, जुड़ता है मन आस्था से, संस्कारों से, देवभूमि उत्तराखंड से। केदारनाथ की दिव्यता, बद्रीनाथ का आशीर्वाद, गंगोत्री यमुनोत्री की पावन धारा, चार धाम यात्रा बन जाती है जीवन का अलौकिक अनुभव।
1: इस पावन यात्रा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का श्रद्धालुओं से आग्रह है, आइए पांच यात्रा संकल्प अपनाएं, स्वच्छता को अपनी जिम्मेदारी बनाएं, प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें, सेवा, सहयोग और एकता का भाव रखें, वोकल फॉर लोकल बनकर उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और उत्पादों को अपनाएं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें और देव धामों की पवित्रता एवं मर्यादा का सम्मान करें।
0: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाया गया है। यात्रा से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। विजिट करें registrationandtouristcare.uk.gov.in।
1: चार धाम यात्रा सिर्फ आस्था नहीं, संस्कार और संकल्प की पहचान। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: दोस्तों 12:45 और 55 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम शत्रुपा में हेल्थ की बात डॉक्टर हिमांशु गुप्ता के साथ, और शालिनी है कंगारू मदर केयर लेकर, यानी कि कंगारू केयर केवल मदर ही नहीं कोई भी कर सकता है। तो एक फिर से सवाल को रिपीट करते हैं और सर से जानते हैं, क्या सिर्फ माँ ही कंगारू केयर कर सकती है या और भी कोई?
4: नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है।

0: पति और परिवार के अन्य सदस्य भी ट्रेन गाइडेंस में केएमसी दे सकते हैं।
1: सर, क्या सर्दियों में कंगारू केयर सुरक्षित है?
0: हाँ, ये बिल्कुल सुरक्षित है। असल में केएमसी बच्चे को प्राकृतिक गर्माहट देता है एंड हाइपोथर्मिया से बचाता है।
1: सर, अच्छा, जो कमजोर बच्चे होते हैं, कम वजन वाले बच्चे होते हैं, उसमें ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है?
0: हाँ, ऐसे बच्चों में सही पोजिशनिंग, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, फीडिंग ऑब्जर्वेशन एंड रेगुलर फॉलोअप बहुत जरूरी होता है।
1: अब माताओं के लिए, नई माताओं में कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं नई माताओं को संदेश देना चाहूंगा कि हर माँ अपने बच्चे की सबसे अच्छी देखभाल कर सकती है, कि हमसे कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। आपका प्यार, स्पर्श और समय ही बच्चे की सबसे बड़ी दवा है, इसलिए सभी नई माताएं अपने बच्चे में केएमसी जरूर से जरूर करें।
1: सर, कुछ ऐसी महिलाएं भी होती हैं जो पहली बार माँ बनती हैं, यानी कि उनका पहला जब बेबी होता है तो उन्हें अपने बेबी के केयर करने में भी डर लगता है और ब्रेस्ट फीडिंग में भी उनको डर लगता है। तमाम सारे सवाल उनके आते हैं कि बॉडी का, हमारा जो हमारी बॉडी है वो ना अच्छी रह जाए, या और भी सारी चीज़ें, दिक्कतें होंगी, क्या करें उनके डर के लिए? उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, उनके बारे में भी ज़रा बताएं।
0: देखिए शालिनी जी, डरना स्वाभाविक है। जो नई माँ है वो बच्चे के प्रति काफी संवेदनशील होती हैं, उनको छोटी छोटी बातों से डर लगता है, बट इसके लिए आपको डरना नहीं है। धीरे धीरे सीखें, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ से मदद लें, परिवार का सहयोग लें, हर दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बच्चा भी स्वस्थ रहेगा।
1: और अब सर, एक लाइन में श्रोताओं को हमारे कंगारू केयर का सबसे बड़ा संदेश क्या देना चाहेंगे?
0: मैं यही कहना चाहूंगा कि माँ का स्पर्श ही नवजात के लिए सबसे सुरक्षित, सस्ती एवं असरदार दवा है। माँ का स्पर्श जीवन का आधार है। कंगारू केयर से नवजात का उज्जवल संसार है। धन्यवाद।
1: क्या बात है, स्पर्श की बात की गई है, प्यार की बात की गई है, एहसास की बात की गई है, और ये हर रिश्ते में इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम नवजात शिशु की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत से ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक और उसके बाद करते हैं बात, और साथ ही साथ हम विदा लेंगे कौन, अपने एक्सपर्ट से, जो कि डॉक्टर हिमांशु गुप्ता सर थे हमारे साथ अभी, असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के GMU से।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: सात रंग का इंद्रधनुष है,
2: सात सुरों की सरगम है,
3: सात जन्म है सात समंदर,
1: साथ हमारा हरदम है,
3: जिंदगी के सतरंगी रंग
2: FM रेनबो के संग।

12:55 और 55 सेकेंड होने को है। और दोस्तों, आप सभी लोग सुन रहे थे प्रोग्राम शत्रुपा, क्योंकि थे इसलिए आया है। अब वक्त चला है इसे वाइंड अप करने का। और जो कंगारू मदर केयर के बारे में हमने बताया है, वो फैमिली केयर भी बन सकता है। बस देने का सही तरीका, सही समय, कब देना है, कैसे देना, हर कोई दे सकता है। बच्चे के साथ बाउंडिंग अच्छी होगी, उसे एहसास अच्छा लगेगा। बच्चे की कई सारी चीजें, जैसे कि कम नींद आना, उसे उसके रोना, ये सारी चीजें कम होंगी।

बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये दिया जा सकता है। और मजे की बात क्या है, इसमें कोई पैसा भी नहीं लगता है ना, और तो और जो देता है ना उसे भी अच्छा एहसास होता है। तो डॉक्टर हिमांशु सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, उसे फॉलो करना है और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहना है, यानी कि FM रेनबो के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम ओटू पे तेरी बात में शालिनी होगी फिर से आपके साथ, अभी भी है, कहीं नहीं जा रही है। और आज हम लेकर आते हैं और लोगों की बातचीत, तो बातचीत में आज हम लेके आए कि आपको अकेले घूमना पसंद है या अपनी फैमिली के साथ घूमना पसंद है या कोई खास दोस्त है आपका, आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, 1 बजा है और अब हम लेकर आए हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति फिल्म है जनता हवलदार। अनवर और साथियों की आवाजें हैं। सुनना चाहे गंज डोंडवारा से मुनव्वर लल्ला, मिर्जा नसरीन बेगम, अरबाज खान शहबाज, सूफिया पप्पू, अफसाना महजबी और उनके सभी परिवार के लोग, लपरी ग्राम मुंडेला जौनपुर, यहां से हैं कुमारी चंदा, चांदनी, आकाश कुमार, कन्हैया और रीता देवी, अस्तुपुरा जिला मऊ उत्तर प्रदेश के मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद, ककराला बदाई से मसरूर खान, सरफराज, विकास कर्मवीर, प्रवीण, अनिल, सागर, भरत, अमजद और दीपक, प्रमिलागंज आलोट रतलाम मध्य प्रदेश के बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई माया, शोभा राहुल, ज्योति अतुल पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा।

कार्यक्रम का अगला गीत हमराज फिल्म से महेंद्र कपूर साथियों की आवाजें हैं। सुनने का अनुरोध है बरेली जंक्शन से गरीब भाई बिक्की भारद्वाज, कनेरा मोहल्ला पटियाला बत्ता परिवार से मुकेश नीलम, नितिन पलक, करण गीतू निहारका और वंश, गड़ैया बरेली से कैसर शमसी अजीम सलीम नवीद रजिया और उनके बहुत सारे दोस्त, मलोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी सीमा अनमोल धर्मपाल वीर सिंह लाठी लखविंदर संधू महावीर गुरुचरण और रमेश मिगलानी, कोटबा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश रॉय उषा और मित कुमार राय, साथ में है हैप्पी रॉय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक रोशनी और प्रांजल, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश प्रीति और नवनीत।

अगला गीत पत्थर के सनम फिल्म से मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से सुनना चाहे राष्ट्रपाल गजबिये राधिका अनिष्का तन्मय। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन कौशल्या हेमलता और डिम्पल। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला डब्लूउल्ला परवीन आसमा। बुलंदशहर से बद्रुबली अंसारी फर्जुबली और अंसारी परिवार के सभी लोग। लुधियाना पंजाब से अमरजीत सोनम कौर परमजीत आधिवा कौर। अनोखे लाल मौर्य सुंदर देवी प्रकाश रेंकी कपिल वेदराम कैलाश सुनील खुशबू एरोही और स्वाति। ये हमारे श्रोता पुराना शहर बरेली से। भाटापारा दत्रेगी छत्तीसगढ़ से द्वारका प्रसाद वर्मा किशोर दीपक और झावेन्द्र। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा सोमनाथ कालिया। साथ ही सुनना चाहे निकट गायत्री मंदिर मीरगंज से कल्लूभाई मिस्त्री।

साथियों, हम आपको सुनवा रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी पर रे से प्रोग्राम अनुरोध गीत। अब अगला गीत है शक्ति फिल्म से, महेंद्र कपूर साथियों की आवाजें हैं। सुनना चाहे रामपुर लिसनर क्लब नाला पार बाग छोटे साहब रामपुर से नवाबुद्दीन निजामुद्दीन, मोहम्मद जमालुद्दीन, सादिया अक्सा और हम्माद, इसी गाने को सुनने का अनुरोध है। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, और गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जयतेक बिरक और मीका बिरक, वारसी क्लब सिनोली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, दिल्ली मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा, आकाश कुमार, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम, रुखसार और मम्मा आसिफ। साथ ही सुनना चाहे है जेल लोट रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम आदिवा, इंदिरा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम, नूर जहां, डब्लू अकरम, वली अकरम, उल्लाह अकरम, राजनाथ गांव से याकूब, आसमा, यूसुफ, इमरान और इरफान। तो साथियों, सुनवा रहे हैं आपको आपके अनुरोध पर फिल्म शक्ति का ये गीत।

अगला गीत प्रोग्राम का रूप तेरा मस्ताना। इस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज सुना चाहे ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन, आशिक हुसैन अंसारी और अल्ताफ हुसैन अंसारी। सुना चाहे नई मस्जिद करेली से इंतजार भाई अंसारी, हिफ्जा नूरी, नथु मिस्त्री, असीर अंसारी, अख्तर नन्ने और उनके बहुत सारे साथी। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल। देवी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय दर्द, समस्त मालवीय परिवार। हलवैयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू साजदा और हिना खौसर। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर पीलीभीत से बिमल वर्मा और उनके सभी पर

रीजन। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनेटी बरेली से विनेश कुमार रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान, सनावत मध्य प्रदेश के दिलीप मालाकार योगेश सुनीता और मुस्कान, खुर्जा उत्तर प्रदेश के तिलक राज अरोड़ा।

अगला गीत आप सबके अनुरोध पर ही रोदाली फिल्म का गीत है, लता मंगेशकर की आवाज है, सुना चाहे बराड़ा अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरु शब्द सिंह राहुल, जलालाबाद बेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल दिशानी और निमित आहूजा। साथ ही सुनना चाहा है हमारे और भी श्रोताओं ने, वो हैं जमशेदपुर से चिन्मय महतो, रेखा, शिवांश और उनके सभी परिवारीजन, और सुनना उन्होंने भी चाहा है जिनका अब आपको नाम बताएंगे, रायपुर से नीलू मेघ, डॉक्टर वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और उनके सभी मित्रगण, सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौड़, सुयेश, आशीष, तन्मय और उनके बहुत सारे साथी।

100.4 FM आकाशवाणी बरेली से हम आपको सुनवा रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। प्रोग्राम का अगला गीत सावरिया फिल्म से शान और साथियों की आवाजें हैं। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से सुनना चाहे मोहम्मद सादिक मुस्ताक, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। महाराष्ट्र हिंगोली से शाहजी बोट के नंदा हनुमान और उनके साथी सुनना चाहे हमारे उन साथियों ने भी, और वो हैं आंवला गंज बरेली से मेहताब हुसैन खान, गजाला खान और आरिफ हुसैन। शंकरपुर उसाबा दातागंज बदायूं से सोमेंद्र, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरत श्री यादव।

अगला गीत ले लेते हैं, क्योंकि ये छोटा ड्यूरेशन का गाना था, फिर भी बढ़ते हैं आगे, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और वो गीत है उस फिल्म का जिसका अब हम आपको नाम बता रहे हैं, डुप्लीकेट फिल्म का गीत, उदित नारायण अगला याग्निक की आवाज़ है। सुना जाए पीर बहोड़ा बरेली से आज़ाद कहाँ दिशाद मुस्तकीम तवस्सुम और मेहरुन्निशा, रेंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा, मोती मस्जिद नवाबगंज बरेली से नसीम अहमद अंसारी मेरा जहां मुस्कान भी रेहान अलशिफा मन्नत और उनके परिवार के सभी लोग, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, बरेली अशरफ खां होली चौक मंदिर के पास से राम प्रसाद शर्मा फजुद्दीन वंदना मनोरमा अजय रीता विनोद और उनके परिवार के सभी लोग। वो आइए सुन लेते हैं वो गीत जिसे लिया है डुप्लीकेट फिल्म से।

एक गाना और भेज देते हैं आपके पास, क्योंकि अभी समय है, उसके बाद एक गाना और चला जाएगा, और वो गाना है तेरी कसम फिल्म का, लता मंगेशकर अमित कुमार की आवाज़ में। सुनने का अनुरोध है पीपर पारा पालचुबा मुंगेली छत्तीसगढ़ से उत्तरा दिवाकर परमेश्वरी भानुप्रिया योगिता नितिन और वंशिका, बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद्र माखीजा श्रीमती सविता माखीजा स्वाति महेश कुकरेजा संध्या माही छुटकी शरद और माखीजा कुटुंब के बहुत सारे लोग, नारायण लाल साहू कुलबंतीन देवी साहू दिवेंद्र प्रताप साहू नेहा देवी मिलिंद कुमार साहू प्रणय कुमार रुद्रांश प्रताप और उनके बहुत सारे साथी।

जुनवानी स्मृति नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से सुरीत, रमेश, तारा, विद्या, जितेंद्र, ऋषिवन, किशनलाल, सुनीता देवी, त्रिलोक कुमार, मास्टर रंजीत सिंह साहू।

अंतिम गीत प्रोग्राम का हादसा फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं। सुनना चाहे रेलवे जंक्शन बरेली से नासिर भाई, अंबुज, पंकज और उनके सभी परिवारीजनों ने, और साथियों इसी गीत को सुनना चाहे बासमंडी बरेली से सुनील कुमार, सुभाष कुमार और उनके परिवार के सभी सदस्यों ने। सुना जाए राजेंद्र नगर बरेली से दीपू और उनके बहुत सारे दोस्तों ने। आइए सुनते हैं।

0: अपनी मोहब्बत की खुशबू हवाओं में है।
1: मैं खुश हूँ कि तुम आज मेरी बाहों में हो।
0: मिलन की घड़ियाँ कितनी हसीन होती हैं, है ना?
1: हाँ, मगर कितनी कम।

0: डूबता सूरज भी कितना खूबसूरत लगता है।
1: हाँ, मगर इसके बाद अंधेरा छा जाएगा।
0: मैं वक्त के कदमों को रोक लूंगा।
1: वक्त वो तो हमें बहुत पीछे छोड़ गया।

समय मिलाइए, दिन के 2 बजे हैं और अब समय हो गया है गज़ल कव्वाली और लोकगीतों के सफ़र का, यानी कि रस रंग का। तो लीजिए पहली प्रस्तुति चंदन दास की आवाज़ में इस गज़ल के रूप में आप तक।

चंदन दास की आवाज में इस गजल के बाद अब आप तक भेज रहे हैं बीना की आवाज में ये लोकगीत।

0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें

परी हो आसमानी तुम, मगर तुमको तो पाना है। ये गजल आप सुन रहे थे 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से, क्योंकि कार्यक्रम है रस रंग। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत अब ये लोकगीत कविता सक्सेना की आवाज में आप तक आ रहा है। हमने सुनी एक नई बात, तो जानते हैं इनसे क्या नई बात सुनी है इन्होंने।

0: सनम अब दिल में भी तू है। ये गजल आप सुन रहे थे कविता सेठ की आवाज में कार्यक्रम रसरंग के अंतर्गत। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। समय मिलाइए दिन के 2:05 हुए हैं। अब आपको ले चलते हैं विविध भारतीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के मुंबई केंद्र।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति ये मीठा सा गीत हलाकू फिल्म से लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। शैलेंद्र के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

नजरों का दामन बिछाती ये प्यार की पुकार भला कौन अनसुना करेगा। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। तो आइए अब सुनते हैं मन की दहलीज से गुजरकर दिल के आंगन तक पहुंचता ये गीत क्या कह रहा है। तीन बहुरानिया फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: जैसा कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब जो गाना सुनवाने जा रहे हैं वो वचन फिल्म से है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने गाया है, प्रेम धवन ने लिखा है और रविशंकर ने इसे संगीत से सजाया है। तो चलिए हाथों में हाथ लेकर और दिल को साथ लेकर सुनते हैं ये मीठा सा नगमा।

मोहब्बत की ये खूबसूरत सी इल्तिजा उड़न खटोला फिल्म से आपने सुनी लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था शकील बदायूनी ने और धुन बनाई थी नौशाद ने। और अब सुनवा रहे हैं तुमसा नहीं देखा फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। ओपी नैयर का संगीत है, मजरूह सुल्तानपुरी का गीत है।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे हाथ मलोगे रूठ

0: दिल लेकर मीठा से गम का ये तोहफा देने वाला गीत आपने सुना फागुन फिल्म से। आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में कमर जलाल आबादी के बोल थे और ओपी नैयर का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं नई दिल्ली फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज है, शैलेंद्र के बोल, शंकर जय किशन का संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही नजर।

आइए सदाबहार नगमे का अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में। भरत व्यास के बोल हैं, एस एन त्रिपाठी की धुन। फिल्म का नाम है रानी रूपमती।

जीवन की वीणा पर बसता रहे यूं ही मीठा मीठा प्राणों का राग और जीवन में छाई रहे बहार। इसी संदेश के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करते हैं।

0: सखी सहेली सखी सहेली में सभी सुनने वालों को राजुल का प्यार भरा नमस्कार। और हमारे साथ हैं
1: मंजरी वर्मा। पर आपकी इस स्टाइल ने मुझे एकदम चौंका दिया कि अब क्या बोलने वाली है।
0: यही तो, इसीलिए तुम देख रहे थे ना मंजरी, लेकिन बिल्कुल सजग सतर्क बैठी थी।
1: बिल्कुल।
0: नमस्कार मंजरी का भी।
1: हाँ, आपको भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और साथ में हमारी जो सखिया हमें सखा भाई सुन रहे हैं, उन सभी को भी मेरा प्यार भरा, हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार कह देते हैं। और आज आपके साथ काफी अरसा हो गया, जिसे कहते हैं सखी सहेली में हम लोग,
0: मुद्दत हो गई
1: जमाने आपसे मिलना हो ही नहीं पा रहा था। और मुझे याद ही नहीं आ पा रहा था कि कब मैंने आपके साथ ड्यूटी करी थी। तो आज आपको देखकर इस मंच पर बड़ा अच्छा लगा कि फिर से हमारा आपका साथ होगा और फिर से बहुत सारी बातें होंगी।
0: तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है
1: जी।
0: तो ये तो बताओ ना कि ये जो मुलाकात है ये खास बनने वाली है, तो इस खास बात में क्या क्या खास बातें हैं?
1: भाई खास बात है कि उत्तर प्रदेश के व्यंजन हम लेकर के आए हैं।
0: क्या बात है?
1: जिसमें बनारस की टमाटरी चाट और छेना दही बड़ा।
0: बस बस बस, मतलब मुंह में पानी भरने का इंतजाम तुमने पहले ही कर दिया।
1: पहले ही कर दिया। और मुझे याद है कि एक मेरी चीज पेंडिंग हो गई, आपको पिलानी थी लस्सी आपने बोला था। मुझे याद है, तो मैं वही सोच रही थी जब व्यंजन लेके आ रही थी, मैं सोच रही थी कि आज फिर राजू जी कोई चीज मुझे एक दे देंगे तो मेरे पास दो चीजें पेंडिंग हो जाएगी, पिलाने खिलाने की। तो चलिए, ये तो हो गई बातें हमारी व्यंजन की। इसके बाद एक विषय हमने लिया है, मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव। तो ये बड़ा अच्छा सा विषय, प्यारा सा विषय है।
0: ये तो बहुत ज्वलंत समस्या है, क्योंकि ये तनाव तो घर घर गूंजने लगा है। कई बार सुनते हैं कि भाई हाँ, मोबाइल में ही सब लगे हुए हैं। हाँ
1: जी।
0: और तो, आज एक खास दिन भी है
1: जी।
0: खास एक क्यों, दो खास
1: दो
0: दिन,
1: खास
0: है।
1: दिन है।
0: हाँ, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस है और
1: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और कथा सुधा लेकर हम आए हैं, तो कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो, इसका भाग दो, यानी अंतिम भाग हम आज सुनेंगे।
0: बड़ी मजेदार कहानी है।
1: पिछली बार भी हमने सुनी थी और आज भी हम सुनेंगे।
0: हाँ।
1: तो बड़ा अच्छा लगेगा सुनकर के। लेकिन उससे पहले राजुल जी, क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
0: हाँ बिल्कुल, सुनने सुनाने की इतनी बातें हो रही तो बिल्कुल गाना तो बनता है।

0: तो मंजरी, कितना प्यारा सा नीरज का लिखा हुआ ये गीत सुना
1: जी
0: हमने, सचिन देव बर्मन का संगीत, तेरे मेरे सपने फिल्म का, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें। और
1: बहुत ही
0: भाई सुनने, शुरुआत में ही आपने कसम ले ली और कसम दे दी।
1: लेकिन वो किस चीज की थी?
0: साथ रहने की,
1: साथ
0: जुदा ना
1: रहने की,
0: होने की,
1: बिल्कुल
0: और कथा सुधा में भी बराबर अपनी भागीदारी जताने की।
1: बिल्कुल। तो कथा सुधा जो हम आज सुनाएंगे, तो उसके लिए एक संदेश आया है। ये लिखते हैं कि कोई दुख ना हो तो बकरी पाल लो। प्रेमचंद ने इस कहानी में मध्यम वर्गीय व्यक्ति की विवशता, उसकी कुंठा और पारिवारिक कलह को हास्य के माध्यम से बहुत खूबसूरती से प्रस्तुत किया है। नौकर और बीबी के सामने मालिक की बेबसी पाठकों को गुदगुदाती भी है और सोचने पर भी मजबूर करती है। तो भाई, इतनी अच्छी सी कहानी के लिए इन्होंने लिखा है, तो क्यों ना हम लोग कथा सुधा पहले सुना देते हैं।
0: चलो सुनते हैं पहले। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी, कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो। पिछले भाग में आपने सुना,
2: उन दिनों दूध की तकलीफ थी। आखिर एक दिन एक दोस्त से मैंने कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी दूध आने लगा, रोज रोज के झंझट से मुक्ति मिली। तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, गाय आधे दामों बेच दी गई। आखिर ये सलाह हुई कि एक बकरी रख ली जाए, लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा,
3: देहात की बकरी है, यहां बंधे बंधे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दिया कीजिए।
2: लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहां, इसलिए ये तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। झटपट मकान बदला, एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ

उलझा डाला है कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वो एक कदम भी चल सकती। लाहौल विला कुवत, जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूं, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल ना माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेंच दर पेंच ऐठन उसे छुड़ाया। एक घंटा लग गया, मारे सर्दी के हाथ ठिठुरे जाते थे और जी जल रहा था, वो अलग। ये तरकीब और भी तकलीफ दे साबित हुई। अब क्या करूं, अकल काम ना करती थी। दूध का ख्याल ना होता तो किसी को मुफ्त में दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज भी कितनी कर्कश और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा भी है, जितनी दूर उसकी आवाज जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियां जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदि है, उसकी कर्कश आवाज से नफरत करे तो क्या ताज्जुब। मुझ पर उसकी कर्ण कटु पुकारों का ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन एक मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिड़चिड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य ना हो वो इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं, 8 बजे पहुंचोगे तो क्या वो गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा। सहसा एक नीची शाखों वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है, यहां तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गूलर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा, वो आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत नहीं हारी और पत्तियां तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। यहां अकेले में कौन मुझे देखता कि मैं पत्तियां तोड़ रहा हूं। अभी अंधेरा हुआ जाता है, पत्तियों का एक गट्ठा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुंचूंगा। मगर इतने पर भी बकरी ने कुछ ची चपड़ की तो उसकी तो शामत ही आ जाएगी। अभी मैं ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा था मगर कौन सुनता, चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा, देख लिया जाऊंगा तो गालियां पड़ेगी। झल्लाकर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियां गायब होती जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा, यकायक पांव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ गिरा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखों तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि और ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। बारे में मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्ठा बनाया और मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रख कर शर्म की तरह छिपाए घर चला। रास्ते में कोई दुर्घटना नहीं हुई। जब मकान कोई 4 फल्लांग रह गया और मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख ना ले, तो वो काछी सामने से आता दिखाई दिया। कुछ ना पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची मेड़े थी जिनके ऊपर नागफनी निकलेगा और भगवान जाने क्या सितम ढाए।
कहीं

उड़ने का रास्ता नहीं, सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले थी, ऊपर की ऊपर, जैसे वो काछी कोई खूंखार शेर हो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है, इस मरदूत की जबान बंद कर दे।

0: कौन है? कौन है रे? रे कहां से बत्तियां तोड़े लाता है? कौन है?
1: मुझे मालूम हुआ नीचे से जमीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुंचा हूं। रोए बरछियां बने हुए थे, दिमाग में उबाल सा आ रहा था, शरीर को लकवा सा मार गया, जवाब देने का होश ना रहा। तेजी से दो तीन कदम आगे बढ़ गया, मगर वो ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्ठे पर पड़ा और गट्ठा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं क्या हुआ, मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, जैसे गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूं। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वो घृणित आवाज, वो कर्कश आवाज, वो हिम्मत तोड़ने वाली आवाज, वो दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलसा, वो दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा,
2: आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग भी ना ले गए? जीना मुहाल किए देती है ये, घर से निकलकर कहीं चली जाऊं ऐसा लगता है।
1: मैंने इत्मीनान दिलाया, भगवान आज चिल्ला लेने दो, कल सबसे पहला काम ये करूंगा कि इसे घर से निकाल कर बाहर करूंगा, चाहे कसाई को क्यों ना देना पड़े। अरे और लोग ना जाने कैसे बकरियां पालते हैं।
2: बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए।
1: सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से क्यों कर मुक्ति मिले कि सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चराते हुए आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी चराने की बात कही। गडरिया राजी हो गया, यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे?
3: हुजूर 8 आने बकरी मिलते हैं।
1: मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने ना आवे। गडरिया हैरत में पड़ गया।
3: मरकही है क्या बाबूजी?
1: अरे नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी, लेकिन मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता।
3: अभी तो दूध देती है।
1: हाँ, शेर सवा शेर दूध देती है।
3: दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा बाबूजी।
1: तुम्हारी मेहरबानी।
3: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
1: जिस वक्त बकरी घर से निकली, मुझे ऐसा मालूम हुआ मेरे घर का पाप निकला जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी है। गडरिये ने उसी वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली ही बार मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी, यहां तक कि 1 महीना खत्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई है। मैंने जरा भी ऐतराज ना किया, काछी के पास गाय थी, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दुहलाता था। कई महीने गुजर गए। गडरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे फिर बकरी का जिक्र ना किया। उसके ख्याल से ही मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वो बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ निकला। मैं उसका रुपया लेने अंदर गया कि क्या देखता हूं कि मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वो पहले सीधी उसी जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उसने दौड़कर 1 बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चोकर निकाल लाई और ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछुड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वो पुरानी कटुता थी, न वो मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती, कभी बकरी को सहलाती थी और बकरी डाक गाड़ी की रफ्तार से चोकर उड़ा रही थी।

0: तब मुझसे बोली,
1: अरे वाह, अरे कितने खूबसूरत बच्चे हैं।
0: हाँ, बहुत खूबसूरत।
1: जी चाहता है इनमें से एक ले लूं, पाल लूं।
0: तबीयत नहीं भरी अभी तक।
1: तुम तो बड़े निर्मोही हो।
0: चोकर खत्म हो गया। बकरी इत्मीनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे पीछे फुदकते चले गए। देवी जी आंख में आंसू भरे ये तमाशा देखती रही। गडरिया ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला,
2: कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा बाबूजी।
0: देवी जी ने कहा,
1: और दोनों बच्चे क्या पियेंगे?
0: और मुझे रात को वो मर्मांतक घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या न लाओ तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर ना लाना। उस दिन से न वो गडरिया नजर आया, न वो बकरी, और न मैंने पता लगाने की कोशिश की। लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रोती है।
3: अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद लो का दूसरा और अंतिम भाग। पात्र परिचय इस प्रकार है, सूत्रधार जी श्याम, बीवी ममता सिंह, पंडित जी दीपक केसावलेकर, काछी जयंत पात्रिकर, काछी की बीवी चंचल वर्मा, नौकर दीपक केसावलेकर, गड़रिया राजेश झा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।
4: मंजरी, देखिए एक हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि बरसों पहले हमारे पास एक बकरी थी जिसे चरवाहे के घर तक छोड़ने के लिए मैं और मेरा कजन जाते थे, लेकिन आज इस बात को 50 साल बीत गया है, ना वतन में रहते हैं ना जगह है। सूरत शहर में तो फ्लैट की 9वीं मंजिल है। अब कोई दुख तो नहीं, केवल ये दुख है कि वो बचपन समय और दादाजी पिताजी काकाजी सब चले गए। कजन के साथ ही पुरानी यादें बांटूंगा।
5: क्या बात है, और वाकई में बहुत अच्छा लगा इनका किस्सा सुनकर के। और इसी के साथ समय हो चला है अंतराल का, तो लेते हैं अंतराल।

0: तो राजुल जी, अंतराल के बाद सभी का एक बार स्वागत करते हुए
1: फिर
0: हम
1: से स्वागत है।
0: जी और हम बात करने वाले हैं विश्व एड्स वैक्सीन दिवस, जो हर वर्ष 18 मई को मनाया जाता है, और इसका उद्देश्य एचआईवी एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है और ऐसी प्रभावी वैक्सीन के विकास के लिए वैज्ञानिकों, डॉक्टर और संस्थाओं के प्रयास को सम्मान देना है।
1: और इसकी रोकथाम के लिए, जो एड्स है, इसकी रोकथाम के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका खोजने की दिशा में चल रहे वैज्ञानिक अनुसंधानों को भी बढ़ावा मिले, ये भी इस दिन का उद्देश्य है।
0: जी, और ये दिवस पहली बार वर्ष 1998 में मनाया गया था। इसकी प्रेरणा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक भाषण से मिली थी, जिसमें उन्होंने एड्स वैक्सीन विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया था।
1: दरअसल ये एक वायरस है, एचआईवी,
0: जी
1: जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है, और यदि समय पर इसका इलाज ना हो तो ये एड्स का रूप ले सकता है। लोगों में एड्स के बारे में जानकारी बढ़े, सुरक्षित जीवन शैली के बारे में वो जाने, उसे अपनाएं, और वैक्सीन अनुसंधान हो ज्यादा
0: जी
1: से ज्यादा, संक्रमित लोगों के प्रति भेदभाव ना बरता जाए, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: कई बार एड्स से पीड़ित लोगों को घर में बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। और जो इसके बचाव के लिए है कि आप संक्रमित सुई या ब्लेड का उपयोग ना करना है, और समय समय पर एचआईवी की जांच कराना है, अपने रिश्तों को भी अच्छे से बना के चलना है, जागरूकता और सही जानकारी इसके बारे में फैलाना जरूरी है।

0: और संदेश ये देता है कि जागरूकता, शोध और सहयोग ही HIV एड्स मुक्त भविष्य की कुंजी है।
1: और विश्व एड्स टीकाकरण दिवस 2026 का जो टॉपिक है, विषय है, वो है पुनर्विचार करें, पुनर्निर्माण करें, आगे बढ़ें। ये विषय HIV वैक्सीन अनुसंधान की दिशा में जो सारे विश्व में प्रयास चल रहे हैं उनको मजबूत करता है, जन जागरूकता को बढ़ाता है, रोकथाम रणनीतियों में जो नई नई बातें आती हैं उनको भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले इस बात की कोशिश करता है, और स्वास्थ्य सेवा को फिर से बहाल करके HIV के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का पर भी बल देता है।
0: जी, और इसी के साथ हम लोग गीत सुन लें।
1: हाँ, वो तो बहुत जरूरी है।

0: नया दौर फिल्म का ये मस्ती भरा गाना हमने सुना, और अब अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करें।
1: बिल्कुल, मानव सभ्यता का इतिहास, संस्कृति, कला और परंपराएं किसी राष्ट्र की अमूल्य धरोहर होती हैं, और इन धरोहरों को सुरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का कार्य संग्रहालय करते हैं। संग्रहालय केवल पुरानी वस्तुओं का भंडार नहीं होते, बल्कि वे ज्ञान, शिक्षा और प्रेरणा के महत्वपूर्ण केंद्र भी हैं। इन्हीं के महत्व को समझने के लिए हर वर्ष 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है।
0: और इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977

0: 2017 में हुई थी, जब इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इस बात का निर्णय लिया था। और इसका उद्देश्य तो यही है कि लोगों को संग्रहालयों की भूमिका और उसके महत्व के प्रति जागरूक करना। दुनिया में अनेक देशों में ये दिवस बहुत उत्साह से मनाया जाता है और बहुत सारे संग्रहालयों में प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, कार्यशालाएं होती हैं और साथ ही साथ शैक्षिक गतिविधियां भी होती हैं।
1: बिल्कुल राजू जी, और संग्रहालय जो है वो हमारे इतिहास और संस्कृति के संरक्षक होते हैं। इनमें प्राचीन मूर्तियां, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां, हथियार, वस्त्र और वैज्ञानिक खोजों से संबंधित वस्तुएं सुरक्षित रखी जाती हैं। ये हमें हमारे अतीत से जोड़ने और ये समझने में सहायता करते हैं कि मानव सभ्यता ने किस प्रकार विकास किया है। संग्रहालय जब भी हम लोग जाते हैं तो सभी को लेके जाते हैं, पिकनिक पर भी आपने देखा होगा स्कूल वाले भी बच्चों को लेके जाते हैं, तो संग्रहालय जाने से बच्चों को ज्ञान बढ़ता है और पुरानी चीजों को देखते हैं कि क्या चीजें थी जो हम नहीं जानते जिनके बारे में, वो बहुत सारी जानकारियां।
0: हाँ, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, कई संग्रहालयों में उस समय के वस्त्र, पुराने पुराने वस्त्र की, जैसे एक संग्रहालय में देखा गया कि उस समय कैसा बनारसी की या किम खाप कैसा चलता था, मलमल कैसा होता था, तो ये सब देखने को मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, वजनदार चीजें जो दिखती हैं, ढाल तलवार ये सब, कितनी वजन वाली, कैसे वो लेके चलते होंगे हथियार, घोड़े पर दौड़ना, लड़ाई करना, उस समय के जमाने के जो होते हैं वो सब देख के तो एकदम अद्भुत लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और आजकल की बात करें तो डिजिटल युग में संग्रहालय आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं और अब ऑनलाइन प्रदर्शनियां और वर्चुअल टूर के माध्यम से लोग घर बैठे भी संग्रहालयों का अनुभव करते हैं। इसमें नई पीढ़ी में इतिहास और संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ रही है।
0: तो ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षित करें, उनको संरक्षित करने के उपाय करें और जागरूक भी रहें और हमें पता रहे कि ये संग्रहालय जो है वो हमारे गौरव और पहचान के प्रतीक हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और आने वाली पीढ़ियों को इनके महत्व से परिचित कराना चाहिए। वास्तव में संग्रहालय अतीत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाली अमूल्य कड़ी है। देखो, देखिए, जैसे जब हम बात करते हैं ना कि ये इनको संरक्षित करना चाहिए, तो कई बार ये कहा जाता है कि इस पर कोई भी अगर शोकेस लगा है तो उसमें अंदर जो चीजें बंद हैं वो तो चलिए सुरक्षित हैं, फिर भी हम उस शीशे पर बार बार हाथ लगाते हैं,
1: सब नहीं करना चाहिए।
0: और कई बार जो चीजें खुले में रखी हैं उनको भी हम उठाने की कोशिश करने लगते हैं, हालांकि वो थोड़ी सी दूर पर रहती हैं और बीच में एक
1: डोरी लगी
0: जिससे कि बाधा रहे, ना पहुंचा जाए, लेकिन फिर भी लोग ऐसा करते हैं। तो ये सब पुराने अच्छा बहुत समय से संजो कर रखा गया है, इनको इसी तरह से हम सुरक्षित रख सकते हैं कि हम अपने हाथ वहां तक ना पहुंचाएं।
1: सही बात है, और इस तरह से हम संग्रहालय में जाके देख सकते हैं और सभी को दिखा सकते हैं, और वहां पर जो बुक्स मिलती हैं राजुल जी उनके बारे में, उनको भी आप खरीद करके ला सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं, जानकारियां अपना उपलब्ध आपको मिल जाएगी उस बुक्स।
0: कई संग्रहालयों में शोज भी होते हैं
1: जी,
0: कि लाइट शोज होते हैं या कोई ड्रामा होता है या कोई नाटिका होती है, वो भी देखने का अगर मौका मिले तो जरूर देखिए, क्योंकि उससे और भी ज्यादा आपको पता लगेगा।
1: करीब पहुंच जाते हैं, उस समय के करीब पहुंच जाते
0: हैं,
1: है ना। तो चलिए,
0: हम करीब पहुंच रहे हैं
1: गीत के।
0: गीत के

0: तो राजुल जी, अब हम व्यंजन बता देते हैं पहले। स्ट्रीट स्टाइल बनारसी टमाटर चाट जो हमने वो बताएंगे।
1: मतलब आपने ये तय कर लिया है कि जो झगड़े वाली बात है ना मोबाइल को लेके, उसको आपने टाल दिया है सबसे आखिरी के लिए।
0: हाँ,
1: चलिए
0: उसमें
1: चलिए, पेट भर जाएगा तो झगड़े कम होते हैं, है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए पहले व्यंजन बता देते हैं।
1: हाँ ठीक है।
0: बनारसी टमाटर चाट, इसकी सामग्री है कि 3 लाल पके टमाटर बारीक काट लें, 2 उबले आलू मैश कर लें, 2 बड़े चम्मच देसी घी या मक्खन, आधा 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हींग, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ और 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इतना ही आप चाट मसाला ले लीजिए, और आधा छोटा चम्मच काला नमक और सादा नमक अपने स्वाद के अनुसार लेना है, और 1 बड़े चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच चीनी या गुड़, और सजाने के लिए आपको सेव, बारीक कटा हरा धनिया, पापड़ी, मिर्ची, थोड़ा सा मक्खन लेना है। और इसकी बनाने की विधि क्या है कि तवा या कढ़ाई गर्म करें, उसमें देसी घी डालें और जीरा हींग डालकर तड़काएं, इसमें अदरक हरी मिर्च डालकर भूनें, कटे टमाटर डालें और चम्मच से दबाते हुए पकाएं, टमाटर जब गल जाएं तो इसमें मैश किए हुए आलू डाल दें, और इसमें सारे जो मसाले हमने बताए थे, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, इमली की चटनी और थोड़ा सा गुड़, चीनी डालें, और क्योंकि खट्टा मीठा इसका स्वाद आएगा तो उसको लगातार आप चलाते रहें, और ये गाढ़ा और चमकदार जब हो जाएगा तभी आप समझ लीजिए ये आपका तैयार है। और इसको गर्मा गर्म चाट या चाट को कुल्हड़ या कटोरी में निकाल लीजिए, ऊपर से मक्खन,
1: अरे
0: सेव,
1: वाह,
0: पापड़ी और हरा धनिया डालकर तुरंत परोसे, और बनारसी स्वाद का आप इसको मजा ले सकते हैं, और आप देशी घी या मक्खन दोनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये
1: तो
0: हमारी
1: हमारे
0: चाट।
1: एक श्रोता ने कहा है कि बनारस गया था लेकिन चाट नहीं खाई, अब की जाऊंगा तो जरूर खाऊंगा। तो मेरे ख्याल से अब तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया होगा कि
0: बिल्कुल।
1: जरूर खाएंगे। और एक श्रोता कह रहे हैं कि बनारसी व्यंजन की बात हो रही है तो ये तो लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, वहां जाकर ये चाट नहीं खाई तो क्या खाई, छेना दही बड़ा ये नहीं खाया है,
0: तो बस आप
1: तो ये
0: बताइए,
1: मिठाई है नमकीन,
0: ये आप पढ़ेंगे
1: पर
0: सामग्री
1: अभी पता लग जाएगा।
0: बताएंगे।
1: तो
0: जी
1: भाई, छेना दही बड़ा बनाने के लिए 250 ग्राम ताजा छेना या पनीर ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच अरारोट या कॉर्नफ्लोर, 1 बड़ा चम्मच मैदा, 1 चुटकी इलायची पाउडर और तेल तलने के लिए ले लीजिए। अब दही में मिलाने हैं क्या क्या, 2 कप ताजा दही हो, उसमें 2-3 बड़े चम्मच चीनी, थोड़ा सा काला नमक, मतलब मीठा नमकीन दोनों, भुना जीरा पाउडर, और सजावट के लिए इमली की मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर और भुना जीरा लेना है, और सेब या अनार के दाने ले सकते हैं। कैसे बनाएंगे कि छेने को हाथों से अच्छी तरह मसल लें ताकि वो बिल्कुल मुलायम हो जाए। अब इसमें अरारोट, मैदा और इलायची पाउडर मिलाएं और छोटे छोटे गोल बड़े बना लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करें, मध्यम आंच पर बड़े सुनहरे होने तक तलें, निकाल कर टिश्यू पेपर पर रख दें। अब दही को तैयार करना है तो अच्छी तरह फेंट के उसमें चीनी, थोड़ा काला नमक और भुना जीरा मिला दें। अब बड़े को हल्के गुनगुने पानी में 2 मिनट डालकर निकाल लें, ज्यादा देर तक नहीं रखें नहीं तो
0: जी
1: वो फट जाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: और अब उन्हें दही में डालें, ऊपर से इमली, चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च और जीरा पाउडर डालें। छेना जितना मुलायम होगा उतना ही आपका बड़ा स्पंजी बनेगा, और इसमें हल्का सा मीठा दही ऊपर से डाल सकते हैं,
0: क्या बात
1: चाहे
0: है।
1: तो ऊपर से किशमिश और

0: भी डाल सकते हैं। और खास बात तो यह है कि गर्मियों में बड़ा मजा देगा ये, और त्योहारों में भी आप इसे बना सकते हैं।
1: बिल्कुल, आप जब बता रही थी तो बिल्कुल स्वाद मेरे मन में आया जा रहा था, लेकिन उसके बाद तो अब स्वाद गीतों का आ रहा है।

0: दिल की ये बेचैनी दुल्हन एक रात की फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को लिखा था और मदन मोहन ने धुन बनाई थी। और देखिए मंजरी, हम लोग जो कोई दुख ना हो बकरी पाल लो कहानी सुन रहे थे, तो हमारे एक और श्रोता ने अपना अनुभव बांटा है, हमारे साथ साझा किया है कि बचपन के दिनों में हमारे गाँव के गरड़िया अपने बकरियों का झुंड लेकर खेतों में और जंगल में जाते थे, तो हम छुप कर किसी बकरी को पकड़ते थे और उसका दूध पलाश के पत्तों को मोड़ कर उसमें निकालते थे और खूब पीते थे।
1: क्या बात बचपन की ऐसी शरारतें तो हम लोगों ने भी की हैं, लेकिन अभी हम आज बात करेंगे जो हमारे मोबाइल के कारण घर में पति पत्नी के बीच में
0: मोबाइल शरारते
1: शरारते कर देता है। तो हाँ। बस ये सुबह उठो तो लगता है भाई वो तो सबसे पहले उठकर पतिदेव मैसेज किए जा रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज हो रही है और कुछ सुन नहीं रहे हैं, कुछ चाय वाय नहीं पीने के लिए आ रहे हैं, तो वो एक आपसी तनाव होता है,
0: झुंझलाहट
1: होती है कि अरे यार खाने के समय भी साइड में मोबाइल चल रहा है, मैसेज देखे जा रहे हैं, तो वो बड़ी समस्या होती है कि भाई खाने के समय खाना खाइए, मोबाइल चलाने के समय मोबाइल
0: बिल्कुल
1: चलाइए।
0: बिल्कुल, हमारे एक श्रोता लिख भी रही हैं कि मोबाइल और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ाने का एक प्रमुख कारण बन रहा है। इसे विशेषज्ञ टेक्नोफेरेंस नाम से कह रहे हैं। अब तो बातचीत के बीच में पति पत्नी और वो नाम से इसे संबोधित किया जा रहा है, यानी दाल भात में मुसर्जन।
1: और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल के कारण जीवन साथी से तनाव, इससे कोई नहीं बचा है, मेरे घर भी यही सब है, वो पास बैठे रील देखकर मुस्कुराते रहते हैं और हम चुप्पे से अपना काम करते रहते हैं। वाकई

0: आप चुपचाप काम कर रही थी, बड़ी अच्छी बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मोबाइल ने दूर वालों को नजदीक और नजदीक वालों को दूर कर दिया है।
1: सही
0: साथ
1: बात है।
0: रहने वाले परिवार भी घंटों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दूसरा अवगुण हैंड राइटिंग और स्पेलिंग याददाश्त का सत्यानाश कर दिया है, उन्होंने कहा है। जी
1: एक श्रोता कह रही है कि आज के समय में मोबाइल हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन कई बार यही मोबाइल रिश्तों में दूरियां भी बढ़ा देता है। एक समय था जब परिवार और जीवन साथी के साथ बैठकर बातें होती थी, हंसी बांटी जाती थी। अब अक्सर एक ही कमरे में साथ होकर भी लोग अपने अपने मोबाइल में खोए रहते हैं। धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है और वहीं से तनाव जन्म लेने लगता है। रिश्ते समय और अपनापन मांगते हैं, सिर्फ ऑनलाइन मौजूदगी नहीं। कभी कभी मोबाइल को थोड़ी देर के लिए दूर रखकर अपने जीवन साथी की बातें सुन लेना, उनके साथ कुछ पल मुस्कुरा लेना, फिर से रिश्तों को खूबसूरत बना देता है। तकनीक जीवन को आसान बनाए, रिश्तों को दूर नहीं, यही समझदारी है। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
0: बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जहां तक मोबाइल के कारण जीवन साथी के साथ तनाव की बात है, उसमें पति पत्नी दोनों पक्ष जिम्मेदार हैं। मोबाइल से अधिक व्यस्त रहने के कारण एक दूसरे के बीच संवादहीनता, शक और अनदेखी की भावना पैदा होने लगती है, दूरियां बन जाती है। इसे हम नजरअंदाज कहना कह सकते हैं, जो आपस के रिश्तों में तनाव और दूरियां बढ़ाने का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। आजकल घर के हर सदस्य के पास मोबाइल होता है और समय की मांग के अनुसार ये जरूरी भी है, लेकिन इसके कारण घर के पास बैठे हुए भी मीलों की दूरी बन जाती है। सब अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। इस बिन डोर वाले मोबाइल से वो डोर वाला लैंडलाइन फोन अच्छा था, जो घर के सभी सदस्यों को जोड़कर रखता था,
1: एक डोर में बांधे रहता था।
0: बांधे रहता था, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात लिखी। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ भी तो हमें कदम से कदम मिलाना भी उतना जरूरी है। वाकई में ये बहुत पॉइंट अच्छा दिया है कि वो तो वहां डोरी के साथ बंधा है, अगर फोन आएगा तो हम उठ के जाएंगे तभी रिसीव करेंगे,
1: हाँ,
0: पूरे
1: लेकिन
0: टाइम नहीं लगा रहेगा अपने
1: ये
0: साथ।
1: समस्या तो है, लेकिन बस यही है कि अति हर चीज की बुरी होती है। और देखिए ना, शिकायतें भी हो रही है और गीत भी चल रहा है, तो एक बैलेंस बना हुआ है ना, तो क्या करें, गीत सुन ले एक।
0: गीत सुन लेते हैं।

0: भाई साजन बिना सुहागन का ये गाना पूछ रहा है कि कैसे जीत लेते हैं, और हम वही बात कर रहे हैं कि कैसे जीता जाए। तो मोबाइल में की भूमिका को जरा हाँ थोड़ा कम किया जाए तो जीत लिया जाए दिल।
1: बिल्कुल
0: एक श्रोता कह रहे हैं कि पहले तो मोबाइल नौकरी वालों के पास ही रहा करता था, लेकिन अब तो पुरुष बहुत सारी महिलाओं के हाथों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है, और चलाते समय बिना किसी सहायता के भी आसानी से अपनी रुचियों के हिसाब से नेट प्लेटफॉर्म्स पर कार्यक्रम देखते रहना उनके शौक भी हो गए हैं। नतीजा साफ है कि एक ही बेड पर दोनों पति पत्नी लोग अक्सर ही आवाज धीमी करने की शिकायत करते हैं, और अगर अलग अलग बेड पर सोए तो इसमें फिर आश्चर्य की क्या बात है। हाँ ये बात तो होती है ना कि अब सोते
1: बिल्कुल
0: समय भी कोई ये देख रहा है तो

0: रहा
1: जबकि
0: है।
1: सोते समय थोड़ा मोबाइल से दूर बरतना,
0: मुझे
1: दूरी
0: लगता है
1: बरतना
0: कि
1: अच्छा
0: राजू
1: रहता
0: जी,
1: है।
0: हाँ, बेड से आप दूर ही रखिए मोबाइल, मेज पे रखिए, तब आप सोइए, उसको पास रखना भी नहीं चाहिए। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि हमारी पत्नी तो रही नहीं, दोनों बहू और बेटों की तू तू मैं कभी ना कभी महीने पर सुनता हूँ, क्या कर सकता हूँ। बस नाती नातिन से कह देते हैं मम्मी की मोबाइल पापा को चुपके से दे दो, और पापा की मोबाइल मम्मी को, फिर सब शांत हो जाता है। वाकई में पति पत्नी के साथ जब दोनों बैठे हों तो सबसे जरूरी है कि आप मोबाइल को दूरी रख दें, और जो समय मिला है आपको पास बैठने का, बातें करने का, तो आप उससे अच्छे से बात कर लें।
1: एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि मोबाइल काफी चीजों को निगल गया है। आज समाज परिवार के बीच की दूरी का कारण मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, रिश्ते में तनाव का कारण भी मोबाइल है। आज परिवार भी छोटा हो रहा, समाज के अर्थ को भूल गए हैं। आज कोई व्यक्ति कष्ट में है तो मदद नहीं कर वीडियो बनाते हैं। आज हम अपने असली रिश्ते को भूल कर डिजिटल रिश्ते खोज रहे हैं। तो वाकई बहुत जो ज्वलंत समस्या है वो आज हमने उठाई है, और
0: बिल्कुल
1: हमारे श्रोताओं ने उस समस्या को कितनी बुरी तरह से हावी हो चुकी है इस बारे में भी बताया है,
0: और
1: लेकिन वक्त की कमी है।
0: बिल्कुल, और चलते चलते यही कहेंगे कि जिन्होंने भी ये प्रोग्राम सुना है वो इस समय जब अपने पति पत्नी साथ में हो तो मोबाइल हटा दें। और हम लोग लेते हैं फिलहाल इस कार्यक्रम से विदा, तो सभी को मंत्री वर्मा और
1: राजुल का
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, आपको बताते चले, अब से कुछ ही देर में 4:05 पर हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। तो इस कार्यक्रम के लिए फेसबुक पर अपने कमेंट्स हमें अभी भेजना शुरू कर दीजिए, ताकि जल्द से जल्द हम आपके कमेंट्स को अपने कार्यक्रम में शामिल कर सकें। समय मिला लीजिए, शाम के 4 बजे हैं और अब तो श्रोताओं, अब समय हो चला है कार्यक्रम जिसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हम ये विशेष कार्यक्रम लेकर हाजिर हुए हैं। तो लीजिए, आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत सुनते हैं माधुरी कश्यप को।
1: नमस्कार, मेरा नाम माधुरी कश्यप है और मैं बरेली की रहने वाली हूँ। आकाशवाणी के 90 इयर्स पूरे हो रहे हैं, इस बात की बहुत बहुत बहुत सारी बधाइयाँ पूरी टीम के लिए। और अगर इसकी यादों की कहा जाए या इससे जुड़े रहने की कहा जाए, तो मैंने तो बचपन से सुना है, तो ये एक्चुअली बचपन से जो काम आप करो ना, वो आपके हैबिट में शामिल हो जाता है। तो मैंने आकाशवाणी को बचपन से सुना, हमें याद है हमारे पापा के पास इतना बड़ा और इतना चौड़ा सा एक रेडियो हुआ करता था। और जब हम थाने में रहते थे, क्योंकि मेरे पापा पुलिस से हैं, तो फिर वो सुबह स्टार्ट हो जाता था और वो दिन भर चलता था जब तक कि चालू रहता था। उसके बाद जब प्रोग्राम बंद हो जाते तो फिर बंद हो जाता था, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता था। तो हमें याद है कि उस वक्त मैं, क्योंकि मुझे कुकिंग का बचपन से शौक है, तो कुकिंग की अगर कोई चीजें जानकारी आती तो मैं कॉपी में नोट डाउन करती थी। इवन भजन, गीत, छंद, ये सब मैं कॉपी में लिख लेती थी, ताकि क्योंकि उस समय यूट्यूब वगैरह तो हुआ नहीं करता था, तो यही था एक मनोरंजन का साधन। तो हम ये कॉपी में नोट कर लेते थे, फिर जब कीर्तन वगैरह कुछ होता था तो हम गाते थे। मेरे पास आज भी वो नोट डाउन है। तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उससे, और बहुत सारी महिलाओं से रिलेटेड प्रोग्राम की जानकारियां होती हैं, वो भी हमें यहीं से मिलती थी। और आज के टाइम में तो यूथ के लिए काफी अच्छे काम कर रहे हैं, नई नई जानकारियां देना, या बच्चों को किन चीजों से दूर रखा जाए, कौन सी चीजें दी जाए, इस तरह की जानकारियां देना। आज भी मेरे पापा को तो, मतलब अभी भी हमारे घर में एक इतना बड़ा सा एक, आजकल तो नए नए तरीके के आने लगे हैं, तो एक FM है, सुबह से स्टार्ट हो जाता है और जब वो सोने जाते हैं, जब वो सोने लगते हैं, तब जब 11 बजे के आसपास जब बंद होता है प्रोग्राम, तभी उनका वो ऑफ होता है। तो हमको रोज पता चलता रहता है कि आज किसकी ड्यूटी है, क्योंकि आवाज ही पहचान में आने लगी है। तो इसलिए लगातार हम सुनते हैं और हमको बहुत खुशी है कि 90 इयर्स पूरे हो रहे हैं, क्योंकि पहले इतना लोकल FM नहीं हुआ करते थे, तो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ही सुना जाया करता था, और जिसमें महिलाओं के प्रोग्राम आते थे, जैसे ममता सखी, तो उनको बचपन से सुना है, तो उनकी आवाज

0: से उनका बोलने का तरीका भी एकदम जहन में अच्छे से ताजा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे ही तरक्की करता है आकाशवाणी और बहुत सारी।
1: अभी आपने सुना आकाशवाणी के दीवाने, इसके अंतर्गत माधुरी कश्यप के विचारों को। 100.4 FM पर आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है। अब से कुछ ही देर में हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और इस कार्यक्रम में आप अभी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं इस कार्यक्रम का फेसबुक पर कमेंट्स के माध्यम से। जी हाँ, फेसबुक पर आकाशवाणी बरेली पेज को सर्च कीजिए, वहाँ कमेंट बॉक्स में आज के प्रश्न से जुड़े अपने विचार, अपने सुझाव हमें लिख भेजिए और बहुत आसानी से बहुत जल्द ही हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बनने का मौका ना गंवाएं और शामिल हो जाएं।

0: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। और देखिए, समय हो गया है 4:05 और हम भी लेकर हाजिर हो गए हैं आपकी फोन कॉल्स पर आधारित कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। इसके लिए हम आपके फोन कॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 2:30 से। वहीं फेसबुक पर भी आप कमेंट्स के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फिलहाल आज का विषय आपको बताते चलते हैं। तो श्रोताओं, आज का विषय है अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं आप। क्या कभी काम में बेईमानी भी चलती है? बस इसी प्रश्न का उत्तर आपको हमें लिख भेजना है और जिन श्रोताओं की कॉल शामिल हुई है उनसे जान लेते हैं कि इस विषय को लेकर क्या राय है उनकी। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए।
1: अवधेश मिश्र, अमर शहीदों की नगरी जनपद शाहजहांपुर से बोल रहे हैं।
0: अवधेश मिश्र जी, जनपद शाहजहांपुर से बोल रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।
1: आपका भी हम श्रोताओं की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं।
0: बिल्कुल, बहुत
1: आपकी मृदुल मयंक अलंकृत वाणी हमको मंत्रमुग्ध कर देती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अवधेश जी, बताइए आज के प्रश्न को लेकर क्या मानना है आपका?
1: अपने काम के प्रति त्याग और समर्पण के साथ रहना चाहिए, पूर्ण वफादारी के साथ अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए। भले ही इंसान खाना ना पिए, खाना बाद में खा ले आके, लेकिन पहले अपना समय देखना चाहिए, ड्यूटी समय से निभाना चाहिए, कार्य पूर्ण सजगता के साथ, शुचिता के साथ करना चाहिए। क्योंकि कोई भी हमें देखने वाला नहीं है, पर ऊपर वाला सब देखता है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती है।
0: बिल्कुल, जैसा हम सामने वाले से भी अपेक्षा रखते हैं कि वो जिस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में पूरी तरह से ईमानदारी से कार्य करता है, वैसे हमें भी पूरी ईमानदारी बरतनी चाहिए,
1: ईमानदारी के साथ, त्याग और समर्पण के साथ कार्य करना चाहिए।
0: अच्छा, कभी कभार बेईमानी चलती है?
1: हाँ, बेईमानी करती है, पर चलती है, लेकिन वो लोग जो है अच्छा नहीं करते। ईश्वर के लिए श्रेष्ठ कार्य पसंद है, पर जो है चापलूसी और बेईमानी पसंद नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि वो तो यहाँ के लोगों का भी जो है मान बढ़ता है लोगों के साथ, तथा ऊपर वाले के भी बहुत खुश होता है जब वो त्याग और ईमानदारी के साथ कार्य करता है, तो ऊपर वाला बहुत खुश होता है।
0: बिल्कुल, कहते हैं कि जो ईमानदारी की रोटी खाता है, भले ही अपने शौक पूरे ना कर पाता हो, लेकिन वो अपनी नींद जरूर पूरी लेता है।
1: ईमानदारी की रोटी खाता है, वो बहुत ही बड़ा इंसान होता है। आप बताए, बड़ा इंसान बड़े अपने कर्मों से होता है
0: जी, बिल्कुल,
1: ना कि धन दौलत से नहीं होता। क्योंकि यस्यास्ति वित्तम सनरा कुलीना सा पंडिता सा श्रुतिवान गुणज्ञा सा एव वक्ता सचिदर्शनीया सर्वे गुणा कांचन मास्रेंती। पर अपवाद स्वरूप जो है, पर जो है

0: गुण पैसा के ही आश्रित नहीं है, पर अपवाद स्वरूप ये है।
1: बहुत अच्छे विचार आपके, बहुत उम्दा विचार और बहुत अच्छी बात कही आज के विषय को लेकर। अब जल्दी से अपना गीत भी बता दीजिए, कौन सा
0: है? राजा और रंग फिल्म का गाना है, वो फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना।

0: ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, कितना खूबसूरत सा गीत था ना। तो अगला कौन सा गीत आप सुनेंगे हमारे आकाशवाणी बरेली केंद्र से, क्योंकि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ। हेलो
1: हेलो,
0: जी, नाम बताइए।
1: मैं सूफी चौधरी बोल रही हूँ बरेली से।
0: सूफी चौधरी बरेली से हमसे जुड़ी हैं। आज के विषय को लेकर क्या मानना है आपका?
1: मेरा मानना तो यही है, जैसे हमारे टीचर पूरी ईमानदारी से हमें पढ़ाते हैं, ऐसे ही हमें पूरी ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए और हमें अपने पेपर करने चाहिए और पूरी ईमानदारी से और लगन से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए।
0: अच्छा, आप कहीं कार्यरत हैं या पढ़ाई कर रही हैं?
1: अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ।
0: इसीलिए पेपर को लेकर आपको पूरी तरह ईमानदार होना चाहिए अपनी शिक्षा को लेकर, है ना। और
1: जी
0: कभी ऐसा तो नहीं करती कि

0: पेपरों में कुछ चीटिंग वीटिंग कर लेती हूँ, कोई बेईमानी चलती है?
1: नहीं, हमारे स्कूल में कोई बेईमानी चलती है, चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, अगर किसी ने भी चीटिंग की उसका तुरंत पेपर कैंसिल हो जाता है, फिर दोबारा से लिखना पड़ता है।
0: अच्छा, खुद से तो प्रयास नहीं करती किसी दूसरे की कॉपी में झांकने का?
1: नहीं, वहाँ पर बहुत सख्ती बरती जाती है, जो करना है बस अपने आप ही करो पेपर में।
0: बिल्कुल, यानी कि पढ़ाई के लिए आप पूरी तरह ईमानदारी से अपनी प्रिपरेशन करती हैं, पूरी ईमानदार हैं अपने पढ़ाई के लिए, है ना?
1: जी।
0: तो शूफी जी, आज गीत कौन सा सुनेंगी?
1: मैं सुहाग मूवी का सुनना चाहूंगी, मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हूँ मुश्किल तो दफ्तर ले चलो।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। वैसे आज के विषय को लेकर इन श्रोताओं के कमेंट्स, इन श्रोताओं के विचार आपने जाने। अब जाहिर सी बात है, आपका मन तो होता होगा कि काश हमारी भी फोन कॉल शामिल होती, है ना। हम समझते हैं कि बहुत सी वजहों की वजह से हो सकता है आपकी फोन कॉल नहीं शामिल हो पाई हो, लेकिन अब भी एक मौका आपके पास है हमारे कार्यक्रम में शामिल होने का। पूछिए क्या, बताते हैं। क्योंकि अभी भी आप हमारे इस प्रश्न को लेकर अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं फेसबुक पर कमेंट्स के माध्यम से। जी हाँ, अभी फोन उठाइए, आकाशवाणी बरेली पेज को फॉलो कीजिए और आज के कमेंट बॉक्स में आज के विषय को लेकर फटाफट अपनी राय हमें भेज दीजिए, ताकि इन फोन कॉल्स को शामिल करने के बाद बहुत जल्दी से हम आपके कमेंट्स को भी शामिल कर लें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। फिलहाल अभी कुछ फोन कॉल्स और बची हैं हमारे कार्यक्रम की, सुनते हैं। आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय, अपने काम के प्रति कितने ईमानदार हैं आप, क्या कभी कभार बेईमानी भी चलती है, इसी विषय को लेकर और कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं। हेलो।
1: हेलो जी, नमस्ते, मैं शरद सक्सेना बोल रहा हूँ, बाकी की छावनी बरेली से।
0: शरद सक्सेना जी हमसे जुड़े हुए हैं, बताइए आज के विषय को लेकर क्या मानना है आपका।
1: आज के विषय को लेकर मेरा ये मानना है कि काम के प्रति मैं तो बहुत ईमानदार हूँ और सबको ही ईमानदार रहना चाहिए, और किसी के लिए बेईमानी तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, और वैसे मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूँ और कोई बेईमानी मैं नहीं करता हूँ, वरना मुझे पसंद है।
0: वैसे शरद जी, किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप?
1: जी मैं स्पोकन इंग्लिश कराता हूँ बच्चों को, जिसको त्रिपल भाषा में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कहते हैं, वो कराता हूँ।
0: यानी कि एक शिक्षक हम आपको कह सकते हैं, आप शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। शिक्षा के आदान प्रदान में, शिक्षा से, शिक्षण से जुड़े हुए कार्यों में आप कोई भी बेईमानी नहीं करते, या कभी कभी चल जाती है बेईमानी?
1: हाँ जी, नहीं कभी नहीं चलती, क्योंकि यह काम ही ऐसा कि बेईमानी चल नहीं सकती, लोग चलाते तो है
0: जी,
1: लेकिन बैच में 20-50 बच्चे बिठा देते हैं, मतलब सिर्फ 4 ही बच्चे रहते हैं बैच में, और बच्चा मैं नहीं करता, टीम करता हूँ फिर उस बैच में, कभी बच्चा मेरी बीच बोली सीख जाता है और नहीं तो जिंदगी गुजर जाएगी, वो नहीं कभी नहीं आई।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी विचार, अच्छे विचार हैं आपके। आज का गीत कौन सा रहेगा?
1: उमरा ज्ञान का गाना, वो सुना लीजिए, ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा दयार है, ये वाला।
0: बिल्कुल, आपके पसंद का गीत आप तक पहुँच रहा है, सुनिए।

0: श्रोताओं, आज के विषय को लेकर और कौन से श्रोता हैं हमारे साथ फोन लाइन पर और क्या उनकी विचारधारा है ये जानते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी,
1: आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, अपना नाम बताइए।
1: दीदी, मैं सिद्धार्थ नगर रोड नंबर 6 इज्जत नगर बरेली से राजेश श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ।
0: जी राजेश जी, बताइए आज के विषय को लेकर क्या मानना है आपका।
1: दीदी, मेरा तो मानना यही है कि हमें पूरी ईमानदारी और लगन से काम करना चाहिए। ईमानदारी तो ईश्वर को भी पसंद है ना?
0: जी, और हम भी तो सामने वाले से अपेक्षा रखते हैं ना कि वो हमारे प्रति बिल्कुल ईमानदार हो जो उसका कार्य है, तो हमें भी ईमानदार होना चाहिए ना?
1: दीदी, उसके लिए पहले हमें भी ईमानदार बनना पड़ेगा, हमें भी उसकी नजरों में खरा उतरना पड़ेगा, उसके बाद ही तो हम जैसा चाहते हैं वैसा दूसरे से हमें मिल पाएगा।
0: अच्छा, कभी कभी कोई लालच मन में उठ जाता है तो बेईमानी चलती है?
1: दीदी, बहुत कई बार सोचना पड़ता है क्योंकि ईश्वर जो है ना कभी माफ नहीं करता, जैसा हम किसी को देंगे वैसा ही हमें मिलेगा।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने। और आज का गीत कौन सा रहेगा आपका?
1: दीदी, फिल्म 10 नंबरी का गीत है, आशा भोसले, मुकेश और मन्ना।

0: की आवाज में है, दिलरुबा दिल्ली वाली दिल वालों में आ गई।
1: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
0: दीदी एक मिनट। हेलो,
1: बोलिए।
0: क्या मैं जान सकता हूँ मेरी कौन सी बहन जी से बात हो रही है?
1: आपकी शिप्रा मिश्रा बहन जी से बात हो रही है।

0: सरदार।
1: तौबा तौबा, ये आज मेरी चश्मे आवारा क्या देख रही है नजारा, कि मेरा रखी तेरे करीब अरे फूटे नसीब। आपकी तारीफ
2: एक आशिक गरीब

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी, नाम बताइए।
1: मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, कनेटा से, टेंट बरेली से।
0: सुनील कुमार जी जुड़ चुके हैं आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में। तो आज के विषय को लेकर क्या मानना है सुनील जी का?
1: ये मानना है मैम, जो भी काम कर रहे हैं वो लगा के करें,
0: पूरी
1: ये है। हाँ,
0: ईमानदारी से, है ना?
1: ईमानदारी से वो काम पूरा 100% फिट हो।
0: अच्छा, कभी कभी बेमानी करने का मन हो जाए, थोड़ा सा कोई लालच हो जाए या कुछ, तो चलेगा?
1: तो उसमें यही पूरी कमी रहे। जी
0: कमी रहेगी।
1: जी जी जी
0: बिल्कुल, आपका कहने का अर्थ है पूरी तरह से ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि
1: बिल्कुल,
0: कोई और
1: कोई
0: हमें
1: भी
0: नहीं
1: काम।
0: देख रहा है, तो ऊपर कहते हैं कि ईश्वर तो देख ही रहा है ना?
1: बिल्कुल, आप कुछ भी छुपाना चाहें वो छुपता नहीं है,
0: छुप नहीं सकता
1: कोई
0: आज।
1: भी काम दिल
0: जी,
1: लगा के करें, 100% करें।
0: 100% देने। आज का
1: हाँ,
0: गीत कौन सा सुनेंगे?
1: सनम पिक्चर का, आंखों में नींदें ना दिल में करार, मोहब्बत क्या चीज होती है यार।
0: बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

तो श्रोताओं, ये तो थी वो फोन कॉल्स जो हमें दिन में मिली और हमने उनको रिकॉर्ड किया, और उन कॉल्स के आधार पर जो गीत पसंद किए गए थे और जो हमारे श्रोताओं के विचार थे।

आज के विषय को लेकर वो आपने सुने। वहीं साथ ही साथ अब रुख कर लेते हैं फेसबुक की तरफ। वैसे आपके पास अभी भी अवसर है कि आप फेसबुक पर आज के विषय से जुड़े कमेंट लिखकर हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन जाएं। फिलहाल सबसे पहला कमेंट किसका शामिल हुआ है, तो वीना मिश्रा जी हैं। इन्होंने दो बार कमेंट किया है। पहले उन्होंने सिर्फ गीत की फरमाइश भेजी थी और बाद में विषय के साथ जो इनका मत है उसके साथ गीत की फरमाइश लिखी है। श्रोताओं, आपको भी बताते चलें कि अगर आप खाली गीत की फरमाइश लिखते हैं तो आपका कमेंट कार्यक्रम में शामिल होना बहुत मुश्किल है। इस कार्यक्रम में हम जो आपको विषय देते हैं उस विषय पर अपने विचार लिखिए, उसके साथ अपनी पसंद का गीत लिखिए, तब वह कार्यक्रम में शामिल हो सकता है। खाली अपने पसंद का गीत सुनना है तो आपकी पसंद अनुरोध गीत हमारे अन्य कार्यक्रम हैं, आप उनमें शामिल हो सकते हैं। फिलहाल वीना मिश्रा बाद में दोबारा से कमेंट्स करके लिखती हैं, मैं जनकपुरी से हूँ और अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हूँ। पहले से दिमाग में सोच लेती हूँ कि मुझे क्या करना है और काम के साथ बेईमानी बिल्कुल नहीं। लाल मोहम्मद अंसारी जी ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से हैं। इनके साथ हैं लालू मिस्त्री अंसारी। आप क्या लिखते हैं, आपकी बात आकाशवाणी के कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आपको भी कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है, हम रोज इस कार्यक्रम को सुनते हैं। आज का विषय अपने काम के प्रति ईमानदारी। हर व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने काम के साथ पूरी ईमानदारी बरते। अगर हम अपने काम को पूरी तरह से करेंगे तो कहीं ना कभी उसका जो फल है वो हमें मिलेगा, उसका परिणाम हमें मिलेगा। अगर हम बेईमानी करते हैं तो फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

तो एक बार फिर कमेंट्स की ओर चलते हैं। आज के विषय को लेकर राम कुमार रिवाल सादुर शहर राजस्थान से हैं, आपके साथ हैं चंद्रकला रिवाल। क्या लिखते हैं ये? सभी को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। ये लिखते हैं, बचपन में तो ये हमारा एक खेल था जब हम काम चोर हुआ करते थे, लेकिन जब से होश संभाला है और जिम्मेदारी खुद पर आन पड़ी है, उसके बाद तो हर कार्य बहुत ही शिद्दत के साथ करना पड़ता है। मैं तो अक्सर कहता हूँ कि काम ही कर्म है। यकीन मानिए, मुझे अपने काम करने में बहुत आनंद आता है। अपना कोई भी कार्य हो, वह सबसे पहले करने के बाद ही हम आराम फरमाते हैं। जब तक कोई कार्य कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आराम नहीं करते। शायद आज तक मैंने कोई भी कार्य अधूरा नहीं छोड़ा। कार्य पूर्ण होने पर ही आराम फरमाया है। चाहे रात की नींद क्यों ना हो, चाहे भोजन क्यों ना हो, पहले काम फिर आराम। और आज के विषय को लेकर देवेश कुमार लिखते हैं, आज का विषय, आप काम के प्रति कितने ईमानदार हैं, बहुत अच्छा है। हम सबको काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। जहां आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहेंगे, वहीं आप सफलता प्राप्त करेंगे। बस ये देखें कि हम किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को धोखा देते हैं अगर हम ऐसा नहीं करते। तो कोई तो है जो हमारा आकलन करता है और हमें देखता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माता हैं। इसीलिए जीवन में जो भी करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें। बहुत अच्छे विचार हैं देवेश जी के। तो इनके इन विचारों के साथ ही सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

और अब चलते चलते आखिरी कमेंट और शामिल कर लेते हैं। माधुरी कश्यप क्या कह रही हैं आज के विषय को लेकर, लिखती हैं, नहीं, काम के साथ कभी बेईमानी नहीं करनी चाहिए। काम के साथ बेईमानी मतलब खुद के साथ धोखा करना है। इसीलिए व्यक्ति को काम के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे लेकिन ऊपर वाले की नजर हमेशा आपके ऊपर है। और मैं तो कहती हूँ कि व्यक्ति को हमेशा ईमानदार ही रहना चाहिए, क्योंकि झूठ, दिखावा, बेईमानी की जो उम्र होती है वो लंबी नहीं होती, सबके सामने आता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सिवाय सजा के कुछ नहीं बचता। जबकि सच और ईमानदारी भले कड़वी हो, समय लगे, लेकिन जब भी इसका परिणाम आएगा तो सुखद और सकारात्मक जीवन को खुशियां देने वाला होगा। बहुत अच्छे विचार हैं माधुरी जी के। और चलते चलते आप सभी की पसंद पर ये गीत।

और अब श्रोताओं, कार्यक्रम का जो समय है समाप्ति की ओर है, लेकिन जाते जाते आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आज के कार्यक्रम के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक जरूर भेजें। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? कोई शिकायत है, सुझाव है, हमें सब एक्सेप्ट है। तो अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए पता नोट कीजिए। पत्रों के माध्यम से अगर प्रतिक्रियाएं भेजना चाहते हैं तो उसके लिए है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्रीय शक आकाशवाणी बरेली। बरेली का पिन नंबर है 2430001। वहीं ईमेल पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक भेज सकते हैं। नोट कीजिए पता, आपका पत्र मिला @bareli@gmail.com। तो अब इसी गीत के साथ कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ से दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। और अब एक नजर हमारे केंद्र से आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित बरेली होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा पर। पांच 5:30 पर नारी संसार में चर्चा की जाएगी नवजात शिशु और टीकाकरण पर। साथ ही संयुक्त परिवार खुशियां अपार इस विषय पर सिद्धि रस्तोगी से जानिए इनके विचार। युवाणी में 6 बजे होगा आज का सवाल और बहुत कुछ खास। ग्राम जगत में 6:30 पर चर्चा का विषय रहेगा स्वास्थ्य का रखें ध्यान। साथ ही श्री राम बहादुर साहू से की गई भेंटवार्ता जिसका विषय कृषक अनुभव बातचीत जो है वो हम आपको सुनवाएंगे श्री राम बहादुर साहू से। समय याद रखिएगा 6:30 का। रात्रि 7:31 पर लेकर आएंगे आपके पत्रों पर आधारित कार्यक्रम अनुरोध गीत। कल सुबह 8:15 पर होगा नमस्ते बरेली। आकाशवाणी के दीवाने आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 10 बजे आपकी पसंद 10:05 पर। सबरंग सुनिए 11 बजे। झुमका गिरारे क्षेत्र संकेत इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे 11:15 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT समय रहेगा 11:30 का। दिन में 1 बजे समय रहेगा अनुरोध गीत का। वहीं शाम 4 बजे पुनः आकाशवाणी के दीवाने कार्यक्रम लेकर आएंगे। चार 4:05 पर होगा आपके बाद आकाशवाणी के साथ नारी संसार में 5:30 पर चर्चा की जाएगी शाकाहारी भोजन के फायदों पर।

साथ ही रेणु श्रीवास्तव से की गई वार्ता आप सुन सकेंगे। विषय रहेगा संतुलित आहार का महत्व एवं लाभ। युवाणी का समय रहेगा शाम 6 बजे का, 6:30 पर किसान वाणी होगी, जिसमें आज की बात का विषय रहेगा कृषि मशीनीकरण योजना। साथ ही होगा हेलो किसान, बाजार भाव, मौसम और कृषि समाचार। ग्राम जगत में 7 बजे धूम्रपान ना करें और विश्व मधुमक्खी दिवस, ये चर्चा के विषय रहेंगे। साथ ही होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन लेकर आएंगे 7:31 पर। तो श्रोताओं, ये तो थी रूपरेखा आज के शेष कार्यक्रमों की और कल की सभा में प्रसारित वरेले होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। ये देश हमारा है, अपने देश की प्राचीनतम और पौराणिक धन संपदा का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। देश को स्वच्छ बनाए रखने में अपना अहम योगदान अवश्य दें। देश की बगिया का सबसे महकता पुष्प हिंदी। जल ही जीवन है, इसका संरक्षण करें, इसे व्यर्थ ना बहाएं। हमेशा याद रखें, जल का कोई विकल्प नहीं। समय मिलाइए, शाम के 5:05 हुए हैं और आपने ट्यून किया हुआ है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। समय है भजन संध्या का। आज की भजन संध्या में हम लेकर आए हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में कुछ भजन।

आप इस समय सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से भजन संध्या। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में भजन। तो लीजिए ये कृष्ण भजन अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

भजन संध्या में अब चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम भजन की ओर। माँ गंगा की इस भजन के साथ कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

अनुराधा पौडवाल की आवाज में माँ गंगा के इस भजन के साथ ही आज की भजन संध्या अब यहीं तक। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। समय मिला ये शाम के 5:30 और 16 सेकंड हुए हैं। समय हो चला है नारी संसार का।

प्रोग्राम नारी संसार सुनने वाली हमारी सभी बहनों और सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका का प्यार भरा नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र। हमारी सखियां सहेलियां व्यस्त होंगी अपने घर के कामकाज में और साथ ही साथ हमारा प्रोग्राम भी सुन रही होंगी। सखियों, आज है 18 मई। प्रत्येक वर्ष इस दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को संग्रहालयों के प्रति जागरूकता तथा उनके कार्यकलापों के बारे में जन जागृति फैलाना है और अपने इतिहास को, अपनी प्राचीन समृद्ध परंपराओं को जानें और समझें। सखियों, संग्रहालय को म्यूजियम कहते हैं। म्यूजियम में ऐसी बहुत सी चीज़ें सुरक्षित रखी हैं जो मानव सभ्यता की याद दिलाती हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर तथा प्रकृति को प्रदर्शित करती हैं। वर्ष 1992 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद ने यह निर्णय लिया कि वह प्रत्येक वर्ष एक नए विषय का चयन करेंगे एवं जन सामान्य को संग्रहालय से अवगत कराएंगे। सखियों, म्यूजियम में हमारे इतिहास का पूरा वर्णन नजर आता है। इतिहास की तमाम यादें, पुरानी वस्तुएं, अस्त्र शस्त्र, पोशाकें और भी न जाने कितनी यादें देखने को मिलती हैं, कितने रहस्य, कितनी मेमोरीज हैं। सखियों, जब कभी भी हमें मौका मिले तो हम म्यूजियम जाएं, वहां भ्रमण करें, देखें अपनी पुरानी सभ्यताओं, संस्कृति को, और बच्चों को साथ लेकर ज़रूर जाएं, उन्हें बताएं अपने पुराने इतिहास के बारे में। इससे बच्चों की नॉलेज बढ़ती है, उनका ज्ञान बढ़ता है और वो परिचित भी होते हैं अपनी संस्कृति, अपने इतिहास से, पुरानी बिछड़ी यादों से।

0: सखियों आइए आपको सुनवाते हैं वार्ता संयुक्त परिवार खुशियां अपार। वार्ताकार हैं सिद्धि रस्तोगी।
1: नमस्कार, आदरणीय उपस्थित सभी श्रोताओं का मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिला है वो है संयुक्त परिवार खुशियां अपार। ये केवल एक विषय नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आत्मा है। हमारे देश में परिवार को केवल रिश्तों का समूह नहीं माना जाता बल्कि प्रेम, संस्कार, अपनापन और सहयोग का सबसे सुंदर रूप समझा जाता है। और जब यही परिवार कई पीढ़ियों को एक साथ जोड़ता है तब वो संयुक्त परिवार कहलाता है। संयुक्त परिवार का अर्थ है ऐसा परिवार जहाँ दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन और बच्चे सभी एक साथ रहते हैं, जहाँ केवल एक घर नहीं होता, जहाँ मैं से अधिक हम का महत्व दिया जाता है। आज आधुनिकता और भागदौड़ भरी जिंदगी में भले ही एकल परिवारों का चलन बढ़ गया हो लेकिन संयुक्त परिवार की महत्व आज भी उतनी ही, क्योंकि संयुक्त परिवार केवल रहने की व्यवस्था नहीं बल्कि खुशियों का खजाना है। संयुक्त परिवार की सबसे बड़ी खूबी होती है एकता और अपनापन। जब परिवार के सभी सदस्य साथ रहते हैं तो सुख या दुख, हर परिस्थिति आसान लगने लगती है। किसी एक व्यक्ति पर सारी जिम्मेदारियां नहीं होती बल्कि हर काम मिलजुल कर किया जाता है। घर में यदि कोई परेशानी आती है तो पूरा परिवार एक दूसरे को सहारा बन जाता है। यदि साथ जीवन को मजबूत बनाता है। संयुक्त परिवार बच्चों के लिए भी किसी विद्यालय से कम नहीं होता। बच्चे अपने दादा दादी से संस्कार सीखते हैं, बड़ों का सम्मान करना

सीखते हैं और रिश्तों की अहमियत समझते हैं। आज की भागती दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल और इंटरनेट बच्चों के साथ ही बनते जा रहे हैं। वहाँ संयुक्त परिवार उन्हें भावनात्मक जुड़ाव और वास्तविक रिश्तों का महत्व सिखाता है। दादा दादी की कहानियाँ, त्योहारों की रौनक, साथ बैठकर खाना खाना, छोटी छोटी बातों पर हंसी मजाक, ये सब मिलकर बचपन को खूबसूरत बना देते हैं। संयुक्त परिवार में पलने वाला बच्चा अकेलापन कम महसूस करता है और उसके भीतर सहयोग तथा संवेदनशीलता की भावना विकसित होती है। संयुक्त परिवार बुजुर्गों के लिए भी बहुत बड़ा सहारा होता है। बढ़ती उम्र में उन्हें सबसे अधिक जरूरत होती है अकेलेपन और सम्मान। संयुक्त परिवार में बुजुर्ग कभी अकेलापन महसूस नहीं करते, उनके अनुभव और मार्गदर्शन से पूरा परिवार लाभ उठाता है। वास्तव में बुजुर्ग परिवार की जड़ होते हैं, जिन्हें परिवार मजबूत बना देता है। इसके अलावा संयुक्त परिवार आर्थिक रूप से भी लाभदायक होता है। जब परिवार में कई सदस्य साथ रहते हैं तो खर्चा और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। एक दूसरे की मदद से जीवन आसान बनता है। यदि किसी सदस्य पर कठिन समय आता है तो पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहता है। यही परिवार की असली ताकत होती है। हमारे त्योहारों की रौनक भी संयुक्त परिवार में ही दिखाई देती है। दिवाली हो, होली हो या कोई शादी ब्याह, जब पूरा परिवार एक साथ होता है तभी त्योहारों की खुशी कई गुना बढ़ जाती। घर में हंसी, मस्ती, गीत, संगीत और अपनापन हर कोने को जीवंत बना देता है। सच में संयुक्त परिवार में खुशियाँ केवल मनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। हालांकि ये भी सच है कि संयुक्त परिवार में कभी कभी मतभेद और छोटी छोटी परेशानियां भी होती हैं। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, लेकिन जहाँ प्यार, समझदारी और सम्मान हो वहाँ हर समस्या का समाधान निकल आता है। रिश्ते तभी मजबूत बनते हैं जब लोग एक दूसरे को समझने और अपनाने की कोशिश करें। आज के समय में लोग स्वतंत्र जीवन और निजी सुविधा को अधिक महत्व देते हैं, देने लगे हैं। करियर और वास्तविकता के कारण परिवार बिखरते जा रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पैसा और सुविधाएं हमें आराम तो दे सकती हैं, परंतु सच्ची खुशी अपने लोगों के साथ रहने में ही मिलती है। संयुक्त परिवार हमें सिखाता है कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं बल्कि साथ लेकर चलने का नाम है। जहाँ रिश्ते में प्रेम हो, बड़ों का आशीर्वाद हो और बच्चों की मुस्कान हो, वही सच्ची खुशियाँ बसती हैं। अंत में मैं बस यही कहूँगी कि संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की पहचान है। हमें इसे केवल परंपरा समझकर नहीं बल्कि जीवन के सबसे बड़ी ताकत मानकर अपनाना चाहिए, क्योंकि परिवार जितना बड़ा होता है खुशियाँ भी उतनी ही बड़ी होती हैं। जहाँ परिवार साथ होता है वहाँ हर दुख छोटा और हर खुशी बड़ी लगती है। धन्यवाद।

0: सखियों शुरू करते हैं अपना सेगमेंट, इनसे मिलिए। समूह बैंक सखी हैं ये श्रीमती दर्शन जी, आइए इनसे बात करते हैं।
1: आपका नाम?
2: मेरा नाम दर्शन है।
1: दर्शन जी क्या करती हैं आप?
2: बैंक में जॉब करते हैं।
1: अच्छा, आप बैंक में जॉब करती हैं, तो क्या वर्क रहता है आप?
2: मेरा जो गांव की महिलाएं होती हैं, जो अनपढ़ होती हैं, कुछ जानती नहीं है, अपने पैसे वगैरह निकालने के लिए ट्रांसफर वगैरह होते हैं, वो नहीं कर पाती हैं, वो मुझे उन्हें फिल करके देना होता है। महिला अनपढ़ आ रही है, वो वाउचर नहीं भर पा रही है, उन्हें उसे पता नहीं है, तो उसका वाउचर वगैरह भर दिए, पैसे निकाल देती हैं। अनपढ़ महिलाएं गांव की जो भी हैं, उन्हें बहुत समस्याएं आती थी पहले पैसे निकालने में, डालने में, कोई इनकी, क्योंकि बैंक में कोई ऐसा होता नहीं है उनके वाउचर भर सके, हेल्प कर सके। तो सरकार ने महिलाओं के लिए अलग से स्टाफ लगाया है,
1: बहुत अच्छी बात।
2: हाँ, इसी कार्य के लिए जो महिलाओं को दिक्कत होती है, तो फिर वो आधार कार्ड से निकाल लें अंगूठा लगा। अब कई बार ऐसा होता है केवाईसी वगैरह नहीं होती है खातों की, तो अंगूठे से लगाने में भी दिक्कत आती है, पैसे जो अंगूठे से नहीं निकलते। जब मैं आई तब कुछ महिलाएं कहती हैं, दीदी आप यहाँ बैठेंगे तो हमें बहुत सुकून हो गया, इससे पहले हम कभी कैफे पे जाते थे, कभी किसी बाहर वाले के नौरे करते थे, कभी ब्रांच में जो दो चार लोग रुपए निकालने आते थे उनसे कहते थे भैया हमारा वाउचर भर दो, और सब हमें उल्टा सीधा कहते, पढ़ी लिखी नहीं है पैसे निकालने आ जाती है।
1: और बैंक में जब जाएं तो वहाँ बैंक में फिर कोई कुछ बताना भी नहीं जाता है।
2: हाँ वही तो, महिलाएं जब अब आती हैं तो कहती हैं अब हम आराम से आ जाते हैं, पैसे निकालते हैं, डालते हैं, चले जाते हैं, और पहले हमें इधर उधर वाउचर लेके कि भैया आप भर दो, कि भैया आप भर दो, ये रहता था।
1: तो दर्शन जी आप बैंक सखी हैं?
2: जी, हमारे गांव के समूह की महिलाएं होती हैं
1: जी,
2: जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा, उसके द्वारा लगी हुई।
1: तो दर्शन जी हमारी जो सखियां हैं आपके पास आती हैं, आप उनको किस तरह से समझाती हैं कि समूह के क्या फायदे हैं, समूह से क्यों जुड़ना चाहिए?
2: समूह से देखिए बहुत सारे फायदे हैं, अगर जो हमारी महिलाएं अपना, पहले सबसे पहले तो समूह के द्वारा आत्मनिर्भर बनना महिला के लिए
1: जी,
2: जो हमारी बेचारी अनपढ़ दीदियां हैं, कुछ काम नहीं कर पाती हैं, बेरोजगार हैं, तो उनको भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा वो स्वयं आत्म में 10 रुपए 20 रुपए जो भी कमाना चाहे अपने छोटे मोटे उद्योग करके आपस में समूह का गठन करके वो उससे चला सकती है। अकेला कोई एक इंसान काम करे तो उससे तो कुछ नहीं होगा ना, अगर वो काम 10 लोग मिलकर करेंगे तो उसमें 10 लोगों को आमदनी भी होगी और वो आत्मनिर्भर भी बनेंगी, जैसे दूसरे लोग भी उनसे कुछ सीख सके।
1: दर्शन जी आप जॉब कर रही हैं, ऑफिस और घर दोनों की ही जिम्मेदारी आप उठा रही हैं, तो ऐसे में आप फैमिली और ऑफिस दोनों में तालमेल कैसे बनाती हैं?
2: मैम, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है, घर परिवार और सबको लेकर ही चलना पड़ता है
1: जी।
2: बच्चों को भी स्कूल जा रहे हैं उनको भी देखना है, हस्बैंड घर पर उनको भी देखना है, सास ससुर है उनको भी देखना है, फिर हमारे यहाँ पशुपालन भी होता है, तो मुझे वो भी जिम्मेदारी अपनी उठानी पड़ती है। हाँ, सुबह से लेके शाम हो जाती है, पहले 11 बजे तक तो 10:30 तक का तो टाइम रहता है घर के काम के, मेरा 10:30 के बाद बैंक के लिए आना होता है, फिर जल्दी तैयार हो बैंक के लिए निकलो, फिर यहाँ से निकलने के बाद 4 बजे के बाद फिर घर में भैंस वगैरह के साथ घर का काम हो जाता है, फिर भैंसों को देखो, फिर खाना बनाओ।
1: बहुत बिजी रहती है, बहुत मेहनती है। तो दर्शन जी ऐसे में आप अपने लिए कब समय निकालती होंगी?
2: मैम, समय अपने लिए निकल ही नहीं पाता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, अगर ये सब खुश है तो हम तो पहले ही खुश हो जाते, हमारे वैसे

0: दूसरे तो खुश है।
1: बहुत बड़ी बात कही आपने कि आप दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं।
0: हाँ
1: बहुत अच्छी बात है और होना भी यही चाहिए कि जब घर वाले खुश तो हम भी खुश। लेकिन
0: यही तो,
1: जी
0: अगर
1: जी
0: परिवार अपना छोटा सा परिवार है वही खुशी नहीं रहेगा तो अब क्या करेंगे। अगर वो सब लोग खुश हैं तो हम खुश हैं। और पढ़े लिखे होने का भी कुछ मतलब होना चाहिए। जब हम अगर शिक्षित हैं तो अपने पति के साथ कुछ तो खास घर की जिम्मेदारियां बटा ही सकते हैं।
1: अपनी पढ़ाई जब की है हमने
0: हाँ
1: तो कुछ
0: कर
1: तो
0: रहे
1: करना ही
0: तो
1: चाहिए।
0: हाँ पति के साथ कंधे से कंधा मिला के चल ही सकते हैं।
1: दर्शन जी आपका ये पहले से ही शौक था कि आप इस फील्ड में जॉब करें, ऐसा कुछ सोचा था आपने?
0: हाँ शौक तो था मैम, जब पढ़ाई की थी तो माँ बाप के भी सपने होते हैं कि बच्चों को पढ़ाएं तो ये बच्चे हमारे कुछ काबिल बन जाएं।
1: जी।
0: जी ससुराल में आके थोड़ा हस्बैंड का सहयोग मिला, बोले अगर तुम्हें कुछ करना है तो आगे बढ़ सकती हो। रोक टोक
1: जी
0: नहीं की कि तुम्हें कहीं जाना नहीं है कुछ करना नहीं है। पति का पूरा सहयोग मिला इस काम के लिए। और उन्होंने जॉब के लिए पति ने ही मेरे अप्लाई किया था, मुझे बाद में पता चला था कि उन्होंने फॉर्म भर दिया है।
1: अच्छा बहुत अच्छी बात बताई, जो आपके पति आपको इतना सपोर्ट करते हैं।
0: बहुत सहयोग करते हैं
1: दर्शन जी आप आत्मनिर्भर हैं, तो हमारी बहनों से
0: जी।
1: क्या कहना चाहेंगी जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, अपना कुछ अपना रोजगार कुछ करना बनना चाहती हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी?
0: मैं यही कहना चाहूंगी मैम, पहले बात तो शिक्षा, शिक्षा बहुत
1: जी
0: जरूरी है हमारे महिलाओं को, अपनी बेटियों को या बहू
1: जी
0: है, जो ही नहीं कि बेटी है तो बेटी, अगर बहू आ रही है घर में, अगर वो कम पढ़ी लिखी है, अगर वो आगे पढ़ना चाहती है
1: जी जी
0: तो उसे आगे को पढ़ाने के लिए घर
1: उसे
0: वाले
1: पूरा
0: प्रोत्साहित
1: मौका
0: करें।
1: दें।
0: हाँ
1: जी
0: पूरा मौका दें, ये नहीं कि पीछे अरे तुम शादी होगी तुम पढ़ के क्या करोगी घर संभालो बच्चे, बस ये नहीं। अगर वो पढ़ना चाह रही है आगे बढ़ना चाह रही है तो उसे आगे बढ़ने का मौका दें, उसमें घर
1: जी
0: वाले उसका सहयोग करें
1: जी
0: जिससे
1: जी
0: वो अपने लिए आत्मनिर्भर बन सके और फिर घर वालों की वो आर्थिक रूप में कुछ मदद कर
1: सहायता भी
0: सके।
1: कर सके। जी और जो हमारी गांव में बहनें हैं पर वो बाहर निकल के जॉब नहीं कर सकती, तो उनके घर में भी कुछ ऐसे काम हैं वो जो कर सकती
0: हाँ
1: हैं?
0: मैम अब तो सरकार इतने सिलाई सेंटर है या छोटे मोटे मशरूम की खेती है
1: जी
0: और भी कई हैं, अगर महिलाएं इच्छुक हैं अपने कुछ अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं किसी की मदद ना पुरुष के साथ लिए तो वो उसमें वो कर सकती हैं और अपनी आजीविका कमा सकती हैं जिससे वो पति के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। अगर हमें 10 रुपए की जरूरत है तो हम पहले क्या करते हैं, अपने पति से ही चाहिए थे कि हमें
1: जी
0: अगर
1: जी
0: वो 10 दें या 100 दें तब वो ही हमारे पास, अगर वो अपने पास से अपना कमाएंगी तो वो उनके
1: और घर में जरूरत पड़े तब भी वो दे सकती हैं, हेल्प कर
0: दे
1: सकती
0: सकते
1: हैं।
0: हैं। हाँ जैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, अब पहले क्या
1: जी
0: होता सारा खर्चा पति के ऊपर रहता था, बच्चों से लेके घर परिवार माता पिता। अब जब पत्नी अगर कुछ करेगी तो उसमें कुछ तो आर्थिक सहायता देगी वो
1: जी जी
0: बच्चों को पढ़ाने लिखाने में या सास ससुर की सेवा करने में या अपनी कुछ इच्छाएं होती है महिलाओं की,
1: जी
0: वो भी
1: जी
0: पति के ऊपर निर्भर रहा करती थी। अब जब वो कुछ करेगी तो अपनी इच्छाएं तो कम से कम नहीं मरेंगी इसकी, उसकी वो अपने इच्छाओं को पूरा कर सकती है।
1: और आजकल तो हमारी बहनें घर बैठे कुछ अचार भी बना रही हैं, पापड़ बना रही
0: हाँ
1: हैं, सिलाई
0: हाँ
1: कढ़ाई
0: कई
1: बहुत से
0: सिलाई
1: काम हैं
0: कढ़ाई
1: ऐसे।
0: पापड़ बहुत सारे बिजनेस है मैम, जो महिलाएं चाहें तो इच्छुक हैं तो कर सकती हैं घर बैठे ही,
1: जी जी
0: जरूरी नहीं उन्हें कि बाहर निकले। और ये भी नहीं उन्हें ज्यादा शिक्षित होना भी जरूरी है,
1: जी
0: बस ये अगर वो लोग तैयार हैं तो उनकी ट्रेनिंग होगी या वो अपना काम वही घर पे ही रह के कर सकते हैं।
1: अच्छी बात बताइए आप। दर्शनपति जी आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, आपने समय निकालकर हमसे बात की और हमारी बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद मैम, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके। जो महिलाओं को बेरोजगार है कुछ कहना सुनना चाहती हैं वो आपके द्वारा समझ सकती हैं, कुछ
1: जी
0: आगे
1: जी
0: बढ़ना चाहें तो कर सकती हैं।

सखियों, स्वस्थ रहना हमारे जीवन में हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्वस्थ हैं तभी सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं तो सब कुछ बेकार है। सखियों, स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी है समय से इलाज करवाना और टीकाकरण करवाना। सखियों, हमारे घर में जो भी छोटे बच्चे हैं उनका समय से टीकाकरण ज़रूर कराएं। टीबी, पोलियो और हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए सबसे सुरक्षित और प्रभावी उपाय है जन्म के तुरंत बाद पहले 24 घंटों के अंदर बच्चों को अस्पताल में 3 अनिवार्य टीके BCG, OPV और हेपेटाइटिस भी दिए जाते हैं। सही समय पर टीके लगवाने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है और भविष्य में होने वाली बीमारियों से भी बचाता है। सखियों, जब भी स्वास्थ्य केंद्र पर टीकाकरण हो तो आप समय से अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर अपने बच्चे का टीकाकरण अवश्य कराएं। इससे आने वाले समय में बच्चे को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना हो, बच्चे स्वस्थ रहें। और हाँ, जो भी हमारी बहनें हैं गर्भवती, वो भी समय से अपना टीकाकरण अवश्य कराएं। आशा बहन जी ANM से समय से जानकारी लेती रहें और आयरन कैल्शियम की जो भी गोलियां हैं वो भी डॉक्टर की सलाह से खाती रहें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा भी स्वस्थ होगा, जब माँ और बच्चा स्वस्थ तभी हम बीमारियों से बच सकते हैं। अपने बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखिए। सखियों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, आगे आपसे और बातें करें क्योंकि प्रोग्राम का समय अब समाप्त हो रहा है। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। अपनी दोस्त प्रियंका को अनुमति दीजिए। सखियों।

प्रियंका श्रीवास्तव के साथ अभी आप सुन रहे थे नारी संसार। आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली। शाम के 6 बजने को हैं और माधुरी लोधी अपने कार्यक्रम की प्रतीक्षा में है, तो लीजिए सुनते हैं माधुरी लोधी से कार्यक्रम युववाणी।

सपनों को सच करने की बस एक पहचान रखो, मुश्किल चाहे जैसी भी हो, खुद पर विश्वास रखो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का प्रोग्राम युवावाणी में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी रेडियो दोस्त माधुरी। दोस्तों, प्रोग्राम की शुरुआत में आइए सबसे पहले जानते हैं कि आज क्या खास है। तो दोस्तों, आज है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। साथियों, इस दिवस का उद्देश्य HIV वैक्सीन की खोज करने के लिए वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रयासों को सम्मान देना है। इसके अलावा HIV के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना भी है। दोस्तों, सबसे पहली बार ये दिवस सन 1998 में मनाया गया था और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों, वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के भाषण से हुई थी। साथियों, HIV एड्स एक गंभीर बीमारी है और एक बड़ी चुनौती है। हालांकि इसके इलाज और दवाओं में काफ़ी सुधार हुआ है, लेकिन वैक्सीन का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी बातें इस दिवस की, और अब सुनते हैं धूम धड़ाका में ये प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों आज के समय में सभी युवा अपने इंटरेस्ट और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कोर्सेज कर रहे हैं और इसी क्रम में आज हमने बातचीत की है एक युवा छात्रा से जो BMS कोर्स से जुड़ी हैं। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। आपका नाम?
1: अर्पिता पाठक।
0: जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या करती हैं?
1: मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ, मैं BMS कोर्स कर रही हूँ अभी।
0: जी, क्या होता है इस कोर्स में?
1: इस कोर्स में बिजनेस मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है।
0: जी, तो आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं या फिर और कोई सपना है आपका?
1: नहीं, मुझे इसी फील्ड में आगे बढ़ना है। इस फील्ड में काफी चीजें जानने के बारे पता चलती हैं हमें। अब इकोनॉमी के बारे में पता चलता है और बिजनेस वगैरह के बारे में पता चलता है कि हम सोसाइटी में कैसे रह सकते हैं, और कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमारी बेटर होती हैं बहुत इससे।
0: अच्छा, अगर कोई हमारा युवा साथी है और इस कोर्स में आना चाहता है तो कैसे आ सकता है?
1: इस कोर्स के लिए उसको 12th पास होना चाहिए और वो किसी भी स्ट्रीम से उसका 12th होना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम का बच्चा ये कोर्स कर सकता है और उसको इंटरेस्ट होना चाहिए इस सब में। और ये एक प्रोफेशनल कोर्स है तो थोड़ी उसकी इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए। अगर ये अच्छी जगह से करना चाहे तो ये हमारे यहाँ पे जो रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है वहाँ से भी कर सकते हैं, जहाँ पे अच्छे टीचर्स वगैरह भी प्रोवाइड होते हैं, वहाँ से करने में ज़्यादा बेटर रहेगा ये कोर्स।
0: जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है। जी, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर ये कोर्स कर लिया जाता है तो करियर की क्या-क्या संभावनाएं रहती हैं?
1: ये कोर्स करने के बाद अगर आपको और आगे बढ़ना है तो आप MBA करके कहीं पे भी मैनेजर वगैरह या अच्छी पोस्ट पे जाके कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ BMS करने के बाद किसी अच्छी कंपनी में ही जॉब करनी है तो वहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और यूनिवर्सिटी वाले कंपनीज वगैरह भी लाते हैं जो हमें हायर करने के लिए आती हैं, तो इससे किसी भी अच्छी कंपनी में हम जॉब कर सकते हैं जहाँ पे हाई पैकेज पे हमें वो लोग रख सकते हैं अपने पास।
0: जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो आपकी हॉबीज क्या-क्या हैं?
1: मेरी हॉबीज वैसे तो कुकिंग है, टीचिंग भी है और डांसिंग भी है।
0: जी, आपने बताया डांसिंग आपकी हॉबी है, तो आपको कौन सा डांस अच्छा लगता है, जैसे क्लासिकल डांस है या कोई और तरीके का?

0: डांस।
1: क्लासिकल डांस ज्यादा बेटर रहता है।
0: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप पढ़ाई भी कर रही हैं, उसके साथ साथ डांसिंग से भी जुड़ी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे जो युवा साथी है सोशल मीडिया में ज्यादा लगे रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे ऐसे युवा साथियों को?
1: सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास हॉबीज अच्छी हैं, तो आपको वो बहुत फायदा दे सकता है। लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ के सिर्फ अगर इसी पे ही ध्यान देते हैं तो वो चीज़ भी ठीक नहीं है ज्यादा। कि अगर आपको सिर्फ एज अ हॉबी के लिए सोशल मीडिया को यूज करना है या फिर अपनी पढ़ाई से रिलेटेड ऐसे यूज करना है तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अब आप ये सोचें कि आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल छोड़ के सिर्फ इंटरनेट पे ही रहें तो वो भी इतना अच्छा नहीं रहता है। वो एक साइड हॉबी के एज उससे हम कर सकते हैं कि हम अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो चीज कर लें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पढ़ाई छोड़ के सिर्फ अपना इंटरनेट पे ही रहें पूरे टाइम, तो वो चीज हमारे लिए अच्छी नहीं रहेगी।
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें आपने की हैं और उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी समझ में आएंगी और पसंद भी आएंगी। तो और ऐसी कोई बात या ऐसा कोई मैसेज जो आप देना चाहें?
1: जिनका 12th हो चुका है तो वो अपने इन फ्यूचर के लिए अच्छा बनाकर रखें, और जिनका 12th नहीं हुआ है तो वो अभी इंटरनेट वगैरह पे ज्यादा फोकस ना करके सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें ताकि उनकी आगे का जो भी होगा तो वो अच्छे से ही जाए। क्योंकि इंटरनेट तो वो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं, पहले हमारी पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है तो उस पर ज्यादा अच्छे से ध्यान दें वो लोग अभी।
0: कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और आकाशवाणी बरेली से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: तो अभी आपने सुनी ये बातचीत और अब सुनते हैं धूम धड़ाका में ये गीत।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: दोस्तों आज इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी है। दोस्तों इस दिन का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत, कला और इतिहास के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथियों इस दिन दुनिया भर के म्यूजियम्स में स्पेशल प्रोग्राम्स का आयोजन किया जाता है। और दोस्तों हम आपको बता दें कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे की शुरुआत सन 1977 में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद द्वारा की गई थी। दोस्तों म्यूजियम केवल पुरानी चीजों को सहेजने की जगह नहीं है, बल्कि ये हमारी सभ्यता, विज्ञान, कला, परंपराओं को जानने में हमारी आपकी हेल्प करते हैं। दोस्तों हमारे देश भारत में राष्ट्रीय संग्रहालय, सालार जंग म्यूजियम, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय फेमस म्यूजियम्स हैं। तो ये थी बातें म्यूजियम्स की, और अब सुनते हैं धूम धड़ाका में ये सॉन्ग।

दोस्तों अब बारी है आज के सवाल की। हमने आपसे पूछा था कि लोनार झील किस राज्य में है, तो इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। और सही जवाब देने वाले हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र छीपा, डॉन डिकेस्ट्रो, सुदर्शन शाह, हीरामणि वर्मा, नरेन नेताम, लाल मोहम्मद अंसारी, नवी हसन अब्बासी, बवलेश पवार, लालगिरी गोस्वामी, डी के आर मैथिल, राजकुमार, पी एस नाहौकर और हमारे अन्य सभी श्रोता। तो ये था सवाल और जवाब। और अब सुनते हैं मीरगंज बरेली से विघ्नेश ठाकुर, विवेक ठाकुर, अभय, रिया और दिव्यांशी ठाकुर की फरमाइश पर धूम धड़ाका में प्रोग्राम की इस आखिरी पेशकश को।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी आकाशवाणी का, ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। समय मिला ये शाम के 6:30 और 30 सेकंड हुए हैं। तो लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सभी श्रोताओं को आपके भैया कन्हैया की ओर से राम राम। श्रोताओं, आज हम आपको मनपसंद कार्यक्रम लेकर के आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे स्वास्थ्य का रखें ध्यान, और साथ ही क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता में लेकर चलेंगे आपको आज कियारा ब्लॉक में डॉक्टर दिव्या चौहान, जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनके पास। साथ ही आपको दिलवाएंगे इनसे जानकारी पॉली पशु चिकित्सालय से पशुपालकों को सुविधाएं इस विषय पर, और होयो भैया आपके लिए मनोरंजन के लिए थोड़ो गौनी बजनी। तो जतो ही अपनी कार्यक्रम की संक्षिप्त रूपरेखा और बात करें स्वास्थ्य की, तो भैया स्वास्थ्य एक ऐसा पहलू है जो हमारे लिए अपने आप के लिए बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी बहुत भी लापरवाही हम कर देते हैं तो भैया हमारे जो काम काज हैं, जो हमारी दिनचर्या है, वो प्रभावित हो जाते हैं। और स्वास्थ्य को ध्यान रखने से मतलब यह ना है कि हम कोई बीमार अगर हैं तभी ध्यान रखें, ना भैया, देखो कहीं आ जा रहे हो, गर्मी को मौसम है, ऐसे में हूँ अपने आप को संभाल के बाहर ले करने की ज़रूरत है। अब भैया संभाल के जब कह दी तो बहुत सारे सवाल आपके मन में कौनन लगे होंगे कि संभाल के हम कैसे रखें, बाहर निकलें, कौन कौन सी बातन को ध्यान में रखें। तो देखो भैया, इस समय गर्मी के मौसम में अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो पूरे कपड़ा पहन के निकलें, थोड़े हल्के नमीदार कपड़ा अगर दोपहर में जा रहे हैं कहीं तब पहन के निकलें, और साथ ही कोई काम अगर ज़्यादा ज़रूरत को ना है तो दोपहर के समय में कतई ना जाए। सुबह शाम वो समय होता है जिसमें धूप जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, उसमें आप अपने खेती बाड़ी के कामकाज, घर के कामकाज आसानी से निपटा सकते हो। और साथ ही साथ खान पान में भी हमें विशेष ध्यान रखनी है, गर्मी के समय में पानी को ज़्यादा सेवन करें, हल्की चीज़ें खाएं, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य जो है वो कम प्रभावित होगा। और जो गर्मी के कारण हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, बाव की हम पूर्ति आसानी से कर पाएंगे। और जाके अलावा भैया, बात जब चलिए रही है तो क्यों ना अब जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर दिव्या चौहान जी, आपको बता रही हैं पाली पशु चिकित्सालय से जो कृषकों को सुविधाएं दी जाती हैं, तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं,
1: अपने सुनने वालों के लिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपका परिचय।
2: मेरा नाम डॉक्टर दिव्या चौहान है, मैं पशु चिकित्सा अधिकारी गवर्नमेंट वेटनरी पॉलीक्लिनिक कियारा में कार्यरत हूँ।
1: आप यहाँ कियारा में पॉली क्लिनिक पर कार्यरत हैं, हम अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे ये पॉली क्लिनिक जो है, क्लिनिक तो हमारे श्रोताओं ने सुना है, चिकित्सालय सुना है, लेकिन ये पॉली क्लिनिक क्या है?
2: पॉली क्लिनिक एक ऐसा संस्थान है जो कि मंडलीय लेवल पर है। यहाँ पे हम पशुपालकों को चिकित्सा रिलेटेड और जांच संबंधित सुविधाएं प्रदान करते हैं। हमारा प्रयास यही है कि जितना हम जांच कर पाए और उसी के अकॉर्डिंग सटीक दवाई दे पाए, ताकि पशु जल्दी और सही तरीके से सही हो जाए।
1: आपने कहा था कि यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो जैसे पुरुष होते हैं उनकी भी जाँच होती है, और हमारे कृषक साथी जो है वो ज्यादातर गाँव में किसी भी समस्या से उनका पशु जूझ रहा हो, कोई भी दिक्कत हो, तो ऐसी प्राथमिक उपचार के लिए ले जाते हैं और दवा दिला देते हैं। यहाँ आपने कहा कि जांच, तो क्या जैसे मनुष्य की जांच होती है उसी तरीके से क्या पशुओं की भी जांच होती है, और किस किस तरीके से कौन कौन सी जांचें होती हैं?
2: पशुओं में हम रक्त की जाँच करते हैं, गोबर की जाँच करते हैं, स्किन की जाँच करते हैं, और जो डिफरेंट ऑर्गन से संबंधित जाँचें हैं, जैसे

0: लिवर की जांच हो गई, गुर्दे की जांच हो गई, खून की जांच हो गई, ये सारी जांचें हम यहाँ करते हैं।
1: अगर कहें तो एक पुरुष की तरह ही पूरी जांचें पशुओं की भी यहाँ पर उपलब्ध हैं।
0: जी
1: इस समय जांच और बीमारी के उपचार का सिलसिला चल रहा है। भाई आने वाले समय में जो हमारे पशुपालक कृषक साथी हैं गांव में पशुपालन कर रहे हैं, आगे बारिश का समय आएगा और इस समय में हम आपसे जानना चाहेंगे, अभी तो देखो तेज धूप और गर्मी पड़ रही है, तो बारिश आए उससे पहले और ये गर्मी के समय में उन्हें खासकर किन किन चीजों का विशेष रूप से अपने पशुपालन में जो है इस समय ध्यान रखना है?
0: पशुपालकों को बारिश से पहले ध्यान रखना है कि उनके जहाँ पे वो बांधे जाते हैं वहाँ पे साफ सफाई का एक विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर यदि साफ सफाई नहीं रहेगी तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांस पड़ेगा। दूसरा,
1: अच्छा
0: साफ सफाई नहीं रहेगी तो किलनियाँ भी हो जाती हैं, क्योंकि अंडे जो होते हैं वो मिट्टी में ही होते हैं और वहाँ से जब अंडे प्रजनन करते हैं, जब ग्रो करते हैं, तब वो किलनियों के रूप में आते हैं।
1: जी
0: वो किलनियाँ कई तरीके की हीमोप्रोटोजोन इन्फेक्शंस करती हैं, जैसे हम बबेशिया कहते हैं, थायलेरिया करते हैं, अनेप्लाज्मा कहते हैं, और ये बीमारियाँ बहुत ही जानलेवा होती है। यदि एक बार पशु को ये बीमारी हो जाती है तो सही उपचार ना ही मिले, अगर डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाए तो पशु के मरने के भी चांस बढ़ जाते हैं, तो इसका इलाज कराना अनिवार्य होता है।
1: अच्छा ये जो बीमारियां आपने बताई कि ये बहुत ही भयानक बीमारियां होती हैं और जो पशु में लग जाती हैं उसके बचने के चांस बहुत कम रहते हैं, तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे इसके लक्षण क्या होते हैं और किस तरीके से हमारे जो श्रोता हैं आपकी बातचीत को हमारे इस कार्यक्रम ग्राम जगत के माध्यम से सुन रहे हैं वो पहचान सकते हैं?
0: सबसे पहले बारिश के मौसम में होने वाली जो सबसे खतरनाक बीमारी होती है, जिसमें हमें समय भी नहीं मिल पाता है सही से, वो होती है HS, जिसे हम कहते हैं हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, और जनरल भाषा में हम उसको गला घोटू बीमारी कहते हैं।
1: जी
0: ये श्वास की बीमारी होती है, इसमें पशु को सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत होती है। कभी कभी बीमारी इतनी घातक होती है कि हमें कुछ चंद समय का भी टाइम नहीं मिल पाता है, उतने में ही पशु मर जाता है। हमें सिम्टम भी नहीं दिख पाते हैं, अचानक
1: जी
0: खड़ा हुआ पशु होगा और वो अचानक से कोलैप्स कर जाएगा।
1: ठीक
0: पर एक्यूट फेज के अलावा अगर एक्यूट कंडीशन होती है जिसमें हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, तो इसमें सांस लेने में दिक्कत होगी, पशु मुंह खोल के सांस लेगा, तेज बुखार आएगा, नाक में से पानी आएगा, कभी कभी खांसी भी आती है, गर्दन के नीचे सूजन आ जाती है, पानी भरने लगता है।
1: जी
0: ये बीमारी का सही समय पर सही इलाज हो जाए तभी पशु बच पाता है, वरना इसका इलाज अगर सही समय पर ना हो पाए तो पशु नहीं बच पाता है। इसके अलावा जो बीमारियां होती हैं, जब बारिश के मौसम में किलनियां होती हैं तब कई बीमारियां होती हैं, जैसे बबेशिया। बबेशिया में क्या होता है कि जब जो रक्त होती है वो टूटने लगती है, कुछ
1: जी
0: रक्त की कोशिका जब टूटती है तब पीलिया की समस्या, जॉन्डिस की समस्या जिसे हम कहते हैं, वो बनने लगती है।
1: ठीक
0: लाल रंग का या कॉफी रंग का पेशाब आने लगता है, पशु बहुत ही डल हो जाता है, बुखार बहुत तेज होता है और वो रुक रुक के बुखार आता है, जिसे हम कहते हैं इंटरमिटेंट फीवर।
1: जी
0: तो वो बुखार की वजह से पशु चारा खाना छोड़ देता है और बहुत कभी कभी जो गोबर भी होता है वो भी काला आने लगता है,
1: अच्छा
0: तो उस समस्या में सटीक इलाज जरूरी है। उसके अलावा थायलेरिया बीमारी होती है, ये भी किलनियों की वजह से होती है,
1: जी
0: इसमें भी खून की कमी हो जाती है, काले रंग का गोबर आता है, उसका एक ही इंजेक्शन होता है, यदि आप जांच कराएंगे तो वो तुरंत पता चल जाता है और उसका इलाज सटीक कराने से पशु रिकवर कर जाता है। तो बेसिकली मेरा कहना यही है कि यदि किलनी की समस्या को हम दूर रखेंगे, हर
1: जी
0: हफ्ते किलनी का एक इंजेक्शन लगाएंगे बारिश से पहले, तो ये किलनी नहीं हो पाएंगी, जिससे क्या होगा कि जो बीमारियां जो किलनी की वजह से होती है वो भी नहीं होंगी और पशु सेफ रहेंगे।
1: जानना चाहेंगे आपसे, यहाँ पर जो किलनी की समस्या है वो खासकर अभी गर्मी के समय में
0: जी
1: होती है, फिर सर्दी जब बढ़ती है पशुशाला में तब
0: जी
1: ज़्यादा होती है,
0: जी
1: तो इसके उपचार के लिए जैसे आपने बताया कि उसका जो है इंजेक्शन लगवाएं और समय से अगर लगवाएंगे तो ये नहीं होगी,
0: जी
1: लेकिन दो तरीके के पशु होते हैं हमारे किसान साथियों के पास, एक तो खाली पशु जो होते हैं उनके लगा सकते हैं, कुछ ज्ञावन पशु होते हैं,
0: जी
1: तो इनमें लगाने का तरीका कोई भिन्न होता है जो इंजेक्शन आपने बताया किलनी वाला?
0: नहीं, ये जो किलनी वाला इंजेक्शन होता है ये सभी पशुओं में सेफ होता है, चाहे वो प्रेग्नेंट पशु हो चाहे वो खाली पशु हो,
1: अच्छा
0: दोनों में ही सेफ होता है। बस ये है, अगर खाली है तो हम और तरीके के पोरॉन्स प्रिपरेशंस भी आते हैं जो रीढ़ की हड्डी में लगाए जाते हैं,
1: जी
0: वो प्रिपरेशंस भी हम लगा सकते हैं जो कि हम प्रेगनेंसी में थोड़ा अवॉइड करते हैं। उसके अलावा जैसे आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन होता है जो बहुत ही कॉमनली हम यूज कर रहे हैं, वो इंजेक्शन हम गाभिन पशु में भी लगा सकते हैं और जो गाभिन नहीं है उसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन ये खुद से ना लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि कई कई कंडीशंस होती हैं जहाँ पे इसको लगाना थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाता है, बुखार में नहीं लगाना चाहिए, तो
1: जी
0: खुद से स्वयं इसको ना लगाएं और खाल में ही लगाया जाता है, कुछ लोग इसको मांस में भी लगा देते तो घातक हो जाता है इंजेक्शन,
1: अच्छा
0: जहर बन जाता है इस
1: जी
0: इंजेक्शन को, तो
1: जी
0: पशु चिकित्सा के परामर्श अनुसार ही इसको लगाया जाए।
1: जी
0: जी
1: यहाँ पर जानना चाहेंगे, आपने बताया था कि गला घोटू बीमारी होती है और किलनी की भी बीमारी और बहुत सारी बीमारियाँ जो होती
0: जी
1: हैं बारिश के समय जन्म लेती हैं, कोई बीमारी हो उससे पहले।

0: अगर उसका उपचार कर लिया जाए तो ये बीमारी आएगी ही नहीं। ऐसी कोई विधि या तरीका है जिससे कि गला घोटू है, किलनी है और जो बारिश में होने वाली बीमारियां हैं वो किसान साथियों के पशुओं में हो ही ना, इसके लिए कोई उपचार विधि
1: जी
0: है
1: जी
0: क्या?
1: इसको रोकने के लिए वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। जैसे HS का वैक्सीनेशन कराया जाता है, वो साल में एक बार होता है बारिश से पहले, तो
0: जी
1: उसका वैक्सीन लगवाया। सरकार द्वारा ये वैक्सीन उपलब्ध है, पशुपालकों से निवेदन है कि ये रेगुलर, ये हर बारिश से पहले ये कराएं। उसके
0: जी
1: अलावा जो खुरपका मुंहपका बीमारी होती है, इस बीमारी का भी वैक्सीनेशन कराएं, इसके भी वैक्सीन अवेलेबल हैं। ये तो बड़े जानवर की बीमारी होगी, छोटे जानवरों का भी बहुत ही कॉमन इन्फेक्शन है जो बारिश के टाइम पे या सर्दी के टाइम पे देखने को मिलता है, वो होता है PPRP।
0: जी
1: PPR की वैक्सीन भी सरकार द्वारा उपलब्ध है, ये वैक्सीन भी लगवाएं तो ताकि ये बीमारी होने से रोकी जा सके। यदि एक बार ये बीमारी हो जाए तो इसको सही करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अगर
0: जी
1: वैक्सीन लगवा लेंगे तो ये होगी ही नहीं।
0: डॉक्टर दिव्या चौहान जी, आप पशु पॉली क्लिनिक क्यारा पर हैं और जितनी सुविधाएं यहाँ से मिलती हैं कृषक साथियों के पशुओं के लिए, किस किस तरीके की जांच वो यहाँ करा सकते हैं और बेहतर उपचार किया करा सकते हैं, इसके बारे में बताया आपने। वहीं आपने अभी जिक्र किया था सरकार का, तो हम आपसे जान लेते हैं सरकार के माध्यम से हमारे पशुपालक कृषक साथियों के लिए क्या कुछ योजनाओं का भी संचालन हो रहा है जिससे हमारे कृषक साथी लेकर के लाभान्वित हो सकते हैं।
1: जी, सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सर्वप्रथम है हमारी सहभागिता योजना, जिसमें गौशाला से, यदि गौशाला से कोई गाय लेता है सहभागिता में, तो उसे पर महीना 1500 रुपये उस गाय के पालन पोषण के लिए मिलता है।
0: जी
1: तो एक तो योजना ये, उसके अलावा सेक्स ऑडिट AI की योजना है, जिसमें अगर AI कराया जाए, यानी कि कृत्रिम गर्भाधान कराया जाए, तो यह चांस रहता है कि 99% फीमेल काफ ही बॉर्न हो।
0: जी
1: फीमेल का बॉर्न होने से फायदा यह है, जैसे हम नॉर्मल सांड से AI कराते हैं तो उसमें चांस ये रहता है, कृत्रिम गर्भाधान अगर यदि हम कराते हैं तो उसमें ये चांस रहता है कि एक तो सांड से कराएंगे तो एक इन्फेक्शन का चांस रहता है,
0: जी
1: और दूसरा इसमें मेल बछड़ा भी पैदा हो सकता है और फीमेल भी।
0: जी
1: तो यदि हम सेक्स सॉर्टेड कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं, AI करवाते हैं, तो उससे फीमेल बछड़ा होने का चांस बढ़ जाता है, ताकि जिससे दुग्ध उत्पादन और प्रोडक्शन में पशुपालक को फायदा मिलता है।
0: जी
1: तीसरी है पशुधन बीमा योजना। इस बीमा योजना के अंतर्गत यदि पशुपालक बीमा करा लेते हैं, तो यदि पशु को कुछ होता है, जैसे या वो टोटल डिसेबिलिटी में आ जाए, यानी कि वो किसी दूध देने लायक ना रह जाए, या उसे कोई ऐसी इंजरी हो जाए, ऐसा घाव हो जाए जिससे वो रिकवर ना कर पाए,
0: जी
1: उस केस में बीमा यदि पशुपालक ने कराया होता है तो उसको उसका सुविधा मिल जाती है।
0: जी डॉक्टर दिव्या चौहान जी, आपने बताया कि ये जो योजनाएं हैं जो सरकार के माध्यम से कृषक पशुपालक साथियों के लिए चलाई जा रही हैं, तो इनको लेने के लिए जो हमारे कृषक पशुपालक साथी हैं वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं, किस माध्यम से उनको ये योजनाएं मिल सकती हैं?
1: इन योजनाओं को लेने के लिए पशुपालक अपने निकटतम पशु चिकित्सालय पर संपर्क कर सकते हैं।
0: आपने बहुत अच्छा परामर्श दिया, लेकिन चलते चलते अपने श्रोताओं के लिए आपकी जुबानी ये भी जानना चाहेंगे, बारिश का मौसम आ रहा है तो हमारे जो पशुपालक कृषक साथी हैं उनके लिए बारिश के मौसम में उन्हें क्या देखरेख करनी चाहिए, क्या करें वो, क्या सलाह देंगी आप?
1: बारिश आने से पहले पशुपालक वैक्सीनेशन का सर्वप्रथम ध्यान रखें, क्योंकि यदि वैक्सीन करवा देंगे तो ये कोई भी बीमारी नहीं होगी, बीमारी से बचे रहेंगे, पशुपालकों को नुकसान नहीं होगा और पशु भी स्वस्थ बने रहेंगे।
0: जी
1: दूसरा, साफ चारे और साफ पानी की सुविधा हमेशा उपलब्ध रखें। बारिश के मौसम में चारे में फंगस लगने का चांस बढ़ जाता है, जिससे एनिमल्स पशुओं में फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं,
0: जी
1: तो ये ध्यान रखें कि फंगल इन्फेक्शन ना हो पाए और साफ चारा ही प्रोवाइड करें। चारे को गीला मत होने दीजिए, चारे को बारिश के संपर्क में ना आने दें,
0: ठीक
1: साफ पानी प्रोवाइड करें। बारिश के समय में एल्गी भी हो जाती है पानी में, तो जहाँ पे जो पानी की नांद होती है उसकी सफाई रेगुलर करते रहें,
0: ठीक
1: और पशुओं को बारिश में भीगने ना दें।
0: ठीक डॉक्टर दिव्या चौहान जी, आपके माध्यम से हमारे आज के कार्यक्रम ग्राम जगत में श्रोता जान पाए कि जो पशु हैं उनको हमें किस तरीके से स्वस्थ रखना है, गर्मी और बारिश के मौसम में किस तरीके से उनकी देखभाल करनी है। इतनी अमूल्य विचार हमारे श्रोताओं के बीच में रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अभी आप जान पाए डॉक्टर दिव्या चौहान से, जो हमारा पॉली पशु चिकित्सालय है उसके माध्यम से जो हमारे कृषक पशुपालक हैं उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, और ख़ासकर इस गर्मी के मौसम में और आने वाले बरसात के मौसम में हमारे जो किसान साथी हैं अपने पशुओं की देखभाल किस तरीके से कर सकते हैं और किन किन बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अब बातचीत तो आपसे करें उससे पहले
2: भैया थोड़ी आपको शारीरिक और मानसिक

श्रोताओ, हमें उम्मीद है कि आपकी मानसिक और शारीरिक थकान थोड़ी भैया दूर रह गई होगी, क्योंकि अब हमने आपको मनोरंजन कराया दो और बातचीत हम आपसे शुरू करें बा से पहले आप सुन लेते हैं जो संदेश।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धन राशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: श्रोताओ, हम आपसे बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य का रखें ध्यान। तो स्वास्थ्य को मतलब जो कतई ना है कि केवल बीमारियां से हमें बचने हैं, बल्कि शारीरिक और मानसिक और सामाजिक जो रूप से पूरी तरीका से हमें भैया स्वस्थ रहने हैं। और जैसे हम पहले कही है चुके हैं, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाए करके, और जहाँ हम कहें कि उनमें पूरी तरीका से जो ऊर्जावान व्यक्ति होते वह भैया स्वस्थ व्यक्ति कहो जा सकते हैं। और जाके लिए भैया हम हर रोज़ अपने भोजन में जो मौसमी फल हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, ये सब ले सकते हैं। और अपनी दिनचर्या की अगर बात करें तो भैया इसमें कम से कम 30-40 मिनट तक हमें रोज़ाना व्यायाम या एक्टिविटी करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर को भैया जो संचार है नलिन को वो सही से चल पाएगा और हमारे शरीर की जो रक्त नलियां हैं वो ठीक से काम कर पाएंगी। और बातचीत आपसे और करें बात से पहले भैया हमारी सोशल मीडिया कमेंट्स के माध्यम से जो श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं और अपनी फरमाइश लिख करके हम तक भेज रहे हैं, अगलो लोकगीत सुनने के लिए तो बहन के लिए हम बता दें आपके लिए कि जिन श्रोता ने हमें लिख करके हम तक भेजो है और सुनना चाह रहे हैं भैया ओम प्रकाश व साथियों की आवाज़ में अगले लोकगीत की फरमाइश इनने हमसे करी है। तो आप हैं मारहरा दरवाज़ा एटा से लिख रहे हैं नबी हसन अब्बासी, सहनाज, नावेद रशीद, अमन, यसफ और सुहेल हसन अब्बासी, आप हमें लिख करके भेज रहे हैं। राम कुमार रेवार और साथी कटरा चांद खां मौर्य मंदिर पुराना शहर बरेली से, अनोखे लाल मौर्य, सुंदर, प्रकाश, रिंकी, कपिल, बेदराम और समस्त इनके परिवारीगण। तो इसी लोकगीत के लिए लिख रहे हैं हमें ताज अंसारी और इनके समस्त परिवारीगण, आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। तो आप सभी श्रोताओं की पसंद पर सुन लेते हैं जो ओम प्रकाश व साथियन की आवाज़ में राजा नल।
3: हाल बता मैं तुम्हें समझा मैं, ए भैया ध्यान देन की बात, अब पवन खटोला उड़ो है आसमान में, तो खटोला आसमान में।

मेरे प्यारे भाई और राजा प्रथम और मंझावती दोनों ही प्राणी अपने पुत्र राजा नल का इंतजार कर रहे थे। इतने में मैना मनसुख राजा नल मोतनी शरवती हीरा तमोलिन सहित सभी प्राणी वहाँ पर उपस्थित जब हो जाते हैं

प्रकार वहाँ पर जब सब सबसे मिले तो राजा प्रथम ने कहा कि आए मेरे लाल नल, अब हमारा अंत समय है। मेरे मन की ये अभिलाषा है कि एक समय जब तुम बाली उम्र के थे, दर्शनपुर में लच्छू सेठ के यहाँ जब तुम्हारा गुजारा हो रहा था, उस समय तुम 11 वर्ष की उम्र में हमारे ही वन में यानी हमारे ही जंगल में लड़ने के लिए जब तुम हमारे पास पहुंचे, तो उस समय मैंने तो मेरे लाल तुम पर वार कर दिया, तुमने मेरे पर वार नहीं किया था। आज वो कर्ज अपना चुका लो, एवज जो तुम्हारा है वो अपना पूरा कर लो, ताकि ये मेरे दिल में अरमान ना बाकी रह जाए। जब ऐसा राजा प्रथम ने कहा तो राजा नल ने सोचा कि अगरचे मैं वार करूंगा, मैं देवों का वरदानी हूँ, मेरा वार खाली नहीं जाएगा, हो सकता है कि पिता की मृत्यु हो जाए। ऐसा मन में विचार करके वो कहते हैं, नहीं पिताजी सुनो,

तो देखो भैया, आज गौनइयो बजनई काफ़ी हुई गई और धीरे धीरे समयो बिल्कुल समाप्ति की ओर पहुंच गो। सामने दीवार में लगी घड़ी हमें इशारों कर रही कि अब आपसे यहीं पर विदा लेने होगी, लेकिन जब आधे के साथ में कि अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, एक नए विषय के साथ, एक नई जानकारी को लेकर के आपके बीच में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने भैया कन्हैया को यहीं पर कार्यक्रम ग्राम जगत से अनुमति दीजिए। श्रोताओं।

समय मिलाइए, शाम के 7 बजे हैं और अब लेकर उपस्थित हुए हैं हम कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम सुगम संगीत की पहली प्रस्तुति जगजीत सिंह की आवाज में इस गजल के साथ, होठों से छू लो तुम।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से। जगजीत सिंह की आवाज में इस गजल के बाद लीजिए अब अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज में ये गजल।

सादगी श्रृंगार हो गई, आईनु की हार हो गई। इस गजल के बाद अगली जो गजल है चंदन दास की आवाज में, आपके दिल में क्या है बता दीजिए।

चंदनदास की इस खूबसूरत गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत यहीं तक। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। समय मिला ये 7:15 और 25 सेकंड। श्रोताओं, रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। स्वास्थ्य विषय पर होने वाले फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में बुधवार दिनांक 20 मई 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे मंगलवार दिनांक 19 मई 2026 को शाम 4 बजे से। तो इस संबंध में यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 2517200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में गंगाचरण अस्पताल बरेली के डॉक्टर प्रेम कुमार झा उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय है गुर्दे की डायलिसिस कब और क्यों। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखेगा मंगलवार दिनांक 19 मई 2026 को शाम 4 बजे से। हमारा टेलीफोन नंबर है 2517200।

0: यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित अपने गंतव्य क्षेत्र तक पहुंचें। दोपहिया वाहन पर हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। हमेशा याद रखें, दुर्घटना से देर भली। वाहन चलाते समय अपने वाहन की गति को नियंत्रित रखें। अपने और अपने से आगे वाहन के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखें। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब से कुछ ही देर में होंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से
1: खेती किसानी कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सुगंध, क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे।
4: पिन दे।
5: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
7: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें। 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया ना किड बैग।
8: RBI कहता है
9: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
10: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
11: बेटा
10: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
11: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
12: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
11: चलो
10: कहाँ?
11: एडमिशन कराने।
12: खाता हुआ एक्टिव।
5: RBI कहता है
8: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: ये कहानी है एक फोटो

0: फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
5: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आप सब लोग जानते हैं बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
4: वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। इनमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। श्री खन्ना ने कहा कि केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से बसंत कुंज तक के पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी।
6: परिषद के दिनांक 5/3/24 को संपन्न बैठक में लखनऊ मेट्रो परियोजना फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर DPR पर माननीय मंत्री परिषद द्वारा अनुमोदन पहले प्रदान किया गया। ये खास तौर से इसी सरकार संबंध में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चारबाग से बसंत कुंज परियोजना की अनुमोदित लागत 5,801.05 करोड़ रुपए पर सहमति प्रदान की गई। इसमें 50-50% हिस्सा है भारत सरकार, 50% राज्य सरकार।
4: बैठक में मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपये प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपये की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। परिणामस्वरूप आज प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
7: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।

प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल शाम मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया गया। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्रियों में भूपेन्द्र चौधरी को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सौंपा गया है, वहीं मनोज कुमार पांडे को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग आवंटित किया गया है। सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के रूप में पदोन्नत किए गए अजीत पाल सिंह को राजनीतिक पेंशन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग दिया है, जबकि सोमेन्द्र तोमर को सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षा दल विभाग सौंपा गया है। चार नवनियुक्त राज्य मंत्रियों में कृष्णा पासवान को पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग, सुरेंद्र दिलेर को राजस्व विभाग, हंसराज विश्वकर्मा को लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय और कैलाश राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है।

0: राजपूत को ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग सौंपा गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज वाराणसी में जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने देश में पेट्रोल, पीएनजी और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक घरों तक पीएनजी सुविधा पहुंचाना है।
1: भारत एक ऐसा देश है विश्व भर में जिसमें ना कच्चे तेल की, ना पाइप नेचुरल गैस की, ना एलपीजी की कोई कमी हमने होने दी। एक हमने जो बहुत कोशिश की है काशी में, हम ये चाह रहे हैं जो एलपीजी कनेक्शन थे उसको ज्यादा तेजी से पाइप गैस में कन्वर्ट किया जाए। उससे सुविधा लाभार्थियों को भी होगी। एक तो पाइप गैस ज्यादा एफिशिएंट है, उस सस्ती भी है।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के कारण आयात में बाधा के बावजूद देश में रिफाइनरियां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। आज नई दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
2: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंटरीज हैं। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल ने अपने क्षेत्रवासियों से आग्रह किया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के अनुसार डीजल, पेट्रोल के न्यूनतम प्रयोग के साथ साथ सोने की खरीद से बचें। देश भर में ईद उल अजहा यानी बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। कल देश में कहीं से भी चांद दिखने की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद लखनऊ स्थित मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद और शिया मरकजी चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। लखीमपुर खीरी में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। ट्रक चालक हादसे के बाद घटनास्थल से फरार हो गया। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है। साथ ही दोनों ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। बीते 24 घंटों में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश में सर्वाधिक गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने को कहा है। साथ ही सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। श्री योगी ने सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था और बिजली आपूर्ति बाधित न होने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी और लू के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ समेत आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में यूपी ट्रिपल एससी 2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। कहा, प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनाने में युवाओं की अहम भूमिका। लखीमपुर खीरी में सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी। मौसम विभाग ने 22 मई तक अधिकांश जिलों में लू चलने का

0: किया ऑरेंज अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
4: को तुमने इसे मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना?
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
9: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, अब कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
8: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है?
9: कहाँ से पता चलेगा?
8: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉग इन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
5: आज ही सर्च करूंगा।
8: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
7: RBI कहता है
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
7: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट,
11: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ। समय

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 एफएम पर। और अब जिस कार्यक्रम का आप कर रहे थे बेसब्री से इंतजार, जिस कार्यक्रम के लिए आप लिखते हैं पत्र हजार, उस कार्यक्रम को लेकर हम हाजिर हुए हैं जिसका नाम है अनुरोध गीत। इस कार्यक्रम में हम शामिल करते हैं आपके पत्रों को और उसके आधार पर आपके फरमाइशी गीतों को। तो लीजिए कार्यक्रम के सबसे पहले श्रोता कौन बने हैं जिनका सबसे पहला पत्र इस कार्यक्रम में शामिल हुआ है। आप हैं मनकारा मंदिर बीटीए कॉलोनी करगना बरेली से, पन्नीलाल सागर, वेनी सिंह, मासूम, धर्मवीर, मनमौजिया, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश, रूबी भारती, रचना भारती, एकता, दिव्या भारती, ममता चौधरी, ओमवती, खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। बधाइयों आपको, आप कार्यक्रम में सबसे पहले श्रोता बने हैं जिनका पत्र शामिल हुआ है। आप हैं सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हरिया खान, अस्मा, सालिया, शोएब खान, मुस्तावा खान, राउफ, शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। और ये पत्र निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली उत्तर प्रदेश से हैं कल्लू भाई, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फईम, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नसीम, अनाविया, फातिमा, बाबर, अजीम, हमजा। इनके साथ हैं आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यशपाल दिवाकर, उमेंद्रपुरी गोस्वामी, मुकेश गिरी और राजीवपुरी गोस्वामी। रामपुरा किसान मजरा सिमरिया से, तहसील मीरगंज। आप हैं राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा, शशि कुमार, नथुलाल और ननकी सिंह वर्मा, एच एल वर्मा, विवेक।

और हिमांशी वर्मा। वाटिका संसिटी विस्तार बरेली से आप हैं भक्ति सिंह, हिमांशु मिश्रा, राम मिश्रा, श्याम मिश्रा, कन्हैया, आशीष त्रिपाठी, सत्यदेव वर्मा, अनुजा कन्हैया सिंह, दिव्यांशी सिंह। मीरगंज बरेली उत्तर प्रदेश से हैं विवनेश ठाकुर, विवेक ठाकुर, अभय ठाकुर, राज ठाकुर, रिया, अनिकेत और दिव्यांशी ठाकुर। और ये पत्र ककराला बदायूं से मसरूर खान, सरफराज खान, विकास सक्सेना, धर्मवीर, प्रवीण रावर, अनिल नागर, सागर बख्शी और भरत यादव का। लीजिए, आप सभी की पसंद पर लेकर आए हैं आज का अर्जुन फिल्म से ये गीत, अमित कुमार, अलका याग्निक की आवाजों में। अनजान की शब्द रचना है पप्पी लहरी का संगीत।

आप सुन रहे हैं 100.4 FM आकाशवाणी बरेली से कार्यक्रम अनुरोध गीत। भाई इतने खूबसूरत गीत और कहां, सिर्फ और सिर्फ यहां 100.4 FM पर। अनुरोध गीत में अब शामिल करते हैं इन पत्रों को। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत मध्य प्रदेश से ये पत्र मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री का। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से आप हैं अभिजीत गुहाड़कर, श्रीमती सरिता गुहाड़कर, प्रिंस एकांश। बहादुरा नागपुर से श्रीमती वैशाली, शैलेश गुहाड़कर, श्वेता सुमित, ध्वनि गुहाड़कर। बदलापुर मुंबई से हैं सिद्धांत और प्रगता गुहाड़कर। मौर्य मंदिर पुराना शहर बरेली से हैं अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश सिंह की कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय। दुविया नेवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। शेरपुर कलाम गाजीपुर से हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय।

पानी टंकी के पास होली चौक बरेली से आप हैं राम प्रसाद शर्मा, फजरुद्दीन, जयश्री देवी, वंदना, मनोरमा, अजय शर्मा, ऋतिक, विनोद, वंश, कनिष्का और घर के सभी लोग। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, जयवीर सिंह, अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से है शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल बजाज।

ये पत्र इंदिरा विहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम नूरजहां, वली अकरम नूरजहां, उल्लाह अकरम नूरजहां का। राजनांदगांव से हैं याकूब आसमा, यासुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जेल रोड रायगढ़ से हमें पत्र लिखते हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिवा तिवारी। आप सभी ने सुनना चाहा है मेला फिल्म के, माफ कीजिए, हीरो नंबर वन फिल्म से इस गीत को, साधना सरगम और विनोद राठौर की आवाज में इस गीत को।

तुम हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। इस खूबसूरत गीत के बाद और कौन से खूबसूरत गीत आप तक पहुंचने वाले हैं और किन श्रोताओं की पसंद पर? लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिवा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्लाह फकीर, डब्लूल्लाह फकीर, परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी, फर्जी वली अंसारी। शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद बकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी, हिना कौसर। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुस्ताक अहमद, बेबी मंसा और रमेश कौर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।

0: जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, शमरीन परवीन, मोहम्मद रिहान और माहिरा नूर। रामवर करनाल से हैं ज्ञान भूषण शर्मा और सोमनाथ। सुभाष नगर बरेली से हैं शोभा शर्मा, राजू, सपना दीक्षित, कल्पना, साक्षी, संजीव और इनके परिवार के सभी सदस्य। बीडे कॉलोनी से हैं राधा गोविंद, केशव, वैभव, अर्चना, अशोक, श्याम, श्यामा यादव। बटिंडा रोड डब्बाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, अनिष्का और तन्मय गजभिये। आप सभी की पसंद पर डॉन फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत।
1: अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। आहा।

0: खाई के पहन बनारस वाला खुली जाए बंद अकल का ताला ओ खाई के पहन बनारस वाला।
1: कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। शेर कलाम गाजीपुर से हैं अवधेश, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। ये पत्र जसपुर उत्तराखंड से है, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, रानी।

तबसुम, रुखसार और मोहम्मद आशिफ। जमभेदपुर झारखंड सुपाही साही गांव से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेन जी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश मैंडी, सौरभ शाइना और निवान शर्मा। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से हैं विमल वर्मा। बरेली जंक्शन से हैं गरीब भाई और विक्की भारद्वाज। आप सभी की पसंद पर अब कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति मेला फिल्म से है। अनुराधा पौडवाल, उदित नारायण की आवाजों में, शब्द रचना जमीर काजमी की है और राजेश रोशन का संगीत।

0: तो श्रोताओं, मेला फिल्म के इसी गीत के साथ कार्यक्रम का जो समय है पूरी तरह से समाप्ति की ओर है और अब इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत, आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब आगे के कार्यक्रमों के लिए आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र।
1: लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए अब सुनिए हिंदी का

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। श्रोताओ, आज के इस अंक में आपको एक कहानी सुनवाते हैं जिसका शीर्षक है ठहरा हुआ मोबाइल युग। कहानीकार हैं श्री नवीन जोशी।
1: एक मित्र के घर छोटी सी अंतरंग पार्टी थी। 8-10 परिवार जमा हुए थे। हंसी मजाक, गपशप, पुराने दिनों की यादें। भागम भाग वाले जीवन में ऐसे अवसर कम ही आते हैं, लेकिन बच्चे बार बार उनके रंग में भंग कर दे रहे थे। कोई बालक रोता हुआ आता तो कोई मम्मी का पल्लू खींचकर घर चलने की जिद करने लगता। आनंद में बार बार व्यवधान पड़ते देखकर सभी माता पिताओं ने बच्चों को अपने मोबाइल पकड़ा दिए। अब शांति हो गई। बच्चे दूसरे कमरे में जाकर मोबाइल में खो गए। जन्मदिन की पार्टी फिर निर्विघ्न चली। यह इन दिनों का आम दृश्य है। छोटा बच्चा दूध न पी रहा हो, रो रहा हो या कोई जिद कर रहा हो, माता पिता उसे मोबाइल पकड़ा देते हैं। गोदी के शिशु भी मोबाइल पकड़े पकड़े दूध पीते हैं और नींद भी मोबाइल से ही आती है। वही लोरी सुनाता है, कहानी भी। ऐसे ही एक देर शाम मैंने कुछ बच्चों को पार्क की बेंच पर मोबाइल में खोए देखा। 5 बच्चे थे और 5 सिर झुकाए मोबाइल की स्क्रीन में आंखें गड़ाए हुए थे। जो वे देख रहे होंगे उसी के अनुरूप उनके चेहरे की भाव भंगिमाएं बन रही थी, आंखें सिकुड़ या फैल रही थी। मैं उन्हें देखता रहा और अपने दिनों को, बल्कि अपने बचपन को याद करता रहा। हमारे समय में मोबाइल नहीं था। हम बच्चे पार्क में उछल कूद करते, गेंदताड़ी और 7 टाइल्स खेलते, कभी छुपन छुपाई वगैरह, अंधेरे में बैठे अंत्याक्षरी खेलते, गाने गाते और पहेलियां बुझाते, कुछ नहीं तो पार्क में लोट पोट लगाते और देर शाम मिट्टी से सने कपड़ों, गंदे हाथ पैरों से घर लौटते। थोड़ी बहुत डांट पड़ती, फिर नहलाए धुलाए जाते। माँ झुंझलाती, कितनी मिट्टी फतोड़ कर लाया है। घुटने की खरोंच पर चिंता व्यक्त करती, फिर दवा लगाती, हिदायत देती, ऐसे खेल मत किया करो जिसमें चोट लगती है। हम बच्चों पर इसका कोई असर नहीं होता था। अगली शाम और भी मिट्टी लगाकर लौटते थे। जो बच्चे पार्क की बेंच पर बैठे मोबाइल में खोए थे, उनके बगल में उसी बेंच पर उनकी पानी की बोतलें भी रखी थी। बोतलें नहीं, सिपर कहते हैं। खैर, प्यास लगने पर बच्चे सिपर मुंह से लगाते, फिर मोबाइल में खो जाते। मैं फिर अपने बचपन में चला गया। कबड्डी या गेंदताड़ी खेलते खेलते प्यास लगी तो पार्क की सिंचाई करने वाला पाइप मुंह से लगाकर पी लेते। हमारे जमाने में पानी बोतल में नहीं होता था। स्कूल के बस्ते में सिर्फ किताबें होती थी, उसमें सिपर की जगह ही नहीं होती थी। स्कूल में दीवार पर एक साथ कई नल लगे होते थे या सड़क के किनारे लगे नल से चुल्लू बनाकर गटागट पानी पी लेते थे। बम्बा कहते थे उसे। हमें किसी ने नहीं टोका कि बम्बे का या स्पार्क का पानी क्यों पीते हो। आज मैं किसी बच्चे को पार्क का पाइप उठाकर पानी पीते नहीं देखता। मेरे पड़ोस में एक नवयुगल रहता है। उनकी एक प्यारी सी बच्ची है, बिल्कुल गुड़िया जैसी। नया खूबसूरत फ्रॉक पहनकर वह कभी अपनी माँ की, कभी पिता की और कभी अपनी दादी की गोद में दिखाई देती है। इन दिनों वह गोद से उतरकर घुटने घुटने चलने की जिद करती है। दादी उसे नीचे उतार देती हैं और पोती को घुटनों के बल आगे सरकता देखकर खुश होती हैं। लेकिन उसकी मम्मी अपनी सास पर गुस्सा करती है। देखिए, इसने मिट्टी लगा ली है, आपने नीचे क्यों छोड़ दिया। फिर वह नेपकिन में सैनिटाइजर या कुछ लगाकर उसके हाथ पांव पोछती है, उंगलियां साफ करती है और बच्ची को समझाती है, नीचे छिच्छी है, छिच्छी, छिच्छी में नहीं जाते। फिर उसे गोद में उठाती है, प्रेम में बिठाती है। बच्ची नीचे जमीन पर उतरने की जिद करती है, लेकिन वहां छिच्छी है। वो गोद या प्रेम या सैनिटाइज्ड घर की कैद में है। जिन बच्चों ने मिट्टी में घुटने नहीं घिसे, मिट्टी नहीं खाई, उनका बचपन मुझे करुणामय लगता है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की पंक्ति याद आती है। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी। तब मिट्टी में खेलने, मिट्टी खा लेने पर कैसा ममत्व उमड़ा करता था। पार्क की बेंच पर बैठे मोबाइल में खोए साफ सुथरे बच्चों से मैं कहना चाहता हूँ, आओ पहेली बूझें, मोबाइल रख दो। किंतु मैं कह नहीं पाता, मेरे बोल नहीं फूटते। पता नहीं वे सुनेंगे भी या नहीं। सुनेंगे भी तो मुझे क्या समझेंगे। हो सकता है डर जाएं। मैं अजनबी हूँ। अब अपरिचित व्यक्तियों से दूर रहने की हिदायतें दी जाती हैं। हमने अपरिचित व्यक्तियों

0: से भी खूब प्यार पाया है या फटकार खाई है। गलती करने पर कोई भी डांट सकता था, अब यह अपराध है। हमारे मास्टर जी उल्टी हथेली पर खड़े पटरूल से पिटाई कर देते थे। काम पूरा नहीं करने, पाठ याद नहीं करने या झगड़ा करने पर मुर्गा बना देते थे। कान इतनी जोर से उमेटते थे कि 2 दिन तक लाल रहता था। लाल कान देखकर घर में भी डांट पड़ती थी। आज के टीचर अभिभावकों की अदालत में अपराधी ठहराए जाते हैं कि बच्चे का कान क्यों पकड़ा। मैं तो अपरिचित ठहरा, बच्चों को पहेली बूझने को कैसे कह सकता हूँ। मेरा मन लेकिन पहेली पर ही अटका रह गया। क्या पहेलियाँ होती थी? हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। किसने बनाई होगी यह पहेली? अवश्य ही उसने मक्के के खेत में दिन बिताए होंगे, पौधे को बढ़ते पनपते और फलते हुए देखा होगा, तभी रच पाया होगा ऐसी पहेली। मोबाइल में डूबे बच्चों ने कभी कॉर्न तो खाया होगा, लेकिन क्या कभी खेत में मक्के की फसल देखी होगी? ये बच्चे अन्न नहीं पहचानते। धान और गेहूं की लहलहाती फसल इनसे बहुत दूर है। यह नूडल्स वाली पीढ़ी है। नूडल्स और पास्ता की फसल नहीं होती। चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक्स किस पेड़ में फलते हैं भला? खैर, मेरा मन अपने ही से पहेलियां बूझने लगा। एक थाल मोती भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। मेरी गर्दन अपने आप ही ऊपर की ओर उठने लगी। आंखें आसमान में मोतियों भरा थाल देखने को आतुर हो उठी। लेकिन यह क्या, ऊपर कोई थाल नहीं था। शायद थाल था, लेकिन सारे मोती जाने कहाँ चले गए थे? क्या कहीं गिर गए होंगे? हमारे बचपन में ऊपर के विशाल थाल में मोती ही मोती भरे रहते थे, टिम टिम करते रहते थे। छोटे बड़े असंख्य तारे, हमें ध्रुव तारा दिखाया जाता था। भक्त ध्रुव की कहानी कितनी ही बार सुनी थी। मेरा एक दोस्त खूब तारे पहचानता था। हमें सप्त ऋषि दिखाया करता था। अब सप्त ऋषियों ने आसमान छोड़ दिया है क्या? मैंने आंख गड़ा गड़ा कर देखने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से एक तारा दिखा, लेकिन उसमें चमक नहीं थी, वो धुंधला धुंधला था। तब ठहरा हुआ है,
1: ठहरा हुआ मोबाइल युग। ये कहानी अभी आप सुन रहे थे। कहानीकार थे श्री नवीन जोशी। इसके साथ ही आज का हिंदी कार्यक्रम का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत आज इस कार्यक्रम में आनंद लीजिए रूबीना बनर्जी के गाए भजनों का। पहले आपको सुनवाते हैं रूबीना बनर्जी के स्वर में मीराबाई की भक्तिपूर्ण

सुगम संगीत कार्यक्रम में आज की हमारी कलाकार हैं रुबीना बनर्जी और आप आनंद ले रहे हैं उनके गाए भजनों का। अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर योगेश प्रवीण की भक्ति रचना रुबीना बनर्जी के ही स्वर में।

0: अभी आप रुबीना बनर्जी की आवाज में मीराबाई की ये भक्ति रचना सुन रहे थे। अब आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं।
1: विविध भारती के खजाने से हम आपके लिए लाते हैं अनमोल कार्यक्रम।
2: फौजी भाइयों की खिदमत में आपका खादिम नौशाद आदाब पेश करता है, कबूल फरमाइए।
1: कल और आज के ऐसे ही नामचीन सितारों को आप सुनते हैं विशेष जयमाला में हर शनिवार और रविवार शाम 7:05 पर। विविध भारती आप सुन सकते हैं देश के कोने कोने में 24 घंटे डीटीएच और आपके मोबाइल पर।
3: घर आंगन में है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए आप सुनिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाते हैं इंग्लिश बाबू देसी मेम फिल्म का गीत। ये गाना आप सुनेंगे कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा है, जिसे निखिल विनय ने

कुमार सानू और साधना सरगम के गाए गैम्बलर फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ नमस्कार आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोल्स्टोर से ओस्लो

0: में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनास गोरस्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके

0: यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमेरिकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौरे में अमेरिकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमेरिका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में

0: हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
1: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
0: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम आपके लिए।

अभी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म घर में सुना। गीतकार थे गुलजार, संगीतकार आरडी बर्मन। अब सुनिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी का लिखा गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम इज्जत।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: तेरे मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान

0: उड़ उड़ जाए।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। अगला गीत आशा भोसले और सुरेश वाडकर का गाया हुआ फिल्म है परिंदा। खुर्शीद के लिखे इस गीत की धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: विविध भारती,
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: अब सुनिए एस डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाज आशा भोसले की, फिल्म का नाम ज्वेल थीफ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था, लिटरली जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हैं, जंप कर जाती हैं। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।

0: तुमको मुझसे प्यार है। बागों में बहार है।
1: वो जो बहुत खूबसूरत हैं, चुलबुली हैं, भोली हैं, भोले भोले चेहरे से बड़ी सहजता से संवाद बोल देती हैं, जो कभी सहनायिका थी अभिनेता राजेश खन्ना की। प्यारी भोली मासूम आवाज में बोलने वाली फनकार, आज उन्हीं पर केंद्रित है हमारा ये कार्यक्रम। इनका नाम है फरीदा जलाल।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अगर आपने फिल्म आराधना देखी होगी तो इस दृश्य को जरूर देखा होगा। इनके साथ अभिनेता थे राजेश खन्ना। इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। फरीदा जलाल का फिल्मी कैरियर सन 1967 से फिल्म तकदीर से शुरू हुआ।

सन 1949 में फरीदा जलाल का जन्म हुआ था नई दिल्ली में। शुरू की युवा आयु में जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तो इन्होंने कई फिल्मों में अलग अलग भूमिकाएं की, सखी के रूप में, बहन के रूप में, और ये भूमिकाएं सराही गईं। फिल्म तकदीर में गोपाल की छोटी लड़की की भूमिका निभाई।

1973 में एक फिल्म आई थी लोफर। इस फिल्म में अभिनेत्री फरीदा जलाल ने रूपा की भूमिका निभाई थी, जो कि गोपीनाथ की बेटी है। इसी फिल्म का गाना सुनिए।

0: चर्चित फिल्में बहारों की मंजिल 1968 में, महल 1969 में, आराधना पुरस्कार, नया रास्ता 1970 में, गोपी देवी, पारस में बेला देवी नाम से भूमिका को जीवंत किया और इस फिल्म पारस के लिए फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इन्हें अवार्ड दिया गया। एक और पुरस्कार इन्हें दिया गया BFJA अवार्ड। इस फिल्म में अभिनेता संजीव कुमार की बहन की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई थी। आइए सुनते हैं पारस फिल्म का गाना।
1: अरे या, या, या।

अमर प्रेम प्यार की कहानी, जिंदगी जिंदगी, रिवाज, बुनियाद, हीरा, बॉबी, जिसमें इन्होंने चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया, जिसे फरीदा जलाल ने बहुत ही सहजता से निभाया। बॉबी फिल्म में एक ऐसी धनी लड़की की भूमिका निभाई जो मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। उस अमीर लड़की को हीरो पसंद इसलिए करता है क्योंकि उसके पिताजी चाहते हैं कि इस अमीर लड़की से उनका बेटा शादी कर ले। फिल्म में पारस के बाद इन्हें एक और पुरस्कार दिया गया, फिल्म मजबूर के लिए, यानी कि मजबूर फिल्म की कहानी सलीम जावेद की जोड़ी ने लिखा था। अभिनेता अमिताभ बच्चन इसमें हीरो थे। इस फिल्म में फरीदा जलाल ने उनकी बहन की भूमिका निभाई थी। बहुत ही बेबसी और मजबूरी का अभिनय किया था फरीदा जलाल ने, जो बहुत लाजवाब था।

मीरा जलाल ने 40 वर्ष की उम्र तक सिने जगत में अभिनय किया। 1983 और 1990 के बीच में फिल्मों से ब्रेक लिया और बेंगलोर जाकर शिफ्ट हो गईं। 1990 वर्ष के दौरान फरीदा जलाल ने अपना फिल्मी करियर फिर से शुरू किया और कई मेजर हिट फिल्म में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया। 1991 में हिना फिल्म में बीबी गुल की भूमिका निभाई और इस फिल्म के लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड से नवाजा गया। 1991 के बाद भी कई फिल्में आईं जिसमें इन्होंने तरह तरह की चरित्र अभिनेत्री की भूमिका निभाई। फिल्म पायल, बेखुदी, कल की आवाज, दिल आशना है। 1993 में गर्दिश, सन 1994 में फिल्म

आई थी मम्मो, जिसमें फरीदा जलाल ने महमूदा बेगम अनवर अली उर्फ मम्मो का किरदार निभाया था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत ही दमदार अभिनय था। इस फिल्म के लिए फरीदा जलाल को 2 अवार्ड मिले, एक तो फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए और दूसरा अवार्ड बंगाल की जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड दिया गया। सन 1995 में दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म रिलीज हुई, जिसमें लाजवंती यानी लाजों की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाया और इन्हें अवार्ड दिया गया फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का।

सन 2000 में हे राम फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका फरीदा जलाल ने निभाई। इस भूमिका को बहुत सराहा गया। यही फिल्म हिंदी और तमिल में साथ साथ बनाई गई। ये फिल्म थी हे राम। सहनायिका बहन, पत्नी, माँ, धाई माँ, दादी माँ, इस तरह की भूमिकाएं आगे चलकर फरीदा जलाल को मिली और सभी भूमिकाओं में इन्होंने अपने खास अंदाज में जान फूंक दी। सन 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर, 2015 तक अनेक चरित्रों को पर्दे पर इन्होंने साकार किया। सन 2012 में फरीदा जलाल को ए ग्रैंड प्लान फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया हार्लेम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल।

1990 के बाद की कई फिल्में बहुत चर्चित रहीं। फिल्म राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, कभी खुशी कभी गम, फरीदा जलाल ने कई टेलीविजन सीरियल में भी काम किया जिसमें देख भाई देख हिट सीरियल था। फरीदा जलाल ने कॉमेडी रोल भी अदा किए। थोड़ा जादू थोड़ी नजाकत, इसमें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया, यूं कह सकते हैं कि लीडिंग रोल था। सन 2005 में मुंबई में 50वें फिल्म फेयर अवार्ड के स्टेज पर इन्होंने एंकरिंग की, साथ में थे सैफ अली खान और सोनाली बेंद्रे। पंजाबी फिल्म यारिया में एक विशेष भूमिका में फरीदा जलाल नजर आई। सन 1978 में इनका विवाह एक्टर तब्रेज बर्मावर के साथ हुआ जो कि भटकल के थे। इन दोनों की मुलाकात फिल्म जीवन रेखा की शूटिंग के दौरान हुई थी और दोनों में प्यार हो गया और फिर इन्होंने शादी कर ली। फिल्म आराधना के बाद जीवन रेखा इनकी दूसरी फिल्म थी जिसमें इन्होंने हीरोइन की भूमिका निभाई थी और साथ में थे उनके पति तब्रेज। इस फिल्म का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ।

जलाल का एक बेटा है यासीन। अभिनेत्री फरीदा जलाल के अभिनय को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फरीदा जलाल हमेशा उन्नति करें। हम सब विविध भारती परिवार की ओर से उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।

आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित था अभिनेत्री फरीदा जलाल पर। शोध, आलेख और स्वर शहनाज अख्तरी का। कार्यक्रम का संपादन किया आकांक्षा सिंह ने। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फनकार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओपी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओपी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
0: ऐसी अद्भुत यादें।

0: अभी आप सुन रहे थे पत्र और ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी लखनऊ है।
1: आइए सुनते हैं नाटक मोक्ष, लेखक जितेंद्र कुमार, कलाकार डॉक्टर अनिल रस्तोगी, डॉक्टर कुमकुमधर, संध्या रस्तोगी, प्रेमकांत तिवारी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सुनील शुक्ला, सुस्मित त्रिपाठी, शिखा दुबे। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग कीर्ति श्रीवास्तव। निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता अतिश कुमार श्रीवास्तव।

0: ये दुष्ट मेरा बाप न जाने कब मरेगा, जमीन भी मेरे नाम नहीं कर रहा है। क्यों ना आज ही मैं इसको मार डालूं। वैसे तो ये मरने वाला है नहीं बुड्ढा कहीं का।
1: तुम लोग तो बचपन से देख रहे हो इनको, कभी भी तुम लोगों से मतलब रहा ही नहीं इनका। बस पैसा दे दिया और सारी जिम्मेदारी खत्म। मैं तो कहती हूँ कि तुम अभी इनको निपटा ही दो, नहीं तो ये सारी जमीन अपनी संस्था के नाम पर कर देंगे और जहाँ बूढ़े लोगों की सेवा होगी, हम लोग जाकर फुटपाथ पर बैठेंगे। कब से यही तो रट लगा रहे हैं। देखो देखो, सुन रहा है, कान लगा के सुन रहा है बुड्ढा।
2: हे भगवान, हे भगवान, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, क्या करूं? रात का समय है, पैरों में भी भयंकर दर्द है, कहीं भाग भी तो नहीं सकता, और कल ही तो मेरी नौकरी का भी आखिरी दिन है। अगर कुछ बोलता हूँ तो लोग अनकंपा नौकरी पाने के लालच में मेरी जान भी ले सकते हैं। हे भगवान, हे भगवान, किस कर्म का फल दिखा रहे हो मुझे प्रभु।

0: ये ले ले ले, निकल निकल जा, निकल जा तुम दोनों माँ बेटे मेरे घर से, और अपनी लड़की से भी कह दो कि वो भी यहाँ से चली जाए।
1: छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो।
0: के बाद भी जब देखो यही घुसी बैठी रहती है, मेरे लड़के की शादी भी नहीं होने दे रही है जमीन की लालच में, कि कहीं कल बहू आ गई ना तो इसका इस घर से आना जाना भी बंद कर देगी। जिस लड़के को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, जरा से जमीन के टुकड़े के लिए मुझे भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। हे भगवान, मुझे अपने पास बुला लो, अपने पास बुला लो प्रभु।
1: पापा, आप क्या रोज रोज ड्रामा करते रहते हो, आपको हम लोगों से इतनी परेशानी क्यों है?
0: परेशानी क्या पूछ रहे, परेशानी क्या? अरे यहाँ बैठकर बाप बेटे में झगड़ा लगा रही प्रॉपर्टी की लालच में, निकल निकल जाया, चल निकल
2: जाया।
0: प्रभु बचाओ, नहीं तो हमारी लड़का मेरी हत्या ही कर देगा। अरे कोई तो मेरी आवाज सुनो, कोई तो सुनो भाई। किसी की चीख पुकार सुनकर आजकल आजकल अड़सड़ों के लोग भी नहीं बोलते। घटना हो जाए तो बोलेंगे नहीं, उसका वीडियो बनाएंगे, उसको वायरल करेंगे ताकि उनका नाम हो। हे प्रभु, कोई तो आओ।
1: हेलो हेलो पुलिस जी, जी मेरे पापा मुझे और मेरे भाई को मार डालना चाहते हैं, आप लोग जल्दी आ जाइए।

0: क्या चल रहा है यहाँ पर? किसने फोन किया था?
1: जी मैंने फोन किया था। ये मेरे पापा हम लोगों को मार डालना चाहते हैं, घर से बाहर भगा रहे हैं। ये देखिए घर के सारे बर्तन फेंक दिए।
2: हाँ इंस्पेक्टर साहब, आज ये बड़े गुस्से में हैं। आप लोग समय से ना आते तो ये हम लोगों को जान से ही मार देते। आप इनको तुरंत गिरफ्तार कीजिए, चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए।
0: क्यों, तुम्हारे कहने से इनको गोली मार दें और इनसे पूछे भी ना? और सर आप रोइए नहीं, मामला क्या है मुझे पूरा बताइए।
3: देखिए इंस्पेक्टर साहब, आपको मुझे देखकर ऐसा लगता है क्या मैं आपको ऐसा आदमी लग रहा हूँ? अरे मेरा परिवार है ये, जो आज इस जमीन के जरा से टुकड़े के लिए मेरी जान लेने पर तुला हुआ है, जबकि सबको एक न एक दिन इसी जमीन के नीचे जाना है। आप तो जानते हैं सब बातें।
0: क्यों मैडम, इनको देखकर तो ऐसा लगता नहीं कि ये कोई खतरनाक कदम उठा सकते हैं? और आप लोग बुढ़ापे में इनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं?
3: जी देख लीजिए आप।
2: हाय राम इंस्पेक्टर साहब, फोन तो हमने आपको किया और पक्ष आप इनका ले रहे हैं। कहीं कोई घूस उस तो नहीं ले रखी है आपने इनसे? अनीता तुम एसपी का नंबर मिलाओ। चलो ये इंस्पेक्टर साहब तो बड़े अजीब आदमी लग रहे हैं।
0: मैडम हमें धमकी मत देना, हम पुलिस वाले हैं, दिन भर ना जाने इस तरह के कितने केस निपटाते हैं। आदमी का चेहरा देखकर उसके 7 जन्म का इतिहास बता देते हैं। आप सभी

0: लोग थाने आकर अपनी अपनी तहरीर दीजिए, नहीं तो पुलिस का असली मतलब समझा दूंगा तुम लोगों को। और हाँ, ये एसपी साहब के फोन की धमकी ना देना मुझे।
1: माँ, मैं अपने बच्चे को लेकर आज ही अपने घर जा रही हूँ। तुम ही लोग निपटाओ अपने इस घर का झगड़ा।

0: हाँ भाई, तो अब बताइए क्या बात है, क्या तकलीफ है आप लोगों को?
1: इंस्पेक्टर साहब, हम लोगों का जीना हराम कर रखा है इस आदमी ने। मुझे और मेरे बच्चे को मारकर घर से निकाल रहा था। देखिए, कुछ दिन पहले मेरी टांग तोड़ दी।
2: क्या कहा?
1: देखिए देखिए, मेरी टांग में रॉड पड़ा है।
2: क्या कहा? अरे दुष्टा, कुछ तो भगवान से डर, अपने आप गिर पड़ी थी। तेरा घुटना नीचे उतर गया था, 2 लाख डॉक्टर को देकर ऑपरेशन करवाया था, तब जाकर अपने पैरों पर खड़ी हुई थी, नहीं तो बिस्तर पर पड़ी पड़ी मर जाती, समझी?
0: क्या बात है सर, आप सब कुछ साफ साफ बताइए मुझे।
2: देखिए बात यह है इंस्पेक्टर साहब, आज मेरे रिटायरमेंट का दिन है और आज ही ये माँ बेटे और मेरी बेटी मुझकर मुझे मार डालना चाहते हैं, ताकि मेरे मरने के बाद मेरी नौकरी और मेरा मकान सब कुछ इनका हो जाए।
1: देखा देखा इंस्पेक्टर साहब, कितना झूठ बोल रहे हैं ये। हम लोगों को सुबह से मार मार कर गाली देकर घर से निकाल रहे थे और हम कैसा नाटक कर रहे हैं।
0: ओहो, क्यों भाई, ये क्या कह रही हैं?
2: इंस्पेक्टर साहब, आप लोग तो पुलिस वाले हैं, आप तो आदमी का चेहरा देखकर समझ जाते होंगे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है।
0: अरे भाई, हम पुलिस वाले हैं, कोई अंतर्यामी या भगवान नहीं। और क्यों भाई, तुम अपने पिता का गला दबा रहे थे नौकरी और जमीन की लालच में?
3: अरे साहब, आप मेरी पापा की बातों में ना आइए, ये बहुत बड़े नाटकबाज है।
2: क्या?
3: जरा जरा सी देर में नए नए ड्रामे रचते हैं। सुबह से सारे घर के बर्तन फेंक फेंक कर मार मार कर हम लोगों को घर से भगा रहे हैं। मेरी बड़ी बहन, उसे भी मारने के लिए दौड़े थे, उसका बच्चा उसकी गोद में था इंस्पेक्टर साहब, वो तो भगवान ने बचा लिया, वरना न जाने क्या हो जाता इंस्पेक्टर साहब।
0: अरे अरे रुकिए रुकिए, अब आपका इसके बारे में क्या कहना है?
2: देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी लड़की अपनी ससुराल छोड़कर महीनों मेरे घर में अपना बच्चा लिए पड़ी रहती है, माँ बेटों को मेरे खिलाफ भड़काती रहती है। दरअसल उसकी भी नजर मेरी जमीन जायदाद पर है। मैंने तो बस उसको डराने के लिए डस्टबिन उठाया था, क्योंकि वो भी मुझसे लड़ रही थी और इन दोनों को मेरे खिलाफ भड़का रही थी, और उसी ने पुलिस को भी फोन किया था। अब आप ही बताइए, कोई अपनी बेटी को, अपने छोटे नाती को क्यों मारेगा, बताइए आप भला।
0: अरे भाई, जब ऐसा ही था तो आपने पहले से इस झमेले को संभालने के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया, पूरा मामला बताइए।
2: देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे पिताजी की इच्छा से हुई थी। वह था कि मेरी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और घर संभालने वाला कोई था नहीं। मैं तो शादी वाले दिन ही घर छोड़कर भाग जा रहा था, पर मेरे पिताजी मुझे देखकर रोने लगे। बस मैंने उनके आंसुओं को देखकर इस चुड़ैल से शादी कर ली, जो उम्र में भी मुझसे कम से कम 10 साल बड़ी। जब से इस घर में आई है झगड़ा ही करती रहती है। ये 2 बच्चे हो गए, अब इनके भविष्य की चिंता के बारे में मैं इसको छोड़ नहीं पाया कि ये कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे, इनको कौन पालेगा। शुरू से ही इसका मेरे साथ झगड़ा होता रहा, इसलिए इसके दिल में मेरे लिए नफरत भर गई और वही नफरत इसने बचपन से मेरे बच्चों के दिल में भी उतार दी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने एक एक पैसा जोड़कर इन बच्चों को पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर काबिल बनाया, जमीन जायदाद के लालच में आज यही बच्चे मेरी जान के दुश्मन बने हुए। मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया इंस्पेक्टर साहब, इस चुड़ैल औरत का मुझे कोई अफसोस नहीं है, पर बच्चों के लिए मुझे बहुत पीड़ा होती है, बहुत ही पीड़ा होती है मेरे मन में।
0: अरे फिर भी आपके मामले में तो गनीमत है, यहाँ तो आजकल लड़के अपने माँ बाप की जान ही ले लेते हैं।
2: सही कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब, ये तो कहिए भगवान की कृपा ने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरा भी वही हाल होने वाला था।
4: अरे इंस्पेक्टर साहब, इनकी बातों में ना आइए, ये देखने में बड़े भोले भाले हैं, पर छुपे रुस्तम हैं। इनका एक दूसरी औरत के साथ भी चक्कर है, इसी कारण इतना बवाल मचाए हुए हैं।
0: क्यों भाई, ये क्या कह रही हैं? क्या ये सच है?
2: नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसकी बातों में ना आइएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने बताया था ना, उम्र में मुझसे 10 साल बड़ी है और मुझे छोड़कर बच्चों के साथ रहती है। अब मुझे स्लिप डिस्क की बीमारी है, कोई देखभाल करने वाला नहीं था, इसी कारण अपनी देखभाल के लिए मैंने अपनी मित्र

0: अमा को रखा था। उससे भी इसने इतना झगड़ा किया कि वो भी मुझे अकेला छोड़कर अपने घर चली गई, पर अब शायद ही वापस आएगी। बिल्कुल अकेला पड़ा रहता हूँ, बहुत डर लगता है। अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन करेगा मेरे लिए?
1: देखिए, ये आप लोगों का पारिवारिक मामला है, अच्छा होगा कि आप लोग अभी आपसी समझौता कर लें, वरना मैं भेज दूंगा सभी को जेल। फिर कराते रहना अपनी जमानत कोर्ट से।
0: ठीक है इंस्पेक्टर साहब, करा दीजिए आप हमारा समझौता।
1: देखो भाई, संतान का कर्तव्य है कि माँ बाप के झगड़े में किसी एक का पक्ष ना ले। जब दोनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं तो तुम्हें दोनों को समझाना चाहिए।
2: अरे सर, ये तो भले आदमी लग रहे हैं जो इस तरह की औरत के साथ पूरी जिंदगी गुजार दी। अरे नहीं तो आजकल लोग तो नौकरानी भी देख सुन कर रखते हैं।
1: तुम अपना काम करो समझे, पहले इनका समझौता तैयार करो।
0: अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मुझे शांति देगा? दुख सहते सहते मेरी हिम्मत तो जवाब दे चुकी है। मन करता है कि अपने जीवन का अंत कर लूं। नहीं नहीं, गुरु जी कहते हैं कि आत्महत्या करना हत्या करने से भी बड़ा पाप है। ठीक है, गुरु जी के पास चलता हूँ, वहाँ जहाँ सारे संसार को शांति मिलती है, शमशान में।

0: अरे बेटा जय, तुम कब आए? अरे तुम तो काफी परेशान दिख रहे हो, क्या बात है? क्या आज फिर माया से झगड़ा हो गया?
1: आप तो अंतर्यामी हैं गुरुजी, सबके मन की बात जानते हैं। अगर आप मेरी जिंदगी में ना आए होते तो मैं तो कब का आत्महत्या कर चुका होता। आज तो माया ने सारी हदें पार कर दी गुरुजी। संजय को मेरे खिलाफ इतना भड़काया कि वो मेरा गला दबाने लगा। वो तो आपके आशीर्वाद से मैं बच गया। अभी सीधा पुलिस स्टेशन से समझौता करा रहा हूँ, फिर भी मेरे मन से उन लोगों का मोह नहीं जा रहा है। नहीं तो आज ही मैं संन्यास लेकर कहीं दूर चला जाता।
0: लेकिन ये वास्तविक संन्यास नहीं होगा। तुम्हें जंगल में भी जाकर उनकी याद सताएगी कि वे लोग मेरे बिना कैसे रहेंगे, किस हाल में रहेंगे, और तुम्हें शांति नहीं मिलेगी।
1: तो क्या करूं गुरुजी? अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करना और अपना कर्तव्य निभाना, ये भी पाप होता है क्या?
0: नहीं, अपना कर्तव्य निभाना और अपने परिवार का पालन पोषण करना पाप नहीं होता, परंतु ये सब अनासक्त भाव से परमेश्वर को समर्पित करते हुए किया जाना चाहिए।
1: तो क्या गुरुजी मेरी आसक्ति ही मुझे दुख दे रही है?
0: हाँ, यदि मेरे साथ रहकर तुमने साधना न की होती तो आज तुम बुरी तरह से आसक्त हो गए होते और इस आघात को सहन नहीं कर पाते। पर तुमने अपने कर्तव्य का पालन करने के साथ साथ अपने परम कर्तव्य परमार्थ की तरफ ध्यान दिया है, ईश्वर को भी अपना समय दिया है, इस कारण तुम बच गए हो। ओम ज्ञानिनाम चेतांसि देवी भगवती सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति।
1: अब मैं क्या करूं गुरुदेव?
0: तुम्हारी ये जमीन जायदाद ही झगड़े की जड़ है, इसे दीन दुखियों की सहायता में समर्पित कर दो, तब सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा।
1: पर गुरुजी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे ये सारे दिन देखना पड़े?
0: तुमने कोई पाप नहीं किया जय, अपने नियत कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन किया है, जिसे तुम अपना पुत्र, अपनी पुत्री और अपनी पत्नी मान रहे हो ना, वे सब तुम्हारे नहीं, केवल अपने अपने स्वार्थ के हैं।
1: अब मैं क्या करूं गुरुदेव, मेरा मार्गदर्शन कीजिए।
0: सबसे पहले तुम अपने आप को इस दुख से उबारो। तुम वृंदावन जाओ, कृष्ण की शरण में जाओ और कृष्ण के रंग में रंग जाओ।
1: ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा।

0: तुम मुझे अपने साथ वृंदावन ले तो आए हो, पर अगर तुम्हारी चुड़ैल बीवी को पता लग गया ना तो तुम्हारा खून पी जाएगी।
1: देवी, मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव का शिष्य हूँ। उन्होंने मुझे ब्रह्मचर्य की साधना सिखाई है। मेरा उस चुड़ैल के साथ अब कोई संबंध नहीं है, वो केवल मेरे नाम मात्र की ही पत्नी है। अब हम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनकर ही रहना है। वो देखो, इस पवित्र स्थान में भी लोग महिलाओं के साथ कितना अभद्र व्यवहार कर रहे हैं।
2: ए, भगवान कृष्ण की नगरी में आकर भी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?
1: तुमने देखा कैसे कलयुग ने सारे तीर्थों में भी अपना कब्जा जमा लिया है?
0: हाँ, वो तो सब ठीक है, पर आगे के लिए क्या सोचा है? वहाँ वापस जाकर क्या करोगे?
1: करना क्या है, अपनी संस्था समता सेवा संस्थान के नाम उस जमीन की वसीयत कर देता हूँ, और हम दोनों लोग मिलकर वहाँ दीन दुखियों की सेवा करेंगे। और यदि मेरे परिवार वाले वहाँ स्वेच्छा से रहना चाहेंगे तो जरूर रहेंगे, लेकिन ये झगड़ा लड़ाई की तो जमीन से बेदखल माने जाएंगे। मेरे वकील से मेरी बात हो गई है और उससे सारे कागजात भी तैयार कर लिए।
0: ये तुमने ठीक काम किया। अरे वो देखो, तुम देख रहे हो ना जो मैं देख रही हूँ?
1: हाँ हाँ।
0: भगवान कृष्ण बंसी बजाते हुए गुरुदेव के साथ हमें लोगों की तरफ बढ़े आ रहे हैं। देखो वो देखो।
1: अरे अब तो बड़ी मुश्किल हो गई, पहले गुरुदेव का स्वागत करूं या भगवान कृष्ण का? आइए आइए प्रभु
0: प्रभु।
3: अरे अरे जय, ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे पकड़कर अपने पास क्यों खींच रहे हो?
1: प्रभु, आपको मेरे साथ मेरे गुरुदेव का स्वागत करना है।
3: अरे मैं परमात्मा हूँ, सारे ब्रह्मांड का स्वामी हूँ, पूजा का प्रथम अधिकारी तो मैं ही हूँ, और मैंने ही तुम्हें ये जीवन दिया है।
1: पर इसका सही उपयोग करना तो हमारे गुरुदेव जी ने ही हमें सिखाया है ना?
4: अरे जय, भगवान का स्वागत करने के बजाय तुम तो इनके पास खड़े हो।
3: इसने सही किया, क्योंकि मैं भी यही करता हूँ, मैं भी तो संतों के पीछे चलता हूँ।
4: मेरे शिष्य को क्षमा कर दीजिए यदि उससे कोई भूल हो गई हो।
3: अरे कोई भूल नहीं हुई, तुम्हारा ये शिष्य तो बहुत बुद्धिमान है, जिसने इतनी विपत्ति आने पर भी अपने मन को वश में कर रखा है।
1: पर प्रभु, इस संसार के लोगों के कटु वचन विष के समान आघात करते हैं।
3: इस संसार में तुम्हारा अपना कोई नहीं है।
1: प्रभु आप ही बताइए, मैं आपके दिए हुए जीवन का सदुपयोग कैसे करूं?
3: तुम सबको समान दृष्टि से देखो और सुख दुख में समान रहना प्रारंभ करो। तुम्हारे पास जो साधन संपत्ति है उसे समस्त जीव मात्र की सेवा में लगा दो और अपना मन मुझे समर्पित कर दो।
1: जैसी आज्ञा प्रभु।

0: मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। लालच ने हम लोगों को अंधा बना दिया, हम लोगों को क्षमा कर दो।
1: हाँ पापा, प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए। लालच में आकर हम भूल गए कि आपने कितनी मेहनत करी हम लोगों के साथ।
2: पापा, उस दिन शराब के नशे ने मुझे पिशाच बना दिया था, जो अपने ही जन्म देने वाले, अपने ही पालन पोषण करने वाले की जान लेने पर तुला हुआ था। पापा,
3: काश बच्चों ये सब तुम लोगों ने पहले ही सोचा होता तो आज मेरे प्यार और विश्वास के हकदार होते। आज जब तुम लोग जान गए हो कि मैंने सारी जमीन जायदाद दीन दुखियों की सेवा के लिए अपनी संस्था के नाम वसीयत कर दी है, तब आए हो माफी मांगने। जब तुम ये जान गए हो कि इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। हाँ, अगर तुम लोग सच्चे हृदय से पश्चाताप करना चाहते हो तो मेरी तरह मेरे साथ इन दीन दुखियों की सेवा में अपना सारा जीवन लगा दो।
1: आप सही कह रहे हैं पापा, आज से हम लोग भी अपना जीवन आपके साथ साथ दीन दुखियों की सेवा में समर्पित कर रहे हैं, पर हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा।
2: पापा, अगर आपने माफ नहीं किया ना तो हम लोग भी अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पापा
3: देखो बच्चों, भगवान ने तो सबको बड़ी कृपा करके यह अमूल्य मनुष्य जीवन दिया है। यदि हम अपने जीवन के खेल को सुंदर ढंग से खेलेंगे तो सुख फल प्राप्त करेंगे। अगर तुम्हें क्षमा मांगनी है तो वो तुम्हें श्यामा से मांगनी चाहिए, जिसने कदम कदम पर मेरा साथ दिया। फिर भी तुम लोगों ने उसका भी बहुत अपमान किया, पर उसने अपने अपमान की परवाह न करके अगर मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं आज जीवित भी न होता।
4: अरे नहीं नहीं, मुझसे क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं है। क्षमा ही मांगना है तो तुम लोग अपने पिता से मांगो, जिन्होंने संपूर्ण जीवन तुम लोगों के लिए समर्पित कर दिया।
3: ये तुम लोगों को सच्चे हृदय से अपने किए पर पश्चाताप है तो मेरे साथ निष्काम भाव से दीन दुखियों की सेवा में लग जाओ।
5: ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे।
6: अरे जय, तुम तो बड़े स्वार्थी निकले, सब काम बन जाने पर मुझे ही भूल गए। मत भूलो कि कर्म तुम्हारा अधिकार है और फल देना मेरा। और माया, तुम तो एक माँ हो जो प्रथम गुरु होती है। तुमने अपने बच्चों में गलत संस्कार डाले और यही बच्चे कल तुम्हारे साथ भी गलत व्यवहार करेंगे। अनीता और संजय, तुम लोग भी सुन लो, जिसने अपने माता पिता का दिल दुखाया उसकी पूजा को मैं कभी स्वीकार नहीं करता।
7: प्रभु, हम लोगों को क्षमा कर दीजिए।
8: प्रभु, अपनी गलती मान लेने वालों को सुधर जाने का एक अवसर तो प्रदान कीजिए।
6: हाँ, पर केवल एक अवसर, दूसरा नहीं।

0: कलाकार थे डॉक्टर अनिल रस्तोगी, डॉक्टर कुमकुम धर, संध्या रस्तोगी, प्रेमकांत तिवारी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सुनील शुक्ला, सुस्मित त्रिपाठी, शिखा दुबे। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग था कीर्ति श्रीवास्तव का। निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता अतिश कुमार श्रीवास्तव।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: कलाकार थे डॉक्टर अनिल रस्तोगी, डॉक्टर कुमकुम धर, संध्या रस्तोगी, प्रेमकांत तिवारी, राघवेंद्र प्रताप सिंह, सुनील शुक्ला, सुस्मित त्रिपाठी, शिखा दुबे। संपादन एवं प्रस्तुति सहयोग था कीर्ति श्रीवास्तव का। निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता अतिश कुमार श्रीवास्तव।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।